89.6 89.6 Mirchi.

0: Mirchi Mornings with Mirchi Afreen. It's hot.
1: 89.6
0: Mirchi 1. It's hot.

0: आवाज दी है नीलकमल सिंह और ममता शर्मा ने, म्यूजिक दिया है आदित्य देव और नीलकमल सिंह ने, और लिरिक्स लिखे हैं धीरज बबुआन ने। धमाल फोर से सुनते रहिए चटनी, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: व्हाट अ धमाल सॉन्ग। हाँ जी, धमाल 4 का ये गाना बिल्कुल भोजपुरी अंदाज में नीलकमल सिंह और ममता शर्मा की आवाज में। वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, वणकम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आफरीन, राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और देखिए भैया, धमाल 4 जो है ये देख रही हूँ मैं, कहीं ना कहीं कोई रीजनल गाने को अपने मूवी में डाल रहा है। जैसे संजू राठौड़ की आवाज में भी इन्होंने गाना जो मराठी गाना है उसे थोड़ा सा चेंज करके अपने मूवी में डाला है। नाउ दिस सॉन्ग, वेल इट्स अ नाइस थिंग इन अ वे कि आप रीजनल गाने जो है, भोजपुरी हो गए, मराठी हो गए, ऐसे कुछ गाने को थोड़ा सा बॉलीवुड में एक पहचान मिल रही है, विच गोज टू अ वाइडर ऑडियंस। बट एक और कौन सी स्टेट का गाना है या कौन सी लैंग्वेज का कोई गाना है जो आप बॉलीवुड में सुनना चाहोगे, या फिर आप चाहोगे कि यार ये भी डिजर्व करता है उतनी ही पॉपुलैरिटी? सो यू गॉट टू शेयर विद मी 5000196। और भाई वीकेंड है, वीकेंड में आपकी इनकी एनर्जी रहती है टॉप नॉच, और साथ ही साथ ये एनर्जी ट्रांसेंड करेगी रेडियो एयरवेव्स के थ्रू आपकी तरफ। तो तैयार हो जाइए, कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए और मिर्ची मॉर्निंग्स का सफर होता है शुरू। माइक सदुल तक आफरीन के साथ, it's hot.

0: Milci. Iskrabana, uskrabana, sakabana. Grabana. Burga, burga. Na vijet bala burga.
1: Milci, burga.
2: Hello.
3: Hello, Tejinder ji.
2: हाँ जी,
3: हाँ जी तेजेंद्र जी, मैं बोल रहा हूँ पासपोर्ट ऑफिस से। आपने अप्लाई कर रखा था पासपोर्ट?
2: जी, हाँ जी किया था।
3: हाँ, ये तेजेंद्र जी आपका थोड़ा लेट मिलेगा पासपोर्ट, आपको ये इन्फॉर्म करने के लिए फोन किया था मैंने।
2: कितना लेट मिलेगा
3: आपको इसमें? एक सेकंड रुकिए, मैं चेक कर लेता हूँ। अरे इनका तेजेंद्र का पासपोर्ट कब मिल रहा है? तत्काल में, आपने तत्काल में बनवाया ना इमरजेंसी में?
2: हाँ जी,
3: एक सेकंड। हाँ, इमरजेंसी का है सर। 3.5 महीने बाद मिलेगा आपको पासपोर्ट।
2: 3.5 महीने बाद?
3: हाँ जी
2: भाई साहब, तत्काल का क्या मतलब होता है? 5 दिन में मिलता है तत्काल का? तो
3: सर वो मुझे ही मालूम है, मेरे को क्यों समझा रहे हैं। असल में तेजेंद्र जी वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। आपके आसपास कोई है तो नहीं?
2: नहीं, कोई नहीं
3: है। हम ये कह रहा था, हमारा एक बंदा है जिसकी शक्ल आपसे मिलती है, ठीक है?
2: अच्छा।
3: बिल्कुल वो डिक्टो कॉपी लगता है आपका, जीरोक्स लगता है। अच्छा, उसको निकलना है दुबई। वो वैसे तो निकल नहीं सकता अपने पासपोर्ट से क्योंकि पुलिस पकड़ लेगी। तो हम कुछ दिन के लिए आपके पासपोर्ट पे से आपका फोटो हटा के, ना आपकी दाढ़ी होती तो चल जाता, उसका फोटो चिपका के आपके नाम से वो दुबई जाएगा। वो 3-4 आदमियों को ठिकाने लगा के वापस आ जाएगा, तो उसमें 3-4 महीने लगेंगे।
2: क्या बोल रहा है भाई, कौन? हेलो।
3: तो मैं उसको बोल देता हूँ, वो वहाँ पे, वो आपके घर पहुँचवा देगा। आप फिक्र, बल्कि वो बंदा ही।
2: हेलो।
3: हाँ, बोलिए बोलिए।
2: क्या बोल रहा भाई?
3: आपके पासपोर्ट पे उसका फोटो लगा के आपके नाम से वो दुबई जाएगा। 2-3 को ठिकाने लगाना है, वापस आ जाएगा, उसका जरूरी काम है।
2: मैं बोल रहा हूँ,
3: मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ।
2: क्या बोल रहा है? क्या
3: आप इतना भड़क क्यों रहे हो? काम आप थोड़ी करने जा रहे हो, काम तो वो लगाने जा रहे हैं ठिकाने।
2: नहीं, बात क्या कर रहा है? पासपोर्ट पे किसी और को भेज रहा है
3: यार। आप मेरी तेजेंद्र जी,
2: नहीं
3: सोचो वो कितना भड़क रहा होगा। 3 आदमियों को उसको टपका के आना है दुबई में, उसकी भी तो भड़कन सोचो ना। अरे तो यार आपका पासपोर्ट आपको वापस मिल जाएगा 1.5 महीने के लिए। आपका नाम यूज कर रहा है, आपका नाम यूज करने में आपकी गाड़ी मांग रहा है क्या? गाड़ी यूज कर रहा है वो?
2: नाम बता पहले।
3: ये लकी ड्रॉ निकल रहे हैं, वरना किसी और तेजेंद्र को भेज देते। आपका मौका लगा, आप ऐसे भड़क रहे हो उल्टा। मेरी बात सुनिए तेजेंद्र। तेजेंद्र, मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ और तुम रेडियो मिर्ची पे हो। मुझे शालिनी ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने कहा था कि तुमने पासपोर्ट अप्लाई कर रखा है, तुम्हारा मुर्गा बनाया भाई। तुम बहुत गुस्से वाले हो, तो मैं सोच रहा हूँ तुम्हें ही दुबई भेज दूँ, उसे नहीं भेजूं।
0: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। ओ भाई, जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

फराज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया अबार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: Well, Arijit Singh ki awaaz mein ye khoobsurat sa gaana jo khamoshiyan bata raha hai, lekin filhal to bhai weekend hai and you can expect Afreen to be khamosh this weekend, boss. ये हवाएं, मुझे यही वाले गाने कुछ याद आ रहे हैं, हवाएं हवाएं हवाएं। कल से जो कतर में इतनी जबरदस्ती हवाएं चल रही हैं, तो मैं क्या ही बताऊं। येस्टरडे 40 किलोमीटर पर आवर तक हवाएं चल गई थी दोपहर के वक्त, वो भी, और गर्मी वाली हवा आ रही है, मतलब कुछ अजीब सा हो गया था।
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
0: और आज क्या कहता है वेदर, 45 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम, 33 डिग्री सेल्सियस पर मिनिमम। अभी जो महसूस कर रहे हैं वो 37 डिग्री सेल्सियस है। ह्यूमिडिटी जो है वो कल की तरह ही है, 33% ज़्यादा ह्यूमिडिटी नहीं है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ड्राइनेस रहेगी। और ऐसे वक्त में क्या होता है ना, आपको स्किन एकदम सी ड्राई ड्राई, हाथ वगैरह ड्राई ड्राई लगते हैं। तो यार आप अगर लेडीज हो या जेंट्स हो या जो भी हो, मॉइस्चराइजर लगाने से कोई नुकसान नहीं है, अच्छा ही होता है आपके स्किन के लिए। या और एक चीज़ जिसको बेस्ट फ्रेंड बना लो, मैं हमेशा कहती हूँ, वो है सनस्क्रीन। रियली दैट रियली हेल्प्स योर स्किन। अपार्ट फ्रॉम दैट, हवाओं की बात जो मैं कर रही थी शुरुआत में, आज भी हवाएं काफ़ी तेज़ी से चलने वाली है। फिलहाल ये देख लीजिए, 16 किलोमीटर पर आवर पर हवाएं चल रही हैं। और फिलहाल के लिए गाना जो सुना रही हूँ, वन ऑफ माई फेवरेट्स, चलिए बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ। माइक से दिल तक आफरीन के साथ बने रहेगा, इट्स हॉट।
2: वेदर चेक ब्रॉट टू यू बाय RSL ग्रुप ऑफ कंपनी। अब पाओ कतर में डिलीवरी राइडर्स और ड्राइवर की जॉब। फॉर ब्राइट फ्यूचर कॉल नाउ 3100-0813।

0: में चीज स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, चैन चुराने पर पुलिस चोरों को ढोल बाजों के साथ में पुलिस थाने लेकर गई है।
3: भाई इसे ही तो कर्मा बोलते हैं। इन्होंने लोगों की चैन चुराई, अब पुलिस इनका चैन छीनेगी।
2: हाँ पर इनको ढोल बाजे के साथ क्यों लेकर जा रहे हैं?
3: क्योंकि अब ये इनके ससुराल जा रहे हैं ना।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: दोस्ती का उसूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू।
6: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू, हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए।
2: तुम मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा।
7: खूब मिलेगा, मिलेगा।
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: You have to rest well.
1: Sleep well? Oh ho ho ho. Phir to fit hona mushkil hai Aamir Khan. Aap sun rahe hain Mirchi. It's hot.
2: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
3: Only on Mirchi. It's hot.
4: A ring for the newly married? Cute little bangle for the newborn?
5: Arey yaar, holiday season is here aur phir wahi gifting ka tension. Phir Malabar Gold and Diamonds, Golden Summer ke saath, buy a free cash vouchers on diamond and precious gem jewelry purchases. Plus, exchange your gold jewelry and upgrade to the latest designs without any loss. Aur suno, there's more. With the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in the GCC. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
6: जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
7: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
8: बार बार
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6
10: FM मिर्ची वन इट्स हॉट।
1: वेल दोस्तों, अगला गाना जो सुना रही हूँ ना मैं, आई एम श्योर आप ही गाना छोड़ के मिड में जा ही नहीं सकते।
11: दीवाना मैं हूँ दीवाना।
1: Yes my friends, for all the दीवानास out there, सुन निगम की आवाज में माइक से दिल तक आप शीन के साथ, इस ब्यूटीफुल गाना।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
1: वेल, सोनू निगम की आवाज में वो गाना जो हमारे 90s इंडी पॉप के कोर मेमोरीज में गाना है, राइट? मैं हूँ आफरीन आपके साथ दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग। And as you see, my bandhu, this beautiful morning looks even more beautiful because of one big reason, क्योंकि आज थर्सडे है और आज का थर्सडे मुझे बहुत खुशी हो रही है कहने के लिए, क्योंकि मुझे बड़ा मजा आ रहा है कि बहुत ही फटाफट से ये हफ्ता गुजरा है। So let me tell you कि यार हमारे कतर में क्या माहौल है वीकेंड का। This weekend पाकिस्तानी मैंगो एग्जीबिशन है, वो जो है आज से ही बिल्कुल शुरू होने वाला है। एंड दिस गोना हैपन एट सुखवाकिफ ईस्टर्न स्क्वायर, जहाँ पर इंडियन मैंगो फेस्टिवल हुआ था। मैंगो एग्जीबिशन कहिए, फेस्टिवल कहिए, इट्स मोर लाइक अ फेस्टिवल यार। मतलब हमारे लिए मैंगो कि जो इमोशनल कनेक्ट है फॉर ऑल द देसीज आउट देयर, इट्स क्वाइट स्ट्रॉन्ग, है ना। हमारे बचपन के भी कोर मेमोरीज बहुत ही ज्यादा मैंगो से जुड़े होते थे, क्योंकि यार जो समर वेकेशन होता था उसका एक मजेदार हिस्सा यूज्ड टू बी एंजॉयिंग दीज मैंगोज एज वेल। एंड कतर में रहते हुए दोनों जगह के, इनफैक्ट नॉट ओनली दीज टू कंट्रीज लेकिन इजिप्ट, कीनिया एंड सो मेनी मोर कंट्रीज, सब जगह के मैंगोज हमें यहाँ पर टेस्ट करने मिलते हैं। सो टुडे इज द डे जब ये शुरू होगा एंड इट्स go on until 18th of July. Apart from that, let's check what is there in Qatar. Of course, the toy festival. बच्चों के लिए यार DECC ले जाओ एक बार, आप भी जाओगे तो ऐसा लगेगा यार what kind of world is this? A toy festival? I mean really, एक तरफ mango का भी festival हो सकता है, एक तरफ toy festival भी हो सकता है, भाई सब कुछ हो सकता है, ये Qatar है ना बॉस। So well, only just 50 Qatari riyal during weekdays, the tickets are starting from, and weekends के time पर ये 70 Qatari riyal होता है, बट टेंशन नॉट, देयर आर क्वाइट फैमिली पासेस अवेलेबल व्हिच कम्स आउट ऑन अ डिस्काउंटेड प्राइस, सो यू कैन बाय दैट एज वेल। दिस इज गोना गो ऑन अंटिल 31st ऑफ जुलाई, सो दिस वन थिंग आई थिंक सो इज आल्सो अ ग्रेट एडिशन टू योर वीकेंड प्लान्स। और देखिए वीकेंड आज यानी आज रात से क्वार्टर फाइनल्स के मैचेस जो है वो शुरू होने वाले हैं फुटबॉल के, सो यू वांट दैट वाइब कि यार अब मजा अकेले में देखने में नहीं बिल्कुल आने वाला है, लोगों के साथ देखेंगे, बड़ा मजा आएगा, एक साथ अपनी फेवरेट टीम को चीयर करने का मौका मिलेगा। सो आई थिंक सो मॉल ऑफ कतर इज वन प्लेस, द ओएसिस स्टेज कैरीज अ लॉट ऑफ वाइब आउट देयर, सो यू कैन गो देयर आइदर विजिट कतर फैन जोन, ये पेड है लेकिन बस अलमा हाईलैंड पर एक अलग ही किस्म का, आई मीन यू गोना बी रिमाइंडेड ऑफ आर फुटबॉल वर्ल्ड कप विच हैपेंड इन कतर, काफी कुछ हो रहा है भाई वहां पर भी। सो यार आई हैव टोल्ड क्वाइट अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आप ये वीकेंड कर सकते हैं, है ना। सो यू टेल मी व्हाट्स योर पिक आउट ऑफ दीज। मीनवाइल अगले गाने की तरफ मैं आपको बढ़ाती हूँ। सुनी थी मारी डालोगी क्या, दिव्या कुमार का साथ सुनी थी चौहान, एंड दिस सॉन्ग फॉर यू। माइक से दिल तक आप रीन के साथ बने रहिएगा, इट्स हॉट ना।

0: मिर्ची हेल्पलाइन?
1: नहीं नहीं, हेल्पलाइन मिर्ची, अपना सवाल क्या है वो बता बच्चू।
0: अरे भाई क्या बोलूं आपको, इधर घर ढूंढना इतना टफ है, इतना टफ है, कब से ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रहा, क्या करूँ?
1: अबे सबसे पहले तो ये बता कि तू किसका घर ढूंढ रहा है, तभी तो हेल्प कर पाऊंगा ना।
2: मैं दिल में आता हूँ, समझ में नहीं।

0: Mehmood Raghav Chaitanya ki awaaz mein. That is Cocktail 2 ka ye gaana right here on Mirchi. Unfortunately, there have some been original tracks as well in this movie. I mean, yaar, koi bhi movie utha ke dekh lo. Aap Cocktail dekh lo, aap Welcome to the Jungle dekh lo. Ye aap sequel banate rehte ho, Dhamaal 4 dekh lo. Lekin gaane to aap purane hi mix match kuch karke pesh kar dete ho. Yaar, kuch to originality rakho, jaise Sayyara ne rakha tha. चलिए आगे बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ, लेकिन उससे पहले जरा वक्त मिला लेते हैं. मिर्ची घड़ी का इशारा हो रहा है सुबह की 7:04 की तरफ, एंड हर्षदीप कौर विभा सरफ की आवाज में ये नेक्स्ट ट्रैक कमिंग योर वे ऑन मिर्ची इट्स हॉट.
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर.

Well, Razi movie ka ye gana featuring one and only Alia Bhatt and Vicky Kaushal, and that was one of his initial movies जहाँ पर वी कौशल को उतना ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिली थी, but then somewhere he was shining in the industry. मैं हूँ आफरीन आपके साथ right here on Mirchi Mornings. And I am so sure कि कल की नींद आपको बहुत सुकून से मिली रहेगी, because जो फुटबॉल देखते हैं और हर रोज रात को पिछले कुछ दिन से फुटबॉल देखते आए हैं, they're trying to catch up with the scores and they're trying to catch up with the matches. तो भाई कल कोई मैच ही नहीं थी, खाली खाली सा लगा कि नहीं? I'm sure लगा रहेगा. With this we have come to quarterfinals. Finally वो पड़ाव आ गया है फुटबॉल का जो बहुत ही ज्यादा नाजुक मोड़ कह सकते हैं हम. और अब क्योंकि क्वार्टर फाइनल्स आ गया है और अब वो सारा लाइनअप जो है क्वार्टर फाइनल्स का वो बिल्कुल ही तैयार है, और वो कुछ इस तरह से है कि अब अर्जेंटीना वर्सेस स्विट्जरलैंड होने वाला है, राइट? एंड देन उसके अलावा वी आर गोना हैव सम डेजा वू, जहां पर हमने ये पहले देखा है इन्हें भिड़ते हुए और अब फिर से देखने वाले हैं. वेल यू हैव गॉट इट राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट मोरक्को वर्सेस फ्रांस. अपार्ट फ्रॉम दैट अगली दो टीम जो है वो है स्पेन वर्सेस बेल्जियम, नॉर्वे वर्सेस इंग्लैंड. इस तरह से ये सारा लाइनअप हो चुका है. अब देखते हैं आज रात से मैचेस शुरू होने वाली है और क्या होता है आगे, ये तो भाई कोई नहीं जानता फिलहाल के लिए. लेकिन यस, द टीम्स यू आर सपोर्टिंग, कीप रूटिंग फॉर देम, कीप चीयरिंग फॉर देम. और अगर कोई मैचेस देखनी है तो जाइए भाई मॉल ऑफ कतर जाइए, वहां पर बहुत अच्छा स्नूनू एरिया बना हुआ है. अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन गो टू द अलमाहा आइलैंड फैन जोन, जो आपको बिल्कुल 2022 में ले जाएगा, जहां कतर में हर जगह इस तरह से वाइब हुआ करता था. सो नाउ यू कैन गो देयर एंड एंजॉय द सेम वाइब. मीनवाइल आफरीन है आपके साथ अरिजीत सिंह और शाश्वत सिंह की आवाज में माई फेवरेट गाना डेडिकेटेड टू Everyone out there, यार मेट्रो इन दिनों से. Enjoy this track on Mirchi It's Hot.

0: Mirchi. Iskabana, puskabana, sakabana. Gabana. Burka, burka. La virtua la burka. Mirchi, burka.
1: Hello.
2: Hi. Ye call... बैंक से है। आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है। हमारे कस्टमर केयर से आपको पासवर्ड मिलेगा। पासवर्ड बहुत कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए किसी को ना दे और इसका दुरुपयोग होने से बचाएं।
3: देखिए जी, आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है, आप पासवर्ड लिख लीजिए प्लीज।
1: एटीएम वाला पासवर्ड है ना?
3: एटीएम वाला पासवर्ड है सर, ये पासवर्ड लिख लीजिए, मैं आपको बता देता
1: हूँ। एक मिनट मैं लिख लेता हूँ कहीं।
3: हाँ जी,
1: हाँ बोलिए।
3: 33501।
1: अच्छा
3: सर, एक सेकंड रुकिए, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। शैलेंद्र जी, जरा विक्की का पासवर्ड बताइए, जरा इनको, ये फोन लाइन पे है, एटीएम वाला।
1: हेलो,
3: मेरी वाइफ के पास भी है, एक सेकंड होल्ड करिएगा। मैं फोन मिलाता हूँ। हेलो डार्लिंग, हाय।
4: हाय।
3: अच्छा ये बताओ, ये विक्की का पासवर्ड क्या है?
4: विक्की का पासवर्ड 33501। एक काम करिए ना,
3: हाँ?
4: धोबी से पूछ लीजिए, क्योंकि उसके पास भी है।
3: धोबी से
4: पूछ लीजिए।
3: अच्छा, ये जो हमारे कपड़े धोता है, एक सेकंड।
1: हेलो
3: सर, एक सेकंड होल्ड करना, वो धोबी से भी कंफर्म कर।
5: ये बेल जा रही है।
3: हेलो भैया। हेलो भैया, मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आप हमारे कपड़े धोते हो?
1: अरे भाई तू एक बात सुन, ये
3: आपके पास पासवर्ड होगा?
1: 33501।
3: हाँ सर, 33501।
1: हेलो।
3: हाँ जी सर, सर यही पासवर्ड है। मेरी बात सुनिए ना,
1: किस से पूछे जा रहा है?
3: किससे? मैं कंफर्म कर रहा हूँ ना सर, आपको
1: भाई। क्या कंफर्म भाई, मेरा एटीएम कार्ड है
3: ये। एटीएम तो आपका तो पासवर्ड नहीं मिलेगा, पैसे कैसे निकलेंगे यार?
1: मुझे बताना है सबको, थोड़ी ना दुनिया में अल्लाह थोड़ी ना
3: है। आपको तो जल्दी इतनी मच रही है, आपको जल्दी इतनी मच रही है। कल का टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लेते, उसमें भी आ रहा था, बेकार में एप्लीकेशन डाल दी। टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ लेते।
5: विकी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। तुमने पासवर्ड के लिए अप्लाई कर रखा था, तुम्हारा पासवर्ड अभी तक नहीं आया है। 33501।
1: किसने दिया मेरा नंबर?
5: आपका नंबर आशा ने दिया है, उन्होंने कहा था।
1: अरे मैं कुकड़ू को।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

0: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस। और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी। विजिट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
1: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं महापुरुष, महापुरुष।
2: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स, जबरदस्त ट्रैक्स। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
3: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: Mix. Mirchi. Mirchi Stories.
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी
2: यार। तूने सुना, एक दूल्हा ना ट्रैफिक से बचने के लिए साइकिल से मंडप तक पहुंच गया।
3: वैसे ना ये ग्रीन फ्लैग है, क्योंकि इसको पता है कि रिलेशनशिप की गाड़ी जो है दो पहिए पे चलती है। और मुझे पता है कि इसकी बारात में ना ढोल नगाड़े नहीं जबकि साइकिल की बजेगी।
0: मिर्ची, इट्स हॉट।
4: अर्ज किया है
5: इरशाद।

0: आईपी पेमेंट्स का वाह तरीका. विद आईपी सेंड मनी स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट QAR 5 एंड यस विद द बेस्ट FX रेट्स. सिंपल सीधा नो टेंशन. चेक द आईपी ऐप टुडे फॉर आवर 5 10 15 20 ऑफर वैलिड टिल जुलाई 31st. आईपी स्मॉलर फीस बिगर स्माइल्स. TNC अप्लाई.
1: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे.
2: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
3: बहुत कुछ होगा.
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6 FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

0: Mirchi Mornings, brought to you by Kim's Health Medical Center.
1: Well, my friends, this song reminds me of those two cuties. I mean, wo jo apne zamane mein abhi bhi lagte hain bade hot se aur cute se, but in this song they looked super cute. And well, I'm talking about Hrithik Roshan and Preeti Zinta, jinki pyari pyari si dimple hai, aur in fact kal dimple day bhi tha. On this note, chaliye aage badhte hain baaton ke saath, aur wo kya hai? अच्छा, सच सच बताओ बंधुओं, कि ऐसा नहीं लगता कि 2022 फुटबॉल वर्ल्ड कप जो हमारे कतर में हुआ था, उसके बाद से ना जिसको फुटबॉल में रुचि नहीं थी ना, उन्हें भी ज्यादा आने लगी है। और ऐसे ही कतर में स्पोर्ट्स पर इतना ज्यादा तवज्जो दिया जाता है ना, पिछले 4-5 साल में अगर आप देखेंगे तो एक और स्पोर्ट है जो कतर में बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है। एंड इट्स नॉट ओनली फॉर व्यूअरशिप और समथिंग, इट्स वे कतर के लोग खेल रहे हैं इसे बड़े बड़े ही शौक से। एंड स्पेशली मैं खेलना कहना चाहूंगी कि बरवा मदीनतन का जो एरिया है वहां पर कौन सा गेम है, अब आपको समझ में आएगा, बिकॉज इट्स पैडल। ठीक है, ये जो गेम है इट्स नॉट ओनली इन वन एरिया बट एवरीवेयर इन कतर आई थिंक सो, हर 8 में से एक इंसान तो पैडल खेलता ही है। एंड टॉकिंग अबाउट दिस स्पोर्ट, का जो कल्चर है कतर में, कितना ज्यादा सपोर्ट करते हैं कतर इस स्पोर्ट को, या कोई भी स्पोर्ट हो, वो इस बात से ही पता चलता है क्योंकि कतर नाउ इज गोना होस्ट द वर्ल्ड कप, पैडल वर्ल्ड कप 2026 एंड एज वेल एज 2028। कैन यू बिलीव दैट, ये भी अब ये होस्ट करने वाले हैं, दुनिया भर से लोग आने वाले हैं इसे देखने के लिए। वेल, दोनों एडिशन खलीफा इंटरनेशनल टेनिस एंड स्क्वैश कॉम्प्लेक्स में होने वाला है। 16 मेंस और 16 वुमेन्स नेशनल टीम वर्ल्ड टाइटल के लिए कॉम्पीट करने वाली है। और 2026 एडिशन 2 से लेकर नवम्बर 7 तक, यस, ये 5 से 6 दिन तक का है, ये पूरा शेड्यूल किया गया है। एंड दैट्स हाउ इट इज। पैडल के बारे में अगर बताऊं तो सीरियसली इट्स करंटली वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पोर्ट्स इन द वर्ल्ड विद 30 मिलियन से ज्यादा प्लेयर्स अक्रॉस 140 प्लस कंट्रीज। और इसकी जो पॉपुलैरिटी है ना, लेट मी टेल यू, बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ी है। एंड कतर में एक्चुअली विटनेस करने मिल रहा है, इनफैक्ट मेरे घर में भी एक पैडल प्लेयर है, सो आई रियली नो कि पैडल का क्रेज कितना ज्यादा होता है। So anyone playing paddle out there, आपके लिए मौका है कि आप जाकर वर्ल्ड कप फिटनेस कर सकते हो, वो भी कतर में। बन जा तू मेरी गुरु की आवाज में ये गाना, मीनवाइल एंजॉय करते हैं आप और मैं मिलकर माइक से दिल तक आफरीन के साथ। It's hot.

0: वेल शिल्पा राव और क्षितिज तरे की आवाज में ये गाना देवरी मूवी से, आई मीन आई शुड टेल यू देवरी इज वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड म्यूजिक एल्बम्स. अमित त्रिवेदी क्या एक जमाने में म्यूजिक दिया करते थे यार, एंड ही समवेयर लॉस्ट आई फील. लेकिन फिलहाल तो हम यहाँ पर ये बॉलीवुड के गेम में एकदम लॉस्ट होने के लिए तैयार है ना. लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट का टाइम आ गया है, जहाँ पर आफरीन इस वक्त पर आपको एक सीन सुनाती है, ठीक है ना, और आपने गेस करना होता है कि आफरीन कौन सी मूवी का ये सीन आपको सुना रही है. बड़ा ही इंटेंस आर्ग्यूमेंट वाला सीन है ये, लेकिन वन ऑफ माई फेवरेट मूवीज. अब आप समझ जाओ ये कौन सा है, जो लोग मुझे अच्छे से जानते हैं. लेट्स सी.
1: लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट.
2: वेद, वही तो मैं कह रही हूँ, वही तो तुम नहीं हो. मैं जानती हूँ तुम कौन.
3: हाँ, तू जानती है मैं कौन, और कोई नहीं जानता. मेरे घर वाले, मेरे दोस्त, मैं खुद नहीं जानता, मगर तू 7 दिन कोर्सिका में तू पक्का जानी है कि मैं कौन हूँ.
0: All right. और आप पक्का जान गए कि ये कौन सी मूवी का डायलॉग है ना. अगर जान गए तो फटाफट से 5000 1896 इज माई व्हाट्सएप नंबर. लेट्स कनेक्ट हियर एंड आई हैव स्टार्टेड रिसीविंग मैसेजेस. देखिए भाई, ये एक ऐसी मूवी है, जब रिलीज हुई थी तो सुपर डुपर फ्लॉप हुई थी, लेकिन इवेंचुअली पब्लिक रेजोनेटेड विथ इट, दे फेल्ट इट मोर रिलेटेबल. कौन सी मूवी की बात करी. अब मेरी आदत क्या है ना कि मैं फ्लो फ्लो में बहुत कुछ बता देती हूँ मूवी के बारे में, और गलती से मूवी का नाम भी बता देती हूँ. तो आई विल जस्ट स्टॉप हियर राइट नाउ. 5000 1896 इज माय व्हाट्सएप नंबर. और आंसर्स तो आने शुरू हो गए हैं, और बिल्कुल सही भी है, लेकिन जब भी आप आंसर करते हो ना, कोशिश कीजिएगा अपना नाम जरूर लिख लीजिए यार, ताकि मैं यहाँ पर अनाउंस करूँ. फिर बाद में शिकवे शिकायत होते हैं आपके कि नहीं आपने मेरा नाम नहीं लिया एंड ऑल दीज थिंग्स. चलिए चलिए अगले गाने की तरफ बढ़े. माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ, एंड बेनी दयाल एंड शालवली खोलगड़ी की आवाज में ये अगला गाना ऑन मिर्ची के साथ. सेप नंबर और आंसर्स तो आने शुरू हो गए हैं, और बिल्कुल सही भी है, लेकिन जब भी आप आंसर करते हो ना, कोशिश कीजिएगा अपना नाम जरूर लिख लीजिए यार, ताकि मैं यहाँ पर अनाउंस करूँ. फिर बाद में शिकवे शिकायत होते हैं आपके कि नहीं आपने मेरा नाम नहीं लिया एंड ऑल दीज थिंग्स. चलिए चलिए अगले गाने की तरफ बढ़े. माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ, एंड बेनी दयाल एंड शालवली खोलगड़ी की आवाज में ये अगला गाना ऑन मिर्ची के साथ.

0: Hollywood Bold Eye.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: John Abraham, आपके हिसाब से the top fit boys of the Hindi film industry.
3: First reference is always going to be Varun Dhawan and I'll tell you why. क्योंकि वरुण का जो physique है वो बहुत ही proportionate है. उसके legs बहुत ही strong है. Tiger Shroff, fantastic body. Ranveer Singh, extremely, extremely fit. And of course, Hrithik Roshan. Honestly, amongst all these, including myself, I think सबसे fittest इंसान हमारे industry में is Akshay Kumar. And I mean holistically fit. He can survive anywhere. अगर आप उसको Mount Everest पे छोड़ दो, अगर आप उसको रेगिस्तान में छोड़ दो, अक्षय कुमार will be the only guy who will survive and come out.
2: छोड़ने की जरूरत ही नहीं है जॉन अब्राहम. अक्षय कुमार is the only person in the Hindi film industry जो by choice इन जगहों पर जाएंगे. आप सुन रहे हैं मिर्ची, It's hot.
0: Bollywood Bold Eye. Bollywood, Bollywood, Bollywood Bold Eye.
1: Only on Mirchi. It's hot.
4: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे. मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स. अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस. और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस ह्योर इन जीसीसी. विजिट मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे.
5: Our business is our business. None of your business.
6: पर दीदी, our entertainment is your entertainment.
7: Qatar का number one radio station.
8: 89.6
9: FM, Mirchi 1. It's hot.

0: Mirchi Mornings, brought to you by Kim's Health Medical Center.
1: Well, what a beautiful song, yeah. Kameene movie ka ye gana, featuring Shahid Kapoor, Priyanka Chopra. And I just love the velvety voice of Mohit Chauhan. Very good morning. आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को right here on मिर्ची mornings. देखिए भाई, एक ऐसा सवाल पूछा था जिसने शायद आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया था. लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट यहाँ पर खेल रहे हैं. पहले सीन सुनाते हैं, फिर इस मूवी के बारे में. I have so much to say.
2: लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट. सीन टेस्ट.
3: वेद, वही तो मैं कह रही हूँ. वही तो तुम नहीं हो. मैं जानती हूँ तुम कौन.
4: तू जानती है मैं कौन, और कोई नहीं जानता. मेरे घर वाले, मेरे दोस्त, मैं खुद नहीं जानता. मगर तू 7 दिन कोर्सिका में, तू पक्का जानी है कि मैं कौन हूं.
1: All right. कॉर्सिका और ये दोनों की आवाज़. आई थिंक सो दैट्स इटसेल्फ इज़ अ बिग हिंट ओवर हियर, है ना. बहुत सारे मैसेजेस यहाँ पर आए हैं कहते हुए इस मूवी का नाम क्या है. पहले तो हुसैन ने सबसे पहले मैसेज कर दिया था. एंड देन आई हैव योर, लेट मी सी द नेम, समीर का मैसेज है, अब्दुल रज़ाक का मैसेज है, कमर का मैसेज है, एंड देन आई ऑल्सो हैव शाजी अब्दुल करीम का मैसेज है. एवरीवन सेड कि भाई देखो, ये जो मूवी है इसका नाम है तमाशा. यस, फीचरिंग रणबीर कपूर एंड दीपिका पादुकोण. एंड ये एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि ये मूवी जब रिलीज़ हुई थी, इम्तियाज़ अली की मूवी, मी बीइंग अ वेरी बिग फैन ऑफ द इम्तियाज़ अली की डायरेक्शन एंड स्टोरी टेलिंग, ये मूवी हो गई थी फ्लॉप. एंड दिस इटसेल्फ सेज कि भाई इट्स नॉट ऑलवेज द फॉल्ट ऑफ द फिल्म मेकर्स या फिर स्टोरी टेलर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स. नहीं, हमेशा इनकी गलती नहीं होती है. ये जब रिलीज हुई थी तब फ्लॉप हुई और लोगों को बाद में समझ में आया कि भाई अच्छा, ये मूवी कहीं ना कहीं हमसे बहुत ज़्यादा रेसोनेट करती है, ये तो हमारी ही कहानी है. एंड देन नाउ पीपल इज लाइक, अरे ये बड़ी कल्ट क्लासिक मूवी है. अरे ऑडियंस पर भी तो रहता है ना. वही एक्टर जो एनिमल जैसी मूवी बनाता है और उसे इतनी ज्यादा प्रेजेस मिलती है, और जब वो तमाशा बनाता है लोगों को समझ नहीं आता. आई मीन नथिंग मोर आई वांट टू से बियॉन्ड दिस. लेकिन सही मूवी को सही ट्रीटमेंट देना ये एक ऑडियंस का फर्ज होता है, और ऐसे ही हुआ था. फिलहाल इम्तियाज अली की अनदर मूवी मैं वापस आऊंगा, जहां फर्स्ट वीक बिल्कुल समझ नहीं आई, फिर बाद में धीरे धीरे वर्ड ऑफ माउथ से लोगों के ये मूवी पिकअप करने लगी. यार अच्छी मूवी को जाकर देखो और अप्रिशिएट करो, तो ही तो अच्छा कंटेंट देखने मिलेगा आपको. वैसे तो मैं बजाने वाली थी मटर गश्ती, लेकिन हुसैन ने कहा कि ये गाना सुनना है अलका याग्निक और अरिजीत सिंह की आवाज में. तो दिस इज फॉर यू हुसैन. माइक से दिल तक आफरीन के साथ बने रहिएगा और मिर्ची.

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: हाय देयर, व्हाट्स अप, टेल मी।
0: हमारी काम वाली बाई बहुत ही रेगुलर है, हर दूसरे दिन नहीं आती, क्या करूं?
1: वेल इट्स सो सिंपल यार, हर दूसरे दिन नहीं आती ना, तो उसको हफ्ते में सिर्फ 3 दिन ही काम पे रखा कर। या इट्स जस्ट अमेजिंग, फैंटास्टिक, सिंपल।

0: इस गाने को आवाज दी है गुरु रंधावा ने। म्यूजिक एंड लिरिक्स बाय गुरु रंधावा, गिल मचरई एंड रॉनी अजनाली। धमाल फोर से सुनते रहिए कहर, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: गुरु की आवाज में ये गाना अभी आपने सुना और मिर्ची घड़ी का इशारा हो रहा है 8:04 की तरफ और आप सुन रहे हो सिंपली आफ्टरनून को ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स, इट्स हॉट।
2: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
1: देखिए टेक्नोलॉजी आकर टाइम हो गया है, लेकिन अब भी देखकर थोड़ा सा तो डर लगता ही है। वेल आई एम टॉकिंग अबाउट ड्राइवरलेस कार, जो स्टीयरिंग व्हील के पीछे कोई नहीं होता है। हाँ वही, विच लुक्स लाइक राइट आउट ऑफ अ साईफाई मूवी, लेकिन अब वो रियलिटी हो गई है इन मेनी कंट्रीज और ये कतर की भी रियलिटी बनने बहुत जल्दी जा रही है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफ्टरनून को राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और करवा के इलेक्ट्रिक रोबोट टैक्सी ट्रायल्स का पहला फेज सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अगस्त 2025 से शुरू होने वाले है ये पायलट प्रोजेक्ट। अब तक के 2500 से ज्यादा ऑटोनॉमस ट्रिप्स कंप्लीट कर चुका है और इंटरेस्टिंग बात यह है दैट 94% राइड्स बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के कंप्लीट हुई है। हाँ, सेफ्टी के लिए अब तक एक ट्रेन सेफ्टी ऑफिसर कार में मौजूद था, ठीक है ना, लेकिन अब प्रोजेक्ट एंटर करेगा फेज टू, जहां कुछ रोबो टैक्सीज के अंदर सेफ्टी ऑफिसर भी नहीं होने वाले हैं, उन्हें रिमोटली मॉनिटर किया जाएगा। इनिशियली ये रूट्स कवर करेंगी ओल्ड दोहा पोर्ट टू द गेट मॉल, सुक वाकिफ टू शेरेटन दोहा होटल और म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट से लेकर वेस्ट वे तक। लेकिन यहां पर मेरे ख्याल में ये एक सवाल है कि अगर कल ड्राइवर ही ना हो तो सही में आपको कैसा फील होगा कि यार आप टैक्सी बुक करते हो, ड्राइवर नहीं है। हम अब तक के ये ना यूट्यूब पर और रील्स पर ये देखते आए हैं, लेकिन ये एक्सपीरियंस करने के लिए क्या आप रेडी हो या नहीं, आई वॉन्ट नो दैट। 5000 1896 डेफिनेटली इट इज वन स्टेप नहीं, इट इज 10 steps अहेड। फ्यूचर की तरफ हम जा रहे हैं। अब तो हम ड्राइवरलेस गाड़ी के बारे में बात कर रहे हैं, फिर हम फ्लाइंग टैक्सी के बारे में भी जल्दी बात करेंगे मुझे लगता है। माइक से दिल तक आप श्रीन को सुन रहे हो आप राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Escavana, buscavana, sacavana. Rabana. Burca, burca. La vieja la burca. Mirchi, burca.
2: हेलो
3: सर, वेरी गुड इवनिंग, मैं बैंक से बोल रहा हूँ। मुझे एक रेफरेंस दिया था सर, मैं आपके सिर्फ दो मिनट लेना चाहूंगा, क्या आप मुझे दो मिनट दे सकते हैं?
2: हाँ जी बोलिए।
3: सर हमारी एक स्कीम आई है सर, हम आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जीरो ही नहीं बल्कि बैंक आपको हर महीने पैसे देगा सर, जितने आप चाहते हैं इतने पैसे आपको मिल जाएंगे।
2: आप मुझे पैसे दोगे? हाँ, हिडन चार्ज
4: सर, इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है, अगर होते तो मैं पहले ही बोल देती।
2: कौन बोल रही है?
3: सर रमेश ही बोल रहा हूँ। सर मैं ये बता रहा था बैंक के बारे में आपको, अगर आपको स्कीम चाहिए ना सर, ये सबसे अच्छी स्कीम है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको हो ही नहीं सकती।
2: मुझे क्यों मिल रही है, मतलब कोई इतनी मेहरबानी क्यों हो रही है?
5: सर मैं आपसे इतनी भी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका रेफरेंस बहुत तगड़ा है, वरना हम तो इस तरह की स्कीम किसी को देते भी नहीं।
2: हेलो कौन बोल रहा है?
3: सर रमेश ही बोल रहा हूँ मैं, इसमें ये कह रहा था सर, इसमें आपको कोई लेने देने वाली बात ही नहीं है, आप सिर्फ मेरी बात मानो, आप ले लो।
2: के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?
4: सर आपको एक पैन कार्ड की कॉपी और अपना पुराना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना है, दैट्स ऑल।
2: हेलो मैडम।
3: हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ। हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ।
2: कौन बोल रहा
3: है? रमेश बोल रहा हूँ सर।
2: अभी कोई और बोल रही थी।
3: सर ले लीजिए सर, आप बस आंखें बंद करके मेरी बात मानिए।
2: लेकिन कहीं कुछ उल्टी सीधी तो वो नहीं है, इसमें कुछ परेशानी तो नहीं होगी मुझे?
6: आप चिंता मत कीजिए, हर चीज के पेपर साइन होंगे बाकायदा, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
2: कौन बोल रहा है?
3: सर ले लीजिए यार, इसमें कोई चिंता ही नहीं है सर, इसमें
2: दो दिन बाद मुझे कॉल कर लेना।
7: सर 15 तारीख जो है वो लास्ट डेट है, ऐसा ऑफर आपको कहीं भी किसी भी और बैंक में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ हमारी एक्सक्लूसिव स्कीम है।
2: कौन बोल रहा है भैया?
3: सर रमेश बोल रहा हूँ। आप यार उस पे क्यों जा रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ आप ये ले रहे हैं कि नहीं ले रहे सर?
2: कभी किसी की आवाज़ आ रही है, कभी किसी की आवाज़ आ रही है। नहीं भैया नहीं, नहीं चाहिए मुझे।
8: सर आप मान क्यों नहीं रहे हो यार, आपको लोन बेचने के चक्कर में, स्कीम बेचने के चक्कर में
3: आज सबका दिमाग खराब हो गया, अपना खुद दिमाग खराब कर रहे हैं यार आप। सर आप ले लो यार, कमाल कर दिया आपने यार दिमाग। क्या क्या
2: कोई बोल रहा है?
3: कौन बोल रहा है यार? मैं बोल रहा हूँ, आप सर रमेश बोल रहे हैं। सर मेरी बात सुनिए सर, सर आप सर फोन मत काटिएगा।
9: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, ये सारी आवाजें मेरी हैं, अब मिर्ची पे सब आपको सुन रहे हैं, आप मुर्गा बन गए, आप कुकड़ों को बोल दें जरा हंस के।
10: थैंक यू
11: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
12: A ring for the newly married, cute little bangle for the newborn.
13: अरे यार, holiday season is here, और फिर वही gifting का tension. फिर मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, गोल्ड एंड समर के साथ पाइए फ्री कैश वाउचर्स ऑन डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेजेस, प्लस एक्सचेंज योर गोल्ड ज्वेलरी एंड अपग्रेड टू द लेटेस्ट डिजाइंस विदाउट एनी लॉस। और सुनो, देयर इज मोर, विद इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन द GCC. विजिट मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे.
14: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी, जा बेटा जा।
15: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल, क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने। हिट गाने
16: कतर का नंबर 1 रेडियो स्टेशन
17: 89.6 FM मिर्ची 1, इट्स हॉट।

वेल, हो गई है हमारी एंट्री, तो जरूर काम की बात ही लेकर आई होगी आफरीन। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक सिंपली आफरीन का साथ है राइटर ऑन मिर्ची मॉर्निंग। अभी आपने जो गाना सुना आदित्य की आवाज़ में चांद बालिया, बड़ा ही छोटा सा क्यूट सा ट्रैक है, जेंजी को बहुत रेजोनेट करता है एंड समवेयर आई थिंक सो हमें भी अच्छा ही लगता है विद दिस। चलिए आफरीन जब काम की बात करती है ना तो फिर वो सिर्फ और सिर्फ एक्सचेंज रेट्स के बारे में बात करती है। देखिए आज का एक्सचेंज रेट कह रहा है एक कतरी रियाल के बदले मिल रहे हैं इंडियन रुपीज 26.19, वहीं जनाब पाकिस्तानी रुपीज इज एट 76.52। अगर बात करें बांग्लादेशी टाका की तो 33.93 पर है, श्रीलंकन रुपीज इज एट 91.90 एंड नेपाली रुपीज इज एट 41.71। ये थी आज की एक्सचेंज रेट। घर भेजे पैसे, ढेरों सारी खुशियां। और बताओ भाई आज घर आप खुद ही जा रहे हो क्या? मतलब यार इट्स थर्सडे, इट्स वीकेंड एंड बहुत सारे लोग पिछले एक महीने में वीकेंड वीकेंड पर ट्रैवल कर रहे हैं और मुझे लग रहा है कि ये वीकेंड पर भी पब्लिक जा रही है। सिर्फ यू आर द वन लिसनिंग टू मी जो आज कल परसों में ट्रैवल करने वाले हैं, भले ही वेकेशन पर क्यों ही ना हो, होम टाउन क्यों ना हो। टेल मी 5000196 पर व्हाट्सएप करके बताओ कि हाँ हाँ हम तो जा रहे हैं और ये जगह पर जा रहे हैं। फिर मैं बताऊंगी भाई आपकी जो जगह की स्पेशलिटी है ना वो आप जरूर लेकर आइएगा। डील विशाल बदलानी के नीति मोहन बप्पी दा की आवाज में ये गाना ऑन मिर्ची साथ।

0: में ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक दूल्हा ना ट्रैफिक से बचने के लिए साइकिल से मंडप तक पहुंच गया।
3: वैसे ना ये ग्रीन फ्लैग है, क्योंकि इसको पता है कि रिलेशनशिप की गाड़ी जो है दो पहिए पे चलती है। और मुझे पता है कि इसकी बारात में ना ढोल नगाड़े नहीं जबकि साइकिल की बजेगी।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।

0: अर्जुन आएंगे?
1: अरे करण, अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी।
2: आएंगे दीदी।
3: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6 FM, मिर्ची वन।
5: इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings, brought to you by KIMS Health Medical Center.
1: अरिजीत सिंह की आवाज, निहिरा जोशी का साथ, किल हिल का ये गाना, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट ट्रैक ऑफ आफरीन, क्योंकि इसमें मेरे दो फेवरेट स्टार्स थे, एक तो परिणीति चोपड़ा और एक रणवीर सिंह. और ये गाने की फिल्मोग्राफी कहिए, डायरेक्शन कहिए, इस गाने का म्यूजिक, आई जस्ट लव एवरीथिंग अबाउट दिस सॉन्ग. या वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. सिंपली आफरीन का साथ जुड़ गया है और आपकी सुबह वाली आदत यानी मिर्ची मॉर्निंग्स पर. और आज वीकेंड है ये. यार वीकेंड का एक अलग ही जोश एक्साइटमेंट रहता होगा ना. आप में भी, मतलब मेरी तरह आप इतना ज्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते होंगे. करते हो क्या? अच्छा बताओ मुझे फिर. 5000 1896 इज माई व्हाट्सएप नंबर. इंस्टाग्राम पे मिलती हूँ मैं आज सिंपली आफरीन के नाम से, या मिर्ची आफरीन, या मिर्ची मन खतर. यू कैन जस्ट मैसेज मी देयर एंड स्टोरीज कुछ है तो भाई डालो, बताओ भाई. देखो हम भी वीकेंड इस तरह से इंजॉय करते हैं एंड वी आर ऑल्सो एक्साइटेड अबाउट इट. फिलहाल के लिए तो भाई मैं मेरे अगले सेगमेंट यानी अब जो मैं खेलने वाली हूँ उसके लिए एक्साइटेड हूँ. और वो क्या है? वो ये है कि मैं यहाँ पर आपको एक आवाज सुनाने वाली हूँ, ओके, ऑफ सम पर्सन, ठीक है. और आपने गेस करना है कि ये आखिर सेलिब्रिटी आफरीन कौन सा आज ढूंढ कर लाई है. सो रेडियो सेट्स के वॉल्यूम करो हाई और ध्यान से ये आवाज सुनो.
2: देखिए अब शाहरुख भाई ने टीवी से मेरे ख्याल से शुरुआत करी थी, उसके बाद वो फिल्मों में आए और अभी भी वो टीवी शोज कर रहे हैं. बच्चन साहब भी टीवी कर रहे हैं. आजकल कोई एक काम करता ही नहीं. हमारे जज साहब को देख लो, गाने ये गाते हैं अपनी फिल्मों के, भोजपुरी फिल्मों के इतने बड़े स्टार हैं, अभी पार्लियामेंट में भी हैं. आज 2 घंटे की छुट्टी थी, इधर आके बैठ गए.
1: देखिए भाई ये कौन है जिसकी ये आवाज मैंने आपको सुनाई है? और ये आवाज से मेरे ख्याल से बहुत से लोग वाकिफ होंगे, क्योंकि यार ये आवाज हर घर, इट्स अ हाउस होल्ड वॉइस आई वुड से, है ना. बस मैं आई डोंट गिव एंड ड्रॉप इन मोर हिंट्स हियर एंड स्ट्रेट अवे लेट मी डाइव इनटू द नेक्स्ट ट्रैक हियर. अंकित तिवारी की आवाज में अगला गाना, आई लव दिस ट्रैक. अब बोला आफरीन क्या है, हर ट्रैक को लव करती है. ठीक है, म्यूजिक लवर हूँ. एंजॉय इट ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: अनिल कपूर सर, ये सवाल हम आपसे 365वीं बार पूछ रहे हैं कि आपकी फिटनेस का राज क्या है?
3: हेल्थ ऐसी बनाओ, काम ऐसा करो कि आप 40, 50 साल, 60 साल तक आराम से वैसे ही काम करते रहो। मीठा खाना तो थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा, आपको मीठा अगर सूट नहीं करता तो हफ्ते में एक बार खाइए, और खाना तो थोड़ा सा खाइए। आपको नमकीन पसंद है उसका मतलब ये नहीं कि आप इतना ही नमकीन खाते रहें। आपको चावल पसंद है तो दबा के आप चावल ही खा रहे हैं आप, यू नो, तो हर चीज़ करनी चाहिए, मगर थोड़ा थोड़ा थोड़ा करके यू शुड वर्क इट आउट एंड बैलेंस एवरीथिंग इन लाइफ एंड डू एवरीथिंग इन लाइफ एंड दैट्स आई फील इज द मंत्रा फॉर योर फिटनेस। यू डू एवरीथिंग बट डू इट इन मॉडरेशन एंड डू इट व्हाट मेक्स यू हैप्पी।
2: हेल्थ टिप आपने दिया एकदम क्लास, क्योंकि अनिल कपूर आप आदमी एकदम झकास। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स ऑन
0: बॉलीवुड पोर्टल। Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
4: A ring for the newly married? Cute little bangle for the newborn?
5: अरे यार, holiday season is here और फिर वही gifting का tension। तो फिर मालबार gold and diamonds, gold and summer के साथ buy a free cash vouchers on diamond and precious gem jewelry purchases. Plus, exchange your gold jewelry and upgrade to the latest designs without any loss. और सुनो,

0: There's more. With the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in the GCC. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
1: बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना।
2: अरे पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
3: कैसे रुक सकता है?
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
5: 89.6
4: FM मिर्ची वन इट्स हॉट मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: 15 का ये गाना अमित त्रिवेदी की आवाज और अंधाधुन जैसी मूवीज अब क्यों नहीं बनती यार, कुछ नया हमें देखना है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, सिंपली आफ्टरनून का साथ है राइट ऑन विच मॉर्निंग्स एंड बॉस। सवाल जवाब का सिलसिला यहाँ पर चल रहा था, तो डायरेक्टली ना मैं इधर उधर की बात नहीं करूंगी, सीधा इस सवाल पर आती हूँ। एक आवाज़ सुना रही हूँ सेलिब्रिटी की, ठीक है ना, पहचानो ये किसकी आवाज़ है।
1: आजकल आप देखिए, अब शाहरुख भाई ने टीवी से मेरे ख्याल से शुरुआत करी थी, उसके बाद वो फिल्मों में आए और अभी भी वो टीवी शोज कर रहे हैं, बच्चन साहब भी टीवी कर रहे हैं। आजकल कोई एक काम करता ही नहीं, हमारे जज साहब को देख लो, गाने ये गाते हैं अपनी फिल्मों के, भोजपुरी फिल्मों के इतने बड़े स्टार हैं, अभी पार्लियामेंट में भी हैं, आज 2 घंटे की छुट्टी थी।
0: राइट, ऑल राइट, बहुत बोलते हैं ना ये, और जब बोलते हैं तो दूसरों को बोलने का मौका ही नहीं देते, पर यहाँ पर मेरे पास कंट्रोल है, मैं इनको चुप करा कर खुद बोल सकती हूँ। कौन है ये? बहुत लोगों के मैसेजेस आए हैं, विवेक का मैसेज है यहाँ पर, शुभम रस्तोगी का मैसेज है, देन आई हैव योर हु इज दिस तारिक हुसैन का मैसेज है, मोहम्मद यूसुफ खान का मैसेज है, लेट मी टेल यू नो वन इज रॉन्ग टुडे, कोई भी गलत नहीं है, मोहम्मद इमरान का मैसेज है, ताहिर का मैसेज है, देन आई हैव एम्पायर अब्दुल रजाक, आपका जवाब यहाँ पर गलत है, कुलवंत का मैसेज है, और बस ऐसे ही बहुत सारे मैसेजेस हैं, और सबका ये कहना है कि आफरीन ये तो वही है ना हमें जो टीवी पर हंसाते हैं। यस, ये वही है कपिल शर्मा की आवाज़, जो क्या नहीं करते, जो स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं, जो एक्टिंग करते हैं, हीरो बन के आए हैं, और बहुत कुछ है। इनफैक्ट ही इज अ रेस्टोरेंटर ऑल्सो एंड मल्टी टैलेंटेड बंदा तो है यार, बट दिस गाय हैज़ अ ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड दैट इज़ वाई ही इज़ वेयर ही इज़, है ना। मिर्ची पर आप सुन रहे हो आफ्टरनून को, अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं और फिर बातें करेंगे ना यार, बातों का सिलसिला चलता रहेगा और एक्साइटमेंट भी चलती रहेगी क्योंकि वीकेंड बॉस। माइक से दिल तक आफरीन के साथ बने रहिएगा, इट्स हॉट।

0: जी बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन, बताइए क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए।
1: बूढ़ी बाबा, मेरे पति को मेरे हाथ की रोटी अच्छी नहीं लगती, क्या करूँ?
0: तो सिंपल है ना, तुम्हारे हाथ की रोटी मत खिलाओ, आंटी की खिला दो।
2: मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे अलकट हंस।

0: देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि हॉलिडे बुक करते वक्त आप सबसे पहले क्या चेक करते हैं, बजट ऑफ कोर्स, वेदर, हाँ ये भी, इंस्टाग्राम और लोकेशंस, हाँ ये भी हो सकता है, लेकिन आजकल के जनरेशन या आज के ट्रैवलर्स काफी स्मार्ट हो गए हैं। अब ये लोग डेस्टिनेशन के साथ साथ वैल्यूज भी चूज करने लगे हैं। वैल्यूज वो कैसे आप सोच रहे होंगे, तो बताती हूँ, इसका डायरेक्ट कनेक्शन कतर के साथ है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को। और आज की सबसे बड़ी खबर में
1: क्या खबर कतर,
0: खबर ये है दैट कतर ने एक बार फिर ग्लोबल मुस्लिम ट्रैवल इंडेक्स 2026 में टॉप 5 मुस्लिम फ्रेंडली डेस्टिनेशंस में अपनी जगह रिटेन की है। देखिए, सिर्फ रैंकिंग ही नहीं, कतर ने एक्सेसिबिलिटी में दुनिया में नंबर 2 रैंक हासिल किया है। वाओ, मतलब एक्सेलेंट एयर कनेक्टिविटी, वर्ल्ड क्लास ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, सिंप्लीफाइड वीजा प्रोसेस और सीमलेस ट्रांजिट एक्सपीरियंस। देखिए, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे इंटरेस्टिंग बात रैंकिंग नहीं है, इट्स द शिफ्ट इन ग्लोबल ट्रैवल बिहेवियर। मुस्लिम ट्रैवल इकोनॉमी इज नो लॉन्गर अ नीश मार्केट। 2026 में अराउंड 208 million मुस्लिम ट्रैवलर्स एक्सपेक्टेड है और 2030 तक ये नंबर्स 262 million तक पहुंच सकता है और स्पेंडिंग अराउंड $310 billion हो सकती है। एंड दैट्स नॉट अ ट्रेंड, That's a global economic powerhouse. और कतर ने exactly इसी future को पहले ही read कर लिया था। Luxury hotels के साथ halal dining भी है, prayer facilities भी है, family friendly experience भी है और अब कतर एयरवेज का समा 2.0 AI concierge जो travel planning को और intelligent बना रहा है। तो देखिए, अगली बार जब कोई कहे कि कतर तो सिर्फ एक stopover destination है ना, तो नो बॉस, अब उन्हें बता देना दैट इट्स नॉट जस्ट अ डेस्टिनेशन एनीमोर, इट्स बिकमिंग अ ग्लोबल बेंचमार्क फॉर इंक्लूसिव वैल्यू लेड टूरिज्म। मैं हूं आफरीन आपके साथ माइक से दिल तक, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Escabana, escabana, sacabana. Rambala. Burga, burga. La virtual la burga.
0: Mirchi, burga.
2: हेलो
3: हेलो सर, वेरी गुड इवनिंग। मैं सेल्यूलर से बोल रहा हूँ। सर हमारी एक स्कीम आई है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको समझाऊँ। ये वॉइस मेल के लिए है, अगर आप चाहते हैं और आपको इंग्लिश नहीं आती है सपोज माने आप, तो आप कोई भी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसको आगे भेज सकते हैं।
2: अच्छा,
3: आप हिंदी में अपना मैसेज छोड़ेंगे और हमारी मशीन उसको कन्वर्ट करके दूसरी लैंग्वेज में डब कर देगी सर, जिसका सर कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, मंथली कोई चार्ज नहीं लगेगा। सर आप चाहेंगे ये स्कीम आपको दे दी जाए?
2: के पास है क्या ये सर्विस?
3: बिल्कुल सर, कोई एडिशनल चार्जेस नहीं है सर। जो आपका नॉर्मल प्लान चल रहा है उस प्लान के अकॉर्डिंग आपका बिल आएगा, सिर्फ आपकी एक फैसिलिटी बढ़ जाएगी।
2: जो क्या कॉस्टिंग पड़ेगा पर मैसेजेस का?
3: सर आप दिन में अगर 100 मैसेज भी भेजते हैं तो आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा, आपका नॉर्मल रेंट रहेगा जो आपका चल रहा है अभी।
2: ठीक है,
3: बीप सुनने के बाद अपना मैसेज छोड़िएगा।
2: ओके अगम सर, मुझे आपके अंडर में काम करना बहुत अच्छा लगता है, तो आप प्लीज मुझे अपनी टीम में रख लीजिए।
3: सर वेरी गुड, आपका मैसेज रिकॉर्ड हो गया सर, हमने इसको दूसरी लैंग्वेज में डब कर दिया। अब आपके बॉस ये सुनेंगे, सुनिए।
2: ये क्या है भैया?
3: सर ये आवाज तो आपकी लग रही है, मुझे लग रही है सेंटेंस इधर उधर हो गए।
2: तो मशीन चलाने आती भी है
3: सर? मैनेजर के अलावा किसी और को मैसेज देखे? देखिए
2: हेलो वीना मैम, प्लीज अभी जो आ रहा है प्रोजेक्ट उसके लिए मुझे नॉमिनेट कर लीजिए अपनी टीम में।
3: सर थैंक यू सो मच, आपका रिकॉर्ड हो गया, वीना मैम को ये सुनाई देगा।
2: मजाक कर रहे हैं तू मेरे से?
3: सर मेरी बात सुनिए, ये जो मेरी बात सुनिए सर, सर सर सर सर सो सॉरी, आई एम सो सॉरी सर, जितना आप मुझ पे चिल्लाए हैं मैंने रिकॉर्ड कर लिया। देखिए अब सही आएगा, देखिए ये दूसरी लैंग्वेज में आएगा, रुकिए सर आप। हेलो मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात तो सुनिए सर, मैं इतनी गाली नहीं सुन सकता सर, मैं
4: रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ। मैंने तो रैंडमली आपका नंबर मिला दिया था सर, दिल्ली में सब आपको सुन रहे हैं, आप रेडियो मिर्ची में मुर्गा बन गया है आपका, प्लीज इतनी गाली मत दीजिए यार।
3: सर मैंने ये भी रिकॉर्ड कर लिया, देखिए सुनिए क्या आया डब हो गए।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पटाक।
6: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस, और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी। विजिट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
7: तारीख पर तारीख मिलती रही है लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट।
8: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा।
9: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6
11: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: खुशा ग्रह की आवाज और ये गाना राइटर ऑन मिर्ची और मिर्ची घड़ी का इशारा हो रहा है दोस्त सुबह के 9:17 पर।
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: और जहाँ पर आपको वक्त भी बता दिया है तो चलिए वक्त के साथ बदलते हुए ये एक्सचेंज रेट भी बता दो। देखो एक्सचेंज रेट ये कह रहा है कतरी रियाल के बदले मिल रहे हैं इंडियन रुपीज 26.19, पाकिस्तानी रुपीज 76.52, बांग्लादेशी टाका जो है 33.93 पर है, श्रीलंकन रुपीज 91.90 और नेपाली रुपीज 41.71। ये थी आज की एक्सचेंज रेट और ये कुड़ी लेकर आई है अगला गाना शाहिद मलिया की आवाज में, एक कुड़ी जिदा नाम आफरीन है, ये गाना सुना रही है। भाई मुझे गाने का बड़ा शौक है, वो अलग बात है, मैं बहुत ज्यादा बेस सुनी हूँ, बट ठीक है यार कभी कभार।

कभी ऐसा हुआ है कि हम मिलेनियल होकर भी आपको काफी आउटडेटेड फील हुआ है? होता है ना कई बार कि भाई टेक्नोलॉजी का कुछ रफ्तार इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि थोड़ा सा वी आर नाउ लिटिल लिटिल स्ट्रगलिंग टू कैच अप, जैसे जेंजी फटाफट से कैचअप कर लेते, ऐसे ही कुछ हाल ना पेड्रो का है। अब पेड्रो कौन है ये? पेड्रो वो है जो साइबर क्राइम कॉमेडी ड्रामा में फीचर करता है। वेल आई एम टॉकिंग अबाउट प्रीतम एंड पेड्रो, अर्शद वारसी का ये नया वेब सीरीज जो डायरेक्ट किया गया है बाय वन एंड ओनली राजकुमार हिरानी। ये वही राजकुमार हिरानी है भाई जिन्होंने मुन्ना भाई, MBBS लगे रहो, मुन्ना भाई, थ्री इडियट्स जैसे मजेदार मूवीज बनाए हैं। एंड नाउ हिरानी साहब इज हियर विद द OTT फॉरे विद हिज डेब्यू। अब बड़ा ही मजा आ रहा है ये देखकर, मुझे बहुत अच्छा लगा इसका ट्रेलर एंड आई थिंक सो यू शुड एक्चुअली वॉच दिस, जहां पर पेड्रो हु इज अ मिलेनियल हु इज अ कॉप और वो ना कहीं थोड़ा सा पीछे है ये टेक्नोलॉजी के चक्कर में, लेकिन प्रीतम जो है ही इज अ टेक सैवी यंग हैकर। आप बता दो प्रीतम का जो किरदार प्ले कर रहा है ना वो हिरानी साहब का सुपुत्र ही है वीर हिरानी, यानी इज डन फेयर जॉब फॉर फर्स्ट टाइमर्स। वेल इतना तो मैंने बता दिया कि ये आप वीकेंड पर देख सकते हो एंड आई थिंक सो यू शुड नॉट मिस इट, जब बात कॉमेडी की भी आती है थ्रिलर की भी आती है, सो इट्स अ नाइस ब्लेंड। अब इसके बाद बात करते हैं वो मूवीज के बारे में जो OTT पर रिलीज हुई है, जैसे पति पत्नी और वो दो, इट्स नॉट पति पत्नी और वो, इट्स वो दो। वेल ये मूवी आई थी थिएटर्स में मई में ही आई थी और अब ये प्रीमियर कर रही है नेटफ्लिक्स पर। वेल ये मूवी में है आयुष्मान खुराना, सारा अली खान एंड वामिका गब्बी और रकुल प्रीत सिंह, ये इतने सारे लोग हैं। सो ऐसा कुछ टाइम पास सा देखना है तो ये भी आप देख सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट इक्का nearly after 3 decades after border I could say Sunny Deol and Akshay Khanna they reunite in this gripping courtroom thriller jahan par Deol sahab plays a renowned lawyer, uske ilawa we have Akshay Khanna aur to unko bas tareef ki kya hi mohtaj hai ye, so ye bhi Netflix par hai। kafi sari cheeze maine bata di hain OTT ke platform par jo ye weekend par aap aane wale weekend par zarur enjoy kar sakte hain। main hu Afreen aapke sath mic se dil tak, right here on Mirchi, it's hot।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक दूल्हा ना ट्रैफिक से बचने के लिए साइकिल से मंडप तक पहुंच गया।
3: वैसे ना ये ग्रीन फ्लैग है, क्योंकि इसको पता है कि रिलेशनशिप की गाड़ी जो है दो पहिए पे चलती है। और मुझे पता है कि इसकी बारात में ना ढोल नगाड़े नहीं जबकि साइकिल की बजेगी।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: Why go outside to see a doctor when healthcare can come to you?
6: With KIMS Health at Home, get doctor consultations, nursing care, physiotherapy, blood sample collection and more. All at one place. Call 5572-7387 today.
7: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते। जहाँ खड़े हो जाते हैं, लाइन वहीं से शुरू होती है।
8: और हम जहाँ चल जाते हैं, बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है।
9: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक सिंपली आफरीन का साथ है और नाउ इट्स टाइम जब सिंपली आफरीन अपनी डायरी से एक पन्ना खोलती है और एक बड़ी खूबसूरत बात आपके लिए लेकर आती है जो शायद आपके दिन के लिए वो इम्पोर्टेंट हो सकती है, किसी के लिए नहीं हो सकती है, लेकिन यार बात बड़ी खूबसूरत होती है।
1: आफरीन की डायरी से शायरी।
0: मांगी हुई चीजों की अदा ही है वापस जाने की, तो मांगी हुई चीज़ों की अदा ही है वापस जाने की, चाहे वो मांगा गया वक्त हो, अहमियत हो या सुकून हो। What a beautiful line and it has such deep meaning. देखिए, अगर आपकी अहमियत है किसी और की ज़िंदगी में ना, तो उनसे आपको कोई वक्त या कोई सुकून या कोई चीज़ की मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो कहते हैं ना कि एक सेफ स्पेस बन जाते हैं and everything follows without any unconditional any condition, it is all unconditional. मैं हूँ आफरीन आपके साथ माइक से दिल तक, राइटर और मिर्ची, और वीकेंड की एनर्जी को आगे बढ़ाते हुए अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं। राघव चैतन्य वरुण जैन की आवाज में ये गाना उन मिर्ची साथ।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: मिलिन सोमन, आपकी इतनी फिट बॉडी है, क्या आपने कभी इस बॉडी का फायदा उठाया है? आ जा, दिखाता हूँ तुझे, झगड़ा करेगा मेरे साथ।
3: कभी झगड़ा नहीं किया, और टफ फिजिक का मतलब ये नहीं कि झगड़ा करके उसको जस्टिफाई करो। गुड फॉर शो व्हिच इज गुड फॉर माय प्रोफेशन एंड आई वर्क अ लॉट, आई वर्क वेरी हार्ड, सो आई नीड दैट फिटनेस लेवल
2: एंड आई नीड योर मोटिवेशन लेवल। मिलिन सोमन, आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल डाल, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
4: Hello, Sharps. Our product is phenomenal. One of a kind, but still profit nahi ho raha hai. Maine Baba Ji se advice li to kehte hain.
5: Office ke toilet mein toilet paper white nahi, yellow lagao. Profit aayega.
4: Relative se advice slow to kehte hain.
6: Kaam ko time do. 25 ghante kaam karo. Dark circles honge, to future bright hoga.
4: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए, जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो।
7: भाई क्या कर रहा है तू? जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है, ना इधर उधर भटकना है। गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहाँ तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट।
8: Qatar's number one Hindi radio station, Mirchi. Take your partner with us now. Your business will go wow. Call now. 7070-7687.

क्या आपको पता है कि आज कौन सा दिन है? अब आप कहोगे छड्डो यार आफरीन, क्या बोल रही हो, कैसे नहीं पता रहेगा हमको? ऑफकोर्स पता है भाई, आज थर्सडे है, 9th of July है, ऑलमोस्ट अब 1/3 हमारा ख़त्म होने आ गया है ये महीने का, यूं चुटकी बजा के। लेकिन यार थर्सडे से ही ना थोड़ा सा वीकेंड बनाना चालू करो। अगर कोई प्लान फ्राइडे के रखे है तो उसको थर्सडे शाम पर डाल दो। क्या होता है ना, जब आप ये प्लान्स करके आ भी जाते हो तो आपको ऐसा लगेगा अरे अभी तो कल से स्टार्ट होने वाली है ना छुट्टी, बड़ा लंबा लगता है वीकेंड। दैट्स व्हाट आई डू, आई कीप ऑल माई प्लान, ऑल माई सोशल गैदरिंग्स जो भी है वो सब मैं सिर्फ थर्सडे के लिए ही रखती हूँ, और फिर फ्राइडे को चलो कुछ रहता है तो कर ही लेती हूँ, लेकिन नहीं, आई प्रेफर थर्सडेज। विद दिस चलिए मैं जाती हूँ। आज तो यार बड़ा मजा आने वाला है कतर में, क्योंकि आज ना मोरक्को वर्सेस फ्रांस की मैच है, क्वार्टर फाइनल्स है, फुटबॉल फाइनल्स, मतलब ऐसे स्तर पर आ गया है कि भाई अब तो एकदम खूनम खून होने वाला है अपने तो जज्बातों के। लाइक जिस तरह से जब फैंस होते हैं ना, इस तरह से दोस्त भी दुश्मन हो जाता है ना अगर वो कोई अलग अलग टीम को सपोर्ट करता है। लेकिन ये सब कुछ आपको इन्जॉय करना है, आई थिंक सो यू शुड गो टू सम पब्लिक प्लेस। आप जाइए मॉल ऑफ कतर में जाइए, आप अलमहा आइलैंड के फैन जोन में जाइए, वहाँ जाकर ना सबके साथ में देखो मैच, बहुत अच्छा लगता है। एंड टॉकिंग अबाउट मोरक्को, इट रियली ब्रिंग्स बैक टू द मेमोरीज ऑफ 2022। जब भी मोरक्को की जीत होती थी ना, मुझे अच्छे से याद है, आई यूज टू गो रनिंग टू सूक वाकेफा, और सेलिब्रेशन इतना मजे का होता है। क्या आज भी हमें ये देखने मिलेगा? सोचिए, बताइए, हु आर यू सपोर्टिंग, फ्रांस और मोरक्को? 5000 1896 इज माई नंबर यर। फटाफट से मैसेज करके बताओ कि आप कौन सी टीम को आज सपोर्ट कर रहे हो। मीनवाइल अच्छा चलती हो दुआओं में याद रखना, ये गाना सुनाते हुए जा रही हो भाई, और साथ ही साथ ये भी कह रही हो कि सच में दुआओं में याद रखना। टाटा बाय बाय, सायोनारा, माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ।

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन?
1: नहीं नहीं, हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है?
0: मेरे घर के पास बहुत कबूतर है, परेशानी होती है यार, क्या करूं?
1: तुम्हें जब पता है कि इतने सारे कबूतर हैं, तो घोंसले के बाजू में घर मत बना, समझा?
2: रख, रख,

0: जुबिन नौटियाल की खूबसूरत सी आवाज़ एंड व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज़। मतलब कुछ गाने ऐसे हैं जो आज हमें सुनाई देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी इन्हें सुनने के बाद ना 90s वाला एहसास ज़रूर होता है। तो ये एक गाना उनमें से ज़रूर है। हैविंग सेड दैट, मिर्ची घड़ी में इस वक्त बज रहे हैं 10:05।
1: Time check in association with Naseem Medical Center, Qatar's largest private medical center.
0: यार हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो ना हमारे बचपन के साथ बड़ी हुई हैं और हमारी ज़िंदगी का कुछ इस तरह का हिस्सा बनी हुई है कि हम कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो जाए ना, इन्हें बदल पाना बहुत मुश्किल है। हेलो, वेलकम बैक, यू लिसनिंग टू मीठी मिर्ची एंड दिस इज़ आरजे अंशु विद यू। एक बार फिर से आपकी ज़िंदगी में शामिल होकर मुझे ना बड़ी खुशी हो रही है। देखो, मुझे ना तुमसे इस वक्त कोई सवाल करना है, लेकिन मैं तुमसे पूछूं उससे पहले मैं आफरीन से पूछूंगी। आफरीन, अगर मैं तुम्हारे बचपन की बात करूं एंड खासकर मैं समर वेकेशंस की बात करूं, यार कैसा बीता करता था? व्हाट इट यूज्ड टू बी, मतलब हर बार जब स्कूल खत्म हो तो तुम्हारी जिंदगी का एजेंडा क्या होता था?
2: पहले तो वी कम फ्रॉम दोज ब्लेस्ड जनरेशन जो 90s में बिगर कोई फिक्र के, बिगर कोई डर के हमने आउटडोर्स में खूब खेला है, धूप में जले हैं, साइकिल से गिरे हैं, घुटने फोड़े हैं, सब कुछ किया, मिट्टी में खेला है, विच आई डोंट थिंक सो आजकल के बच्चे समझ भी पाएंगे कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो आई वाज क्वाइट ब्लेस्ड कि पूरा टाइम मैं बाहर ही रहती थी। सुबह उठ गए, बाहर चले गए, फिर दोपहर के खाने को आए, फिर आए थोड़ा सा नैप ले लिया, वो भी जबरदस्ती मम्मी ने ऐसे मार के कूट के सुलाए, और उसके बाद में फिर से खेलने चले गए शाम को, और रात तक खेलते रहे अंटिल गुस्से में पेरेंट्स ढूंढ ना रहे हो। सो दैट इज हाउ वी वर प्लेइंग यार ऑल द टाइम।
0: लेकिन पता है मुझे क्या लगता है कि कहीं ना कहीं ना अगर वेकेशंस की बात करें, समर वेकेशंस की बात करें, तो चाहे हम नानी घर हो या अपने घर हो, हमारा ये एजेंडा जो होता था वो सेम होता था। इनफैक्ट आज की डेट में मुझे ऐसा लगता है कि लोग इतनी प्लानिंग करते हैं यार इस वेकेशन कहाँ जाना है, ये जाना है, आइटिनरी बनाना है, भैया हम तो पूरे के पूरे बचपन में एक ही थॉट ना एक अड्डा हुआ करता था, एंड दैट यूज्ड टू बी नानी का घर। पूरे बचपन के 10-15 साल ऐसे ही बीते हैं और हम कभी बोर ना हुए। सेम एक्टिविटीज, सेम हरकतें, सेम लोग, सेम एक्सपीरियंस, सेम दैट। लेकिन जो तुमने एक बात कही कि हम इतना बाहर निकलते थे, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ना आज के पेरेंट्स की भी गलती है, बिकॉज वी हैव बिकम ओवर प्रोटेक्टिव अबाउट अवर किड्स। अभी उसे घुटने में चोट लगी, यार इतनी गर्मी है, बाहर निकलेगा टैन हो जाएगा। हमारे माँ बाप तो बेफिक्रे थे, जाओ जाओ लेकिन प्लीज जाओ, लेकिन खाना खाने आ जाओ।
2: उल्टा था ना, तभी एक्चुअली आई फील के घर आओ, बाहर हम इतने रहते थे, और अभी के बच्चों को नहीं जाना है। ये भी एक है कि भाई जाओ खेलो, आई एम नॉट द वे कि भाई जाओ घर से निकल जाओ।
0: ट्रू दैट। चलिए, अगर मैं आपके बचपने की बात करूं तो क्या आपकी कहानी हमारी कहानी से मैच होती है? क्या आपका बचपन भी कुछ इसी तरह का बीता है? बताओ यार 5000 1896, लेट्स गेट कनेक्टेड देयर। इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु। मीनवाइल एक काम करते हैं, आज के शो की शुरुआत ना लकी अली के साथ बड़े लकी तरह से करते हैं। बड़ा ही प्यारा सा गाना है, मेरा सबसे फेवरेट ट्रैक, आप तक पहुंचाती हूँ। एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: Milchi. Escabana, escabana, sacabana. Gambala. Burga, burga. La vieja la burga. Milchi, burga.
1: Hello.
2: Hello, Tejinder ji.
1: हाँ जी,
2: हाँ जी तेजेंद्र जी, मैं बोल रहा हूँ पासपोर्ट ऑफिस से। आपने अप्लाई कर रखा था पासपोर्ट?
1: जी, हाँ जी किया था।
2: हाँ, ये तेजेंद्र जी आपका थोड़ा लेट मिलेगा पासपोर्ट, आपको ये इन्फॉर्म करने के लिए फोन किया था मैंने।
1: कितना लेट मिलेगा
2: आपको इसमें? एक सेकंड रुकिए, मैं चेक कर लेता हूँ। अरे इनका तेजेंद्र का पासपोर्ट कब मिल रहा है? तत्काल में, आपने तत्काल में बनवाया ना इमरजेंसी में?
1: हाँ जी,
2: एक सेकंड। हाँ, इमरजेंसी का है सर। 3.5 महीने बाद मिलेगा आपको पासपोर्ट।
1: 3.5 महीने बाद?
2: हाँ जी
1: भाई साहब, तत्काल का क्या मतलब होता है? 5 दिन में मिलता है तत्काल का? तो
2: सर वो मुझे ही मालूम है, मेरे को क्यों समझा रहे हैं। असल में तेजेंद्र जी वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। आपके आसपास कोई है तो नहीं?
1: नहीं, कोई नहीं है।
2: मैं ये कह रहा था, हमारा एक बंदा है जिसकी शक्ल आपसे मिलती है, ठीक है?
1: अच्छा।
2: बिल्कुल वो डिक्टो कॉपी लगता है आपका, जीरोक्स लगता है। अच्छा, उसको निकलना है दुबई। वो वैसे तो निकल नहीं सकता अपने पासपोर्ट से क्योंकि पुलिस पकड़ लेगी। तो हम कुछ दिन के लिए आपके पासपोर्ट पे से आपका फोटो हटा के, ना आपकी दाढ़ी होती तो चल जाता, उसका फोटो चिपका के आपके नाम से वो दुबई जाएगा। वो 3-4 आदमियों को ठिकाने लगा के वापस आ जाएगा, तो उसमें 3-4 महीने लगेंगे।
1: क्या बोल रहा है भाई? कौन? हेलो।
2: तो मैं उसको बोल देता हूँ, वो वहाँ पे वो आपके घर पहुँचवा देगा। आप बल्कि वो बंदा ही।
1: हेलो।
2: हाँ, बोलिए बोलिए।
1: क्या बोल रहा भाई?
2: आपके पासपोर्ट पे उसका फोटो लगा के आपके नाम से वो दुबई जाएगा। 2-3 को ठिकाने लगाना, वापस आ जाएगा, उसका जरूरी काम है।
1: मैं बोल रहा हूँ,
2: मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ।
1: क्या बोल रहा है? क्या
2: आप इतना भड़क क्यों रहे हो? काम आप थोड़ी करने जा रहे हो, काम तो वो लगाने जा रहे हैं ठिकाने।
1: नहीं, बात क्या कर रहा है? पासपोर्ट पे किसी और को भेज रहा है
2: यार। आप मेरी तेजेंद्र जी,
1: नहीं
2: सोचो वो कितना भड़क रहा होगा। 3 आदमियों को उसको टपका के आना है दुबई में, उसकी भी तो भड़कन सोचो ना।
1: मेरे नाम पे जाके
2: अरे तो यार, आपका पासपोर्ट आपको वापस मिल जाएगा। 1.5 महीने के लिए आपका नाम यूज कर रहा है। आपका नाम यूज करने में आपकी गाड़ी मांग रहा है क्या? गाड़ी यूज कर रहा है वो?
1: नाम बता पहले तू, कौन रहा है?
2: ये लकी ड्रॉ निकल रहे हैं, वरना किसी और तेजेंद्र को भेज देते। आपका मौका लगा, आप इसे भड़क रहे हो उल्टा। मेरी बात सुनिए तेजेंद्र। तेजेंद्र, मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, और तुम रेडियो मिर्ची पे हो। मुझे शालिनी ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने कहा था कि तुमने पासपोर्ट अप्लाई कर रखा है, तुम्हारा मुर्गा बनाया भाई। तुम बहुत गुस्से वाले हो, तो मैं सोच रहा हूँ तुम्हें दुबई भेज दूँ, उसे नहीं भेजूं।
3: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
4: पहलवानी तो सिर्फ छोरे करें।
5: हमारी चोरियां छोरों से कम है के?
6: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के?
7: कम है के?
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6
10: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is RJ Anshu with you. मैं सच कहूँ यार, मैं हर दिन जब आपसे बात करने आती हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है. अब अच्छा क्यों लगता है ना, इसके कई रीजंस हैं, कई वजह है. देखो यार, रेडियो जो है ना, मेरे लिए सिर्फ मेरा एक प्रोफेशन नहीं है. ये दिन का वो वक्त होता है जब मैं जेन्युइनली अपने लिए जीती हूँ. मेरे दिल की जो भी बातें होती हैं, जो भी ख्याल होते हैं, जो भी थॉट्स होते हैं, बिना किसी प्रेजुडिस के, बिना किसी सोच के, आई कैन जस्ट प्रेजेंट इट ओपनली एंड फ्रीली. लेकिन सबसे अच्छी बात क्या होती है पता है, कि जब दिल की बात आप तक पहुँचाई जाती है ना, आप उसी अच्छे अंदाज में उसे रिसीव करते हैं ना, आपके कोई मैसेजेस या थॉट्स आते हैं. चलिए आज ना मैं आपको एक बात बताती हूँ यार. मुझे ना बचपन से मेरे पापा ने एक चीज़ सिखाई है कि तुम चाहे लाइफ में जो भी काम करो, जिस भी चीज़ को हासिल करना चाहो, सिर्फ उसका ख्याल या थॉट जो है ये ज़रूरी नहीं. सबसे ज़्यादा ज़रूरी अगर कुछ है तो वो है एक्शन. मतलब जब तक आपके वर्ड्स एंड थॉट्स आपके एक्शन से मैच नहीं होते हैं ना, तब तक लाइफ में आपका कोई ड्रीम या डिज़ायर जो है वो फुलफ़िल हो ही नहीं सकता. तो इसलिए बेहद ज़रूरी है कि जो भी करना चाहो उसमें दिल लगा के जुट जाओ यार. अब जहाँ पर एक्शन ज़रूरी है, वहाँ पे एक और पॉइंट आता है जो और भी ज़्यादा ज़रूरी है, एंड वो है डायरेक्शन. अगर हम मेहनत कर रहे हैं लेकिन जिस डायरेक्शन पे हमें चलना है हम उस डायरेक्शन पे चल ही नहीं रहे, हम उल्टा चल रहे हैं, तो अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे तो कैसे पहुँचेंगे यार. तो इसलिए ये फिगर आउट करना और भी ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जो भी आपकी मंजिल है, जो भी आपके सपने हैं जिसे आप साकार होते देखना चाहते हो, उस मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ता कौन सा होगा. एंड जिस दिन वो रास्ता पकड़ में आ जाए ना बॉस, उसके बाद दिल से अगर कुछ करना है तो पूरे जोश, जुनून एंड जज्बे के साथ अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए जो काम लगे ना, उसे करने में जुट जाओ यार. एक ज़िंदगी मिली है, क्यों ना कुछ इस कदर इस तरह जिए कि जिस दिन इस ज़िंदगी को अलविदा कहें या जिस दिन हम इस ज़िंदगी से रिटायर हो ना, उस दिन पूरे फख्र के साथ, पूरी खुशी के साथ ऊपर वाले की तरफ देख सकें, उसे दिल से ये बात कह सकें कि तुमने जो जो मुझे खूबियाँ दी थी ना, तुमने जितना मेरे डब्बे में भरा था ना, मैंने सब कुछ यूज़ कर लिया, उसका एक तनका भी मैंने नहीं छोड़ा. मेरे पापा की कुछ लाइन्स हैं जो आप तक पेश करती हूँ. किसी की चार दिन की ज़िंदगी में 100 काम होते हैं, किसी की चार दिन की जिंदगी में 100 काम होते हैं, किसी का उम्र भर का जीना भी बेकार होता है. किसी के एक आंसू पर लाखों दिल तड़पते हैं, लेकिन किसी का उम्र भर का रोना भी बेकार होता है. अब कैसी शख्सियत बनना है ये तो आपके और हमारे हाथ में है ना. अगर बात अच्छी लगी, मेरे पापा की शायरी अच्छी लगी, तो मुझे एक थैंक यू मैसेज जरूर भेजना. 5000 1896 5000 1896 आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर मैसेजेस. इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु. चलिए नीरज श्रीधर की आवाज़ में आपको अगला 90s का प्यारा सा गाना सुनाती हूँ. एंजॉय. बंदी का नाम अंशु.

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक दूल्हा ना ट्रैफिक से बचने के लिए साइकिल से मंडप तक पहुंच गया।
3: वैसे ना ये ग्रीन फ्लैग है, क्योंकि इसको पता है कि रिलेशनशिप की गाड़ी जो है दो पहिए पे चलती है। और मुझे पता है कि इसकी बारात में ना ढोल नगाड़े नहीं जबकि साइकिल की बजेगी।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।

0: बॉलीवुड का स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान। खान खान
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
1: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
6: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
7: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस संबोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
8: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट। क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सबका।

वेल कुमार सानू की खूबसूरत सी आवाज़, फिल्म का नाम डुप्लीकेट लेकिन क्या ओरिजिनल सा गाना जिसे कंपोज किया अनु मलिक ने। इसके लिरिसिस्ट रहे जावेद अख्तर। एंड सबसे खास बात, इस फिल्म के अगर लीड कास्ट की बात करें तो वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट पेयरिंग्स ऑन स्क्रीन, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट शाहरुख खान, जो कि डबल रोल में नजर आए विद जूही चावला अलॉन्ग विद सोनाली बेंद्रे। चलिए जी, ये प्यारा सा गाना तो मैंने आपको सुना दिया, लेकिन जिस खास बात का हमें इंतज़ार था, आम जनता जनार्दन को इंतज़ार था, वो आप तक पैगाम पहुंचा दिया जाए। मिर्ची अंशु यार, सच कह रही हूँ, मतलब आम खाने के ना अलग अलग तरीके हैं, लेकिन मेरा सबसे फेवरेट तो बस यही रहा है भाई, अंशु जो है एक बार फिर से आपकी जिंदगी में आ चुकी है। एंड आज का दिन जो है बड़ा ही खास है, क्योंकि आम सी बात नहीं है कि आम का त्यौहार यानी कि फेस्टिवल एक बार फिर से आज हमारी जिंदगी में दस्तक दे रहा है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट पाकिस्तानी मैंगो एग्जीबिशन विच इज स्टार्टिंग टुडे एट द ईस्टर्न स्क्वायर ऑफ सुख वाकिफ। वो एसी का टेंट, वो आम की बहार, और आपका और हमारा आना जाना, आपस में टकराना, मिलना, एंड हाय आम की पार्टी मिलकर करना। अब इस एक्सपीरियंस को मैं खास ना कहूँ तो क्या आम कहूँ? वैसे सच कहूँ यार, बचपन के दिनों को याद करने की कोशिश करूँ तो हमारे यहाँ ना आम खाने का तरीका काफ़ी अलग होता था। उस समय घर में ये 3-4 आम या 1-2 किलो आम नहीं आए करते थे, बल्क में आते थे, मतलब आम की पेटियां आती थी, क्योंकि हमारी एक जॉइंट फैमिली हुआ करती थी जहां पे एक घर में 37-38 लोग रहते थे, यू नो 37-38 पीपल। तो आम की सीधा पेटी की पेटी आती थी, एंड पेटी से आम को निकालते ना वो एक बड़ा सा एल्यूमिनियम का वेसल होता था जिसमें पानी भरते थे, एंड आम को उसमें डिप करके छोड़ दिया जाता था। और अब हम बड़े हों या बच्चे, चलते फिरते ना यार, आम को हम छिलेंगे नहीं, कोई चक्कू नहीं, कुछ नहीं, सीधा आम बाहर निकाला, पका हुआ आम जो महसूस हुआ उसे हाथ से ही प्रेस कर करके उसे सॉफ्ट किया, एंड पूरा का पूरा स्क्वीज। यार वो जो एक्सपीरियंस आम खाने का रहा है ना, वो आज की डेट में नीटली स्लाइस्ड मैंगोस का कभी हो ही नहीं सकता। क्या आपने आम के मजे ऐसे कभी लिए? यार माना कि कपड़े गंदे हुआ करते थे, माना कि कहीं ना कहीं सब कुछ जो है ना मेसी लगता था, लेकिन एक्सपीरियंस जो है वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी होता था, एंड उसका सुख उसका चैन आज के बच्चों को कहाँ ही समझाया जाए। यार एक बात बताओ, क्या आज की डेट में भी आप आम के मजे कुछ इस तरह से लेते हो, या हाउ इज योर एक्सपीरियंस लाइक? और अगर आम की बात करूँ तो वो आम की कौन सी डिश है जो आपकी सबसे ज्यादा फेवरेट है? फॉर मी इट इज आमरस। एंड कच्चे आम की बात करें तो कच्चे आम का पन्ना, मतलब वो जो खट्टा वाला ड्रिंक होता है। हाउ अबाउट यू? 5000 1896 5000 1896। लेट्स गेट कनेक्टेड देयर। इंस्टाग्राम Mirchi1 कतरिया मिर्ची आंशु। जब तक आप मुझे अपनी दास्तान सुनाते हैं, मैं आपको केके की आवाज में, सिंस आपसे प्यार है सवाल नहीं है, लेकिन एक गाना ही सुना देती हूँ। एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: गोविंदा, आपका अल्टीमेट फिटनेस टिप कौन सा है?
3: मुझे ऐसा लगता है योग और प्राणायाम जो है, इससे आपकी बॉडी जो है बहुत ही करेक्ट रहती है और आपको मतलब वो घबराहट नहीं होती है।
2: तो ये एडवाइस आप देंगे कंटेम्प्रेरी हीरोज को?
3: योग प्राणायाम तो करते ही होंगे वो लोग, मुझे ऐसा लगता है।
2: आपको क्या लगता है कौन कौन करता होगा? मैं आपको तीन नाम देती हूँ, इन तीनों में से बताइए। वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा, जॉन अब्राहम।
3: ये तीनों एक्टर्स ऐसे हैं लोगों की, मुझे ऐसा लगता है कि बॉडी ज्यादा अच्छी है और कि पता नहीं कितने पैक निकले हुए हैं। उस जमाने में तो पूरी शाम में सब लोग हीरो लोग पैक ही लगाया करते थे, अब वो पैक उनके पेट पे आ गए। टेढ़ा मेढ़ा क्या नजर आ रहा है, ये पेट है इनका। ओहो, अच्छा अच्छा, फाइन फाइन फाइन, वेरी गुड वेरी गुड।
2: फिटनेस का पता नहीं लेकिन सेंस ऑफ ह्यूमर पर 110 फॉर चीची। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल,
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
5: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
1: बार बार।
5: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
6: 89.6
5: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: चलिए जंग जो है अब आपके बीच ना शुरू होने वाली है।
1: मिर्ची अंशु
0: एग्जाम जो है हमारे जमाने में किसी जंग से कम थोड़ी ना हुआ करती थी। ऐसे ही लगता था जब रात भर पढ़ाई करने के बाद हम एग्जाम के उस रूम में हॉल में पहुंचते थे कि भैया जंग के मैदान में हम पहुंच ही चुके हैं एंड उसके बाद जिससे जो हथियार हम हथिया सकें उसे कर ही लो। वेल अंशु जो एक बार फिर से आपके साथ आ चुके हैं, बचपन की कोई तो खास बात है याद दिला रही हूँ उसके साथ एक बार फिर से जंग के मैदान में आपको उतारने की मैं तैयारी भी करूँगी। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि एग्जाम्स में ना हम सबसे ज़्यादा एक्साइटेड तो इस बात से होते थे कि ओवरनाइट स्टडी में इतनी मेहनत कर जो हमने पढ़ाई की है बस ऊपर वाले की दुआ जो है वो कबूल हुई या ना हुई कि जो जो हमने पढ़ा है एग्जाम पेपर में बस वही सवाल आया हो। बाई चांस ऐसा हो जाए तो क्या ही बात है और अगर ना हो तो आजू बाजू वाले लोग जो है बकायदा नॉन स्टॉप हमारी तरफ देखते रहे। भाई हमने हिंस में कितनी चीटिंग किया ना आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। इनफैक्ट जेन्युइनली नहीं मतलब मेरी कहानी अलग थी, थोड़ी मैं टॉपर टाइप भी थी लेकिन हाँ चीटिंग कराने में मैंने कहीं कोई कमी ना छोड़ी है। आंसर शीट्स तक हमने अपनी पास की है, आगे से लेके पीछे से लेके पूरी क्लास में घूम कर कब हमारे पास आती थी ये बात पता ही नहीं चलती थी। लेकिन यह जरा सोची कि वो दौर वो जमाना कितना अलग हुआ करता था। मतलब हमारे अंदर ऐसा वाली कंपटीशन की कोई फीलिंग ही नहीं होती थी कि भैया अगर मैंने आंसर लिखा है कोई और मेरा कॉपी क्यों ना करे। भैया अपना भला हो एंड साथ में सबका भला हो अपनी फिलॉसफी जो है बस एक ही हुआ करती थी। बढ़िया है जी, चलिए अब सवालों का सिलसिला इस वक्त खोलते हैं एंड आपके बीच एक पहेली पेश करते हैं। आपको इस पहेली को बुझाना है, सुलझाना है, सही जवाब बस मुझ तक पहुंचाना है। लेकिन कहां, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 5000 1896 5000 1896 वी विल गेट कनेक्टेड देयर। अब ये सवाल है रिश्तों पर। अरे पहेली ऐसे रिश्तों पर सवाल हम ना उठाते। आपको मुझे ये बताना है कि आपके दादी की पति के इकलौते बेटे की वाइफ की बहन रिश्ते में आपकी क्या लगेंगी। आपकी दादी के पति के इकलौते बेटे की वाइफ की बहन रिश्ते में आपकी क्या लगेंगी। किसी ने मैसेज किया एक बार धीरे से फिर से बोलो। भैया दो बार सवाल रिपीट क्यों, क्या याद रखोगे, चलो बोल ही देती हूँ। आपकी दादी के पति के इकलौते बेटे की वाइफ की बहन रिश्ते में आपकी क्या लगेंगी। 5000 1896 आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर मैसेजेस एंड आई वुड रियली अप्रिशिएट योर ऑडियो मैसेज। मीनवाइल हरिहरन की आवाज अलका याग्निक का साथ बहुत ही प्यारा सा गाना 90s का आपके लिए। एंजॉय बिंदी का नाम।

0: Balneel Sridhar and Sunidhi Chauhan ki khoobsurat si awaaz and what a lovely track it is. Ye power pack gana from the film Love Aajkal, jise compose kiya Pritam ne, aur kya khoobsurat se alfaz ek bar phir se Irshad Kamil ke. Kaafi had tak ye gana jo hai na meri zindagi ko 101% describe karta hai. Ek bar phir se beautiful film by Imtiaz Ali, and agar aapko on screen koi nazar aaye to wo hain Saif Ali Khan and Deepika Padukone. Badi hai ji, chaliye ye gana to maine aapko suna diya, lekin ha aapki chori jo hai wo zarur pakdi gayi.
1: मिर्ची अंशु
0: अरे बस वही वाली जो अपनी मम्मी से छुप छाप के आप जो है इन्हीं के घर जाके किया करते थे. यार बचपन के दिन भी क्या कमाल के दिन थे. अंशु आ गई एक बार फिर से आपके पास आपके साथ 90s की यादों में, जहाँ पे एक तरफ हम डाइविंग करते ही रहते हैं वहीं दूसरी तरफ कुछ रिश्तों के एहसासों को दोबारा जी ही लेते हैं. एंड बस अब से कुछ देर पहले मैंने आपके बीच पेश की थी एक पहेली, जिसको बुझाकर सुलझाकर आपको मुझे ये बताना था कि रिश्ते का कौन सा किरदार है जिसकी कहानी मैंने आपके सामने बयां की. एंड बस मैंने आपसे ये पूछा था कि भैया आपकी दादी के पति के बेटे के वाइफ की बहन रिश्ते में आपकी क्या लगेंगी. आपकी दादी के पति के इकलौते बेटे की वाइफ की बहन रिश्ते में आपकी क्या लगेंगी. अगर लगता है अभी भी पहचान लिया तो 5000 1896 पर जहां पर आप सही जवाब भेज रहे हैं मैं आपको बताती हूं लोग बाग का क्या कहना है.
2: खाला हाय रेडियो दिस इज रेहान खाला लगी रिश्ते में आपकी
3: क्या. हाय अंशु दिस इज शिविका हियर. आंसर इज मासी लगेगी.
4: हेलो मैडम गुड मॉर्निंग. मैं फर्स्ट टाइम मैसेज कर रहा हूँ मैं आपके रेडियो चैनल पे. मेरा नाम नासिर खान है. अभी आपने जो पूछा है उसका आंसर है खाला आंटी
5: मौसी लगेगी मौसी.
0: ये आखिरी वाले भैया ने कुछ इसी तरह से समझा जवाब दिया सब्जी ले लो सब्जी. घर के बाहर अक्सर जो वेंडर्स आया करते थे वो कुछ इसी टोन में बात किया करते थे. वैसे थैंक यू सो मच यार, यू टुक द टाइम टू गेट द करेक्ट आंसर एंड ऑल्सो रिप्लाई बैक टू मी. इट रियली मैटर्स अ लॉट. थैंक यू सो वेरी मच. हैविंग सेड दैट, अगर इस रिश्ते की हम बात करें तो बिल्कुल मेरी जिंदगी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट किरदार रहा है एंड वो है मासी. आपके दादा की वाइफ यानी कि आपकी दादी के इकलौते बेटे यानी कि आपके पापा, पापा की बीवी जिससे आप और पापा दोनों ही डरते हो यानी कि मम्मी, एंड मम्मी की बहन यानी कि मासी. तो मेरी मासी का घर जो है ना घर के बेहद करीब हुआ करता था. मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि अगर मुझे कुछ खाना पीना है एंड अगर मम्मी मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं कर रही तो मैं मासी को ही सुबह फोन करके कह देती थी कि मासी मैं सुबह शाम में आने वाली हूँ, आप मेरे लिए बना के रखना. एंड हर एक ख्वाहिशें मासी ने मेरी जरूर पूरी की है. एंड मासी का बेटा और मैं हम दोनों जो है ना एक ही क्लास में पढ़ा करते थे, स्कूल आजू बाजू हुआ करती थी. तो उसी का काम होता था कि मुझे पिकअप करना है, मेरे स्कूल ड्रॉप करना है एंड उसके बाद जो है अपने स्कूल जाना है. क्या दिन थे यार, मतलब जो वक्त हमने अपने कजन्स के साथ बिताए हैं, अपने मामा मासी के साथ बिताए हैं यार, वो दिन जो है ना अलग ही है. क्या आपके ऐसे कोई खास एक्सपीरियंसेस रहे हैं जो आज आप मुझसे शेयर करना चाहेंगे. 5000 1896 लेट्स गेट कनेक्टेड देयर. इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु. तो माँ जैसी यानी कि मासी की कहानी तो मैंने आपको सुना दी. अब अरिजीत सिंह एंड सुनिधि चौहान की आवाज में ये अगला प्यारा सा गाना भी सुनाती हूँ. एंजॉय. बंदी का नाम अंशु.

0: Mirchi. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabbala. Murga, murga. La vizba la murga. Mirchi, murga.
1: Hello.
2: Hi. Ye call बैंक से है। आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है, हमारे कस्टमर केयर से आपको पासवर्ड मिलेगा। पासवर्ड बहुत कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए किसी को ना दे और इसका दुरुपयोग होने से बचाएं।
3: विकी जी, आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है, आप पासवर्ड लिख लीजिए प्लीज।
1: एटीएम वाला पासवर्ड है ना?
3: एटीएम वाला पासवर्ड है सर, ये पासवर्ड लिख लीजिए, मैं आपको बता देता
1: हूँ। एक मिनट मैं लिख लेता हूँ कहीं।
3: हाँ जी,
1: हाँ बोलिए।
3: 33501।
1: अच्छा
3: सर, एक सेकंड रुकिए, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। शैलेंद्र जी, जरा विक्की का पासवर्ड बताइए जरा इनको, ये फोन लाइन पे है एटीएम वाला।
1: हेलो,
3: मेरी वाइफ के पास भी है, एक सेकंड होल्ड करिएगा। मैं फोन मिलाता हूँ। हेलो डार्लिंग, हाय।
4: हाय।
3: अच्छा ये बताओ, ये विक्की का पासवर्ड क्या है?
4: विक्की का पासवर्ड 33501। एक काम करिए ना, धोबी से पूछ लीजिए क्योंकि उसके पास भी है।
3: धोबी से
4: पूछ लीजिए।
3: अच्छा ये जो हमारे कपड़े धोता है, एक सेकंड।
1: हेलो
3: सर, एक सेकंड होल्ड करना, वो धोबी से भी कंफर्म कर।
5: ये बेल जा रही है।
3: हेलो भैया। हेलो भैया, मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आप हमारे कपड़े धोते हो?
1: अरे भाई तो एक बात सुन, ये आपके हो
3: पास
1: क्या है?
3: आपके पास पासवर्ड होगा 33501? हाँ सर, 33501 है सर। हाँ जी सर, सर यही पासवर्ड है। मेरी बात सुनिए ना,
1: किस से पूछे जा रहे हैं?
3: किससे? मैं कंफर्म कर रहा हूँ ना सर, आपके पास।
1: ये क्या कंफर्म भाई, मेरा एटीएम कार्ड है
3: ये। एटीएम तो आपका तो पासवर्ड नहीं मिलेगा, पैसे कैसे निकलेंगे यार?
1: मुझे बताना, ये सबको थोड़ी ना, दुनिया में अल्लाह बचाने के थोड़ी ना होता है।
3: आपको तो जल्दी इतनी मच रही है, आपको जल्दी इतनी मच रही है, कल का टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लेते, उसमें भी आ रहा था, बेकार में एप्लीकेशन डाल दी, टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ लेते।
6: विकी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। तुमने पासवर्ड के लिए अप्लाई कर रखा था, तुम्हारा पासवर्ड अभी तक नहीं आया है। 33501।
1: किसने दिया मेरा नंबर?
6: आपका नंबर आशा ने दिया है, उन्होंने कहा था।
1: अरे मैं खुकड़ू को।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट। ये पका।
7: ओ भाई, जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6 FM, मिर्ची वन। इट्स हॉट।

केकी शान कुनाल एंड प्रवीण, इमेजिन जब चार लेजेंड एक गाने को बनाने में आ जाएं भाई, तो उसका एहसास जो हो कमाल ना हो तो फिर क्या ही हो। क्या गजब की कॉम्पोजिशन। एक बार फिर से यार, रहमान की फिल्म का नाम साथिया एंड ये मैजिकल ट्रैक तो मैंने आपको सुना दिया, लेकिन इस मैजिकल एक्सपीरियंस की भी बात हो जाए। वेलकम बैक, यू लिसनिंग टू मीठी मिर्ची एंड दिस इज आर्य अंशु विद यू। देखो यार, आप और हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे इर्द गिर्द, हमारे आसपास ऐसे कई सारे लोग हैं जो माना कि अपने अपने काम में, अपने अपने प्रोफेशन में लगे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर ना एक अलग सा हुनर है। लेकिन बहुत कम ऐसे किस्मत वाले लोग होते हैं जिनका प्रोफेशन ही उनका पैशन बन जाता है। तो अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रही हूँ जो आपको ये मौका देगा, ये प्लेटफॉर्म देगा कि आप अपने अंदर के छुपे हुए हुनर को दुनिया के सामने ले पाएं या नहीं। मतलब ऐसी कभी कोई बात हुई हो जब आपको लगा हो कि आप जो है वाकई बहुत टैलेंटेड है, लेकिन घर वालों ने बाथरूम तक लिमिट कर दिया हो। तो अब उस पैशन को प्लेटफॉर्म देने का काम मिर्ची कर रहा है विद कतर गॉट टैलेंट। एब्सोल्युटली हर द ट्राई, जुलाई के महीने में चल रहा है एक ऐसा मुहिम, एक ऐसी पेशकश जो कतर के हर एक खास परफॉर्मर को ये मौका देगा कि वो अपने टैलेंट को मंच तक पहुंचा सके एंड साथ ही बहुत सारे एक्साइटिंग गिफ्ट्स एंड प्राइजेस भी जीत सके। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि कतर गॉट टैलेंट एक है क्या, एक टैलेंट कॉम्पिटिशन है। आपके अंदर चाहे किसी भी तरह का कोई टैलेंट हो, आप बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा डांस करते हैं, आप एक मैजिशियन है, आपके अंदर मैथमेटिक्स की कोई खास स्किल है, स्पोर्टिंग स्किल्स है, वॉट एवर इट इज, इरेस्पेक्टिव आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक और खास बात, उम्र की ना ही कोई सीमा है, देश का ना ही कोई बंधन है। कुल मिलाकर चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो, चाहे आप किसी भी देश को बिलोंग करते हो, आप इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक और खास बात, चाहे आप एक इंडिविजुअल परफॉर्मर है या आप एक ग्रुप परफॉर्मर है या आप डुएट परफॉर्म करना चाहें, इट इज कंप्लीटली अप टू यू। द प्लेटफॉर्म इज ओपन एंड वाइड एंड वी आर सो वेरी लुकिंग फॉरवर्ड टू रिसीविंग योर एंट्रीज। तो अगर इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना है तो एक ही काम करना है, जल्दी से ऑडिशन के लिए एक आपको वीडियो भेजना होगा जिसकी ड्यूरेशन होनी चाहिए 30 सेकंड्स टू 60 सेकंड्स एंड दैट वीडियो शुड डिपिक्ट द टैलेंट दैट यू कैरी, डांस, आर्ट, म्यूजिक, वॉट एवर यू बिलीव। एंड फटाफट से भेज दीजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर विच इज 5000 1896, 5000 1896। वी विल गेट कनेक्टेड देयर। इस सैटरडे तक भेजेंगे तो जल्दी आएगी एंट्री, तो ज्यादा मौका मिलेगा कि आप कंपटीशन का हिस्सा बन सके। बाकी मंच में जब आपका हुनर लोगों के बीच आएगा तो उसकी वाहवाही सिर्फ मिर्ची नहीं पूरी दुनिया करेगी। अलका याग्निक एंड शान की आवाज, कुछ तो हुआ है मुझे नहीं आपको, गाना सुना दिया जाए, एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक दूल्हा ना ट्रैफिक से बचने के लिए साइकिल से मंडप तक पहुंच गया।
3: वैसे ना ये ग्रीन फ्लैग है, क्योंकि इसको पता है कि रिलेशनशिप की गाड़ी जो है दो पहिए पे चलती है। और मुझे पता है कि इसकी बारात में ना ढोल नगाड़े नहीं जबकि साइकिल की बजेगी।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: दोस्ती का उसूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू।
6: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू, हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए।
7: तो मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा।
8: खूब मिलेगा, खूब मिलेगा।
9: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

यार मुझे ना आपसे एक सवाल पूछना है, लेकिन मुझे आपका ऑनेस्ट आंसर चाहिए। एक सिंपल सी बात है कि अगर आज आप एक कैब बुक करना चाहते हो, आपके सामने गाड़ी भी आती है, लेकिन गाड़ी में ड्राइवर नहीं है, तो मुझे एक बात बताओ कि आप सही मायने में उस गाड़ी में बैठोगे? आई एम टॉकिंग अबाउट रोबो टैक्सीज। अंशु एक बार फिर से जुड़ चुकी है आपके साथ, एंड बहुत ही एक्साइटिंग बात आपको ये बताना चाहूंगी कि कतर में ऑलरेडी ये होना शुरू हो चुका है। कतर की मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट ने रिसेंटली मोवसलात के साथ इलेक्ट्रिक रोबो टैक्सी का सक्सेसफुल ट्रायल कंप्लीट किया, एंड ये रोबो टैक्सी बिना ड्राइवर के मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट हेडक्वार्टर्स से ओल्ड दोहा पोर्ट तक सक्सेसफुली चली। देखिए कई जगह ऐसे वीडियोज हैं जो वायरल हो रहे हैं, इनफैक्ट कई देशों में अभियान बहुत अच्छी तरह से चल भी रहा है, पूरा भी हो रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर ना अभी भी कहीं ना कहीं एक डर और एक हेजिटेशन है कि भाई क्या मैं इतना बड़ा मतलब रिस्क ले सकती हूँ। हो सकता है कल के दिन एक कतर में ये नॉर्म ही बन जाए, तो अगर मुझे ऐसा कोई एक्सपीरियंस लेना हो ना, तो मैं अपने साथ दो लोगों को तो कम से कम बैठा के ही इस गाड़ी में बैठने वाली हूँ। लेकिन पता है बात और क्या है यार, मेरी ना एक आदत है कि अगर मैं किसी भी टैक्सी में किसी भी कैब में बैठती हूँ तो मुझे ड्राइवर से बात करनी होती है। मुझे स्ट्रेंजर्स से बात करना काफी अच्छा लगता है, वो कहाँ से है। तो मुझे लगता है कि जहाँ पे एक तरफ टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, कहीं ना कहीं ये कुछ फैक्टर्स हैं यार जो ह्यूमन टच एंड कनेक्ट है ना, हम मिस करेंगे। कोई नहीं यार, टेक्नोलॉजी जब डेवलप हो रही है तो बिल्कुल हम इसे यूटिलाइज भी करेंगे एंड अपनी जिंदगी में इसे शामिल भी करेंगे, एंड धीरे धीरे रोबो टैक्सीज का ये जो रूट है ये और भी ज्यादा बढ़ते जाएगा। ओल्ड दोहा पोर्ट से द गेट मॉल, सुक वाकिफ, शेरेटन दोहा, मियां पार्क से वेस्ट बे तक। तो बढ़िया है, ड्राइवर लेस कैब में बैठने की तैयारी जो है आप भी कर ही लीजिए। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, बनेगा नाम अंशु। एंजॉय।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: आमिर खान इतनी सारी फिल्में और हर फिल्म में एक अलग फिजिक. What is the ultimate fitness tip?
3: I know everyone says this, but I can't stress how important it is to be regular in your workout. And along with that, for the best results, you need to have a very balanced and healthy diet. आमतौर पे लोग high protein diet करते हैं. You know, that's not healthy. The body needs proteins, but also needs carbohydrates. It needs fat. It needs everything. So we must have a balanced diet and a healthy diet and rest. You have to sleep well. You have to rest well.
2: Sleep well. Oh ho ho ho. फिर तो फिट होना मुश्किल है आमिर खान. आप सुन रहे हैं मिर्ची. It's hot.
0: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
1: Only on Mirchi. It's hot.
4: बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना.
5: अरे पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
6: कैसे रुक सकता है?
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन.

यार कहते हैं कि कई बार अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए सिर्फ पैरों की नहीं बल्कि इरादों की जरूरत होती है, और जब इरादों में हौसला आ जाए तो फिर रास्ते क्या, पहाड़ भी आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा ही देते हैं। चलिए आज एक बार फिर से आपके बीच एक ऐसे शख्स की कहानी पेश करते हैं जिसने इम्पॉसिबल शब्द को अपनी डिक्शनरी से हटा ही दिया। वेल, आज की कहानी है दशरथ मांझी की। भारत के बिहार के एक छोटे से गांव से आया एक साधारण सा शख्स जिसे आज पूरी दुनिया द माउंटेन मैन के नाम से जानती है। उनकी जिंदगी में एक मिशन था, एक पर्पस जो किसी रीजन से डेवलप हुआ। एक बार उनकी पत्नी बुरी तरह से जख्मी हो गई, लेकिन गांव और हॉस्पिटल के बीच एक बड़ा सा पहाड़ था और हॉस्पिटल पहुंचने के लिए लोगों को लगभग 70 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता था, जिसके चलते उनकी बीवी को सही वक्त में इलाज नहीं मिला और उन्होंने दम तोड़ दिया। उस दिन दशरथ मांझी ने सिर्फ अपनी पत्नी को नहीं खोया, उसके साथ उन्होंने अपनी जिंदगी में किसी चीज को जन्म दिया, और वो था एक संकल्प कि अब इस पहाड़ की वजह से किसी और की जिंदगी नहीं जाएगी। ना उनके पास कोई मशीन थी, ना पैसा, बस एक हथौड़ा, एक चिजल और एक अटूट हौसला। लोगों ने कहा ये बेवकूफी है, तुम कुछ ना कर पाओगे, लेकिन फिर भी वो हारे नहीं, थके नहीं, और 22 साल तक रोज थोड़ा थोड़ा कर उन्होंने अकेले उस पहाड़ को काट दिया एंड फाइनली एक रास्ता बनाया, एक ऐसा रास्ता जिसने हजारों लोगों की जिंदगी को आसान कर दिया। यार पत्थरों ने सोचा था कि हम कभी नहीं टूटेंगे, उन्हें क्या पता था कि सामने इरादों का इंसान खड़ा है। याद रखिए, मुश्किलें हमेशा बड़ी नहीं होती, कई बार हमारा हौसला छोटा पड़ जाता है, और जिस दिन हौसला बड़ा हो जाए ना, उस दिन पहाड़ भी छोटे लगने लगते हैं। स्टेडियम टूमर जी, बंदी का नाम अंशु।

0: वेल कविता सीट की खूबसूरत सी आवाज़ एंड व्हाट अ पावर पैक ट्रैक इट इज कॉकटेल 2 से ये वर्जन 2 ये तो हमारी जिंदगी में आ गया, लेकिन बात इतनी है मुझे कभी कभी लगता है कि ओरिजिनलिटी जो है ना उसकी फीलिंग उसका एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर काफ़ी अलग होता है। चलिए यार अगर ओरिजिनलिटी की बात करूँ तो जितने ओरिजिनल एक्सपीरियंसेस हमें बचपन के दिनों में हुए हैं ना शायद ही किसी और को हुए हों। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि अगर अपने बचपन के एक्सपीरियंस की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा ये किस्सा या कहानी कहीं से खुलती है तो वो है नानी घर से। समर वेकेशन का मतलब ठौर ठिकाना एंड अड्डा जो है वो फिक्स हुआ करता था, वो है नानी का घर। एंड एक्चुअल में मम्मी हमारे सामने कितनी भी पॉलिश्ड क्यों ना नजर आए, हमारे सामने कितनी भी सोफिस्टिकेटेड क्यों ना नजर आए, उनका एक्चुअल एंड ओरिजिनल किरदार कैसा हुआ करता था ये हमें नानी बताती थी। मतलब जब जब मम्मी हमें डांटने की कोशिश करे किसी गलती के लिए एंड उस वक्त नानी उनकी ओरिजिनलिटी बताते हुए जब उनको डांटे, मतलब हमें डांटने वाली मम्मी को डांटने के लिए उनकी मम्मी हुआ करती थी। क्या दिन थे यार, क्या अलग इन कमाल दिन थे। लेकिन उन दिनों की सबसे खूबसूरत एंड खास बात यह हुआ करती थी कि गर्मी के दिनों में हमें कोई आइटिनरी बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं होती थी कि कहाँ जाना है, क्या करना है और कैसे करना है, क्योंकि हर साल का एक ठौर ठिकाना एक अड्डा फिक्स होता था, वो था नानी का घर। चलिए गर्मी का मौसम आया है तो देखें कतर की गर्मी आज हमें किस बात की याद दिला रही है।
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
0: वेदर अपडेट। वेदर टेम्परेचर जो है अपनी परम चरम सीमा पर बिल्कुल पहुंच चुका है। आज के मैक्सिमम टेम्परेचर को देखने की कोशिश करें सो इट इज गोइंग टू बी अराउंड 47, मिनिमम इज गोइंग टू बी अराउंड 35। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, खुद को फुल्ली हाइड्रेटेड रखें इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ। एंड इसके साथ कोई और अगर आपका बेस्ट फ्रेंड बना रहे तो वो है हम। अरे कलेजन दिमाग में ठंडक तो हम ही लाएं। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु। एंजॉय वेदर अपडेट इज ब्रॉट टू यू बाय
2: Weather check brought to you by RSL Group of Company. अब पाओ कतर में delivery riders और driver की job. For bright future call now 3100 0813.

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rambana. Burga, burga. Na vidva la burga. Milci, burga.
1: Hello.
2: Sir, very good evening, man. बैंक से बोल रहा हूँ, मुझे एक रेफरेंस दिया था सर, मैं आपके सिर्फ दो मिनट लेना चाहूंगा, क्या आप मुझे दो मिनट दे सकते हैं?
1: हाँ जी बोलिए।
2: सर हमारी एक स्कीम आई है सर, हम आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जीरो ही नहीं बल्कि बैंक आपको हर महीने पैसे देगा सर, जितने आप चाहते हैं इतने पैसे आपको मिल जाएंगे।
1: आप मुझे पैसे दोगे? हाँ, हिडन चार्जेस?
3: सर इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है, अगर होते तो मैं पहले ही बोल देती।
1: कौन बोल रही है?
2: सर रमेश ही बोल रहा हूँ। सर मैं ये बता रहा था बैंक के बारे में आपको, अगर आपको स्कीम चाहिए ना सर, ये सबसे अच्छी स्कीम है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको हो ही नहीं सकती।
1: मुझे क्यों मिल रही है, मतलब कोई इतनी मेहरबानी क्यों हो रही है?
4: सर मैं आपसे इतनी भी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका रेफरेंस बहुत तगड़ा है, वरना हम तो इस तरह की स्कीम किसी को देते भी नहीं।
1: हेलो कौन बोल रहा है?
2: सर रमेश ही बोल रहा हूँ मैं, इसमें ये कह रहा था सर, इसमें आपको कोई लेने देने वाली बात ही नहीं है, आप सिर्फ मेरी बात मानो, आप ले लो।
1: के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?
3: सर आपको एक पैन कार्ड की कॉपी और अपना पुराना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना है, दैट्स ऑल।
1: हेलो मैडम।
2: हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ। हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ।
1: कौन बोल रहा
2: है? रमेश बोल रहा हूँ सर।
1: अभी कोई और बोल रही थी।
2: सर ले लीजिए सर, आप बस आंखें बंद करके मेरी बात मानिए।
1: लेकिन कहीं कुछ उल्टी सीधी तो वो नहीं है, इसमें कुछ परेशानी तो नहीं होगी मुझे?
5: आप चिंता मत कीजिए, हर चीज के पेपर साइन होंगे बाकायदा, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
1: कौन बोल रहा है?
2: सर ले लीजिए यार, इसमें कोई चिंता ही नहीं है सर, इसमें
1: दो दिन बाद मुझे कॉल कर लेना।
6: सर 15 तारीख जो है वो लास्ट डेट है, ऐसा ऑफर आपको कहीं भी किसी भी और बैंक में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ हमारी एक्सक्लूसिव स्कीम है।
1: कौन बोल रहा है भैया?
2: सर रमेश बोल रहा हूँ। आप यार उस पे क्यों जा रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ आप ये ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? सर
1: कभी किसी की आवाज़ आ रही है, कभी किसी की आवाज़ आ रही है। नहीं भैया नहीं चाहिए मुझे।
4: सर आप मान क्यों नहीं रहे हो यार, आपको लोन बेचने के चक्कर में, स्कीम बेचने के चक्कर में
2: आज सबका दिमाग खराब हो गया, अपना खुद दिमाग खराब कर रहे हैं यार आप। सर आप ले लो यार, कमाल कर दिया आपने यार दिमाग। क्या
1: कोई बोल रहा
2: है? कौन बोल रहा है यार? मैं बोल आपसे रमेश बोल रहा है। सर मेरी बात सुनिए सर, आपसे सर फोन मत काटिएगा।
7: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, ये सारी आवाजें मेरी हैं, अब मिर्ची पे सब आपको सुन रहे हैं, आप मुर्गा बन गए, आप कुकड़ों को बोल दे जरा हंस के।
8: थैंक यू।
9: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पटाक।
10: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी, जा बेटा जा।
11: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल, क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने। हिट गाने
12: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
13: 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.

0: पलमित कुमार की खूबसूरत सी आवाज़ एंड व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज़। ये खूबसूरत सा गाना तो मैंने आपको सुना दिया, लेकिन इस वक्त एक काम करते हैं, आपके बीच एक ऐसे इवेंट की जानकारी पेश करते हैं जो हाला खतर इस एक्सपीरियंस को बहुत ही ज़्यादा कमाल बना रही है।
1: मिर्ची अंशु
0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू मीठी मिर्ची एंड दिस इज आज अंशु विथ यू। वेल, इस वक्त अगर कतर को देखने की कोशिश करें तो विजिट कतर ने भरपूर कोशिश की हुई है कि जितने लोग कतर में मौजूद हैं उनकी जिंदगी में एक्साइटमेंट की कहीं कोई कमी ना हो। तो देखिए, एक बात तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इस वक्त अगर आप दोहा एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर पहुंचने की कोशिश करेंगे तो वहां पे अगर कुछ चल रहा है तो वो है कतर टॉय फेस्टिवल। एक बार फिर से अपने बहुत बड़े अंदाज में बहुत सारे एक्टिवेशंस को लेकर आ चुका है, लेकिन पता है इस जगह की सबसे अच्छी बात क्या है यार, बचपन के वो कुछ किरदार जिनके साथ हम बड़े हुए हैं, यू नो, वो सारे के सारे कार्टून कैरेक्टर्स जिन्हें देखे बिना, जिनसे मिले बिना हमारा दिन जो है वो पूरी तरह से अधूरा हुआ करता था, उन्हें कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। जहां पे एक तरफ आप अपने बचपन की यादों को जी पाएंगे, आज के बच्चे जितने भी कैरेक्टर्स के साथ फैसिनेट होते हैं उनसे भी मिल पाएंगे। या लेकिन पता है, अगर मैं अपने बचपन की बात करूं ना, तो मुझे एक कैरेक्टर बहुत अच्छा लगता था, दैट यूज्ड टू बी शिनचैन। बहुत बड़ी वाली फैन थी मैं इसकी, एंड रीजन ये हुआ करता था, ये बंदा बस वही करता था जो इसकी दिल में आए, अपनी शर्तों से कैसे जिया जाता है शिनचैन ने मुझे बचपन में सिखा दिया था। दुनिया चाहे कुछ भी बोले, इसे एक इवेंट में कपड़ा नहीं पहनना है, मतलब नहीं पहनना है, नहीं मतलब मेरे दिमाग में या मेरे जहन में ऐसा कोई ख्याल नहीं है। लेकिन ये सिर्फ एंटरटेनमेंट का एक जरिया नहीं था यार, शिनचैन जो है ना हमें जिंदगी जीने के कई सारे उसूल जो है सिखाई देता था कि कैसे अपनी क्यूटनेस को मेंटेन रखते हुए लाइफ में जो अच्छी बातें उन्हें सीखना है, अपनी क्यूटनेस को मेंटेन रखते हुए घर वालों से अपनी बातें जो है वो मनवानी है, वो कैसे मनवानी है, और साथ उनकी बातें जो है वो कैसे माननी है। तो भाई शिनचैन ना सही, लेकिन बहुत सारे दूसरे कैरेक्टर्स जो हैं आप ज़रूर मिल पाएंगे कतर टॉय फेस्टिवल में। लेकिन साथ में आप मुझे ये भी बताएं कि अगर मैं उन कार्टून कैरेक्टर्स की बात करूं तो वो एक बचपन का कौन सा ऐसा कोई कैरेक्टर है या टीवी का ऐसा कोई कैरेक्टर है जिसे आपने देखा, जिससे आप मिले, जो आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में ना उसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, मतलब इट बिकेम अ मैसिव पार्ट ऑफ योर लाइफ, मे बी एंटरटेनमेंट या मे बी कुछ और। 5000-1896 लेट्स गेट कनेक्टेड द इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु। मीनवाइल अरिजीत सिंह की आवाज़, ये अगला गाना आपके लिए, एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक दूल्हा ना ट्रैफिक से बचने के लिए साइकिल से मंडप तक पहुंच गया।
3: वैसे ना ये ग्रीन फ्लैग है, क्योंकि इसको पता है कि रिलेशनशिप की गाड़ी जो है दो पहिए पे चलती है। और मुझे पता है कि इसकी बारात में ना ढोल नगाड़े नहीं जबकि साइकिल की बजेगी।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे।
6: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी।
7: आएंगे दीदी, आएंगे दीदी।
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.

ना इसे कहते हैं वन मैन शो, मतलब जब एक इंसान डिसाइड कर ले, यहाँ पे दो लोगों ने मिलकर डिसाइड किया हुआ है कि भैया जितना भी काम है ना हम सब एक ही मिलकर करेंगे, मतलब कंपोज भी हमें करना है, गाना भी हमें गाना है, म्यूजिक भी हमें देना है, सब कुछ करना है। सचेत टंडन एंड परंपरा टंडन ने यह बात जरूर बता दी कि इनके अंदर सारे काम को इकट्ठा करने का हुनर है और जरूर है। मिर्ची अंशु। वैसे यार सच कहूं, आपके और मेरे अंदर भी ना एक कमाल का अलग तरह का हुनर है। अंशु एक बार फिर से आपके साथ जुड़ चुकी है, कुछ तो आपकी खास बात है जो आपको याद दिलाना चाहिएगी। याद है आपको बचपन के वो दिन? भाई साहब हम जो है ना कभी कभी इस बात से दुखी हो जाया करते थे कि हमारे नंबर जो है कम आए, लेकिन इस कम आने पर भी एक अलग सी खुशी हो जाती थी जब ये पता चल जाए कि हमारे दोस्त के जो नंबर है ना वो हमसे भी कम आए। नहीं, इंसान की फितरत जो है ना कुछ इसी तरह की होती है, बड़े कमाल लोग हैं। और वही जब हमें पता चले कि किसी और के साथ कुछ अच्छा हुआ है तो हमारी खुशी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन किसी और का पता चल जाए ना तो वो खुशी जो है कहीं ना कहीं जरा से गम में बदल जाती। अब आपकी जिंदगी में इस वक्त खुशी आने वाली है या गम आने वाला है, ये बात तो आप डिसाइड करेंगे मेरी अगली खबर पे। बस जब पैसे का बोलबाला चले ये बात पता चल जाएगी हमने अभी तक पैसे होल्ड करके रखे हुए हैं, क्योंकि पता था रेट बढ़ेगा, जरूर बढ़ेगा, तो बड़ी खुशी होगी। लेकिन पता चल जाए कि लास्ट हफ्ते हम तो भेज चुके हैं लेकिन हमारे दोस्त ने अब तक ना भेजा है। तो देखते हैं आपके क्या हाल है। वैसे अगर आज एक्सचेंज रेट्स की बात करें तो आईपी मनी में 1 रियाल के अगेंस्ट आपको मिल रहे हैं इंडियन रुपीज 26.19 इंक्रीमेंट एंड सॉलिड इंक्रीमेंट। साथ ही पाकिस्तानी रुपीज 76.52, लंकन रुपीज का सॉलिड बजा है डंका, अगेन इंक्रीमेंट होते हुए 92.02। एंड इसके साथ अगर बांग्लादेशी टाका की बात करूं 33.93, एंड नेपाली रुपीज भी जो है बढ़ते हुए पहुंच चुका है 41.84। कुल मिलाकर हम सबके लिए जितने भी हम विदेश में रहने वाले लोग हैं अच्छी खबर पहुंच चुकी है। भैया मैं तो कहती हूं पैसे भेजो, थोड़े एक्स्ट्रा भेजने के मन करें तो मेरे अकाउंट में भेजो। बाकी टिक्के बने रहो, सुनते रहो कतर का नंबर 1 हिंदी रेडियो स्टेशन। मिर्ची इट्स हॉट, एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
1: John Abraham, आपके हिसाब से the top fit boys of the Hindi film industry.
2: First reference is always going to be Varun Dhawan and I'll tell you why. क्योंकि वरुण का जो फिजीक है वो बहुत ही proportionate है. उसके legs बहुत ही strong है. Tiger Shroff, fantastic body. Ranveer Singh, extremely, extremely fit. And of course, Hrithik Roshan. Honestly, amongst all these, including myself, I think सबसे fittest इंसान हमारे इंडस्ट्री में is Akshay Kumar. And I mean holistically fit. He can survive anywhere. अगर आप उसको Mount Everest पे छोड़ दो, अगर आप उसको रेगिस्तान में छोड़ दो, Akshay Kumar will be the only guy who'll survive and come out.
1: छोड़ने की जरूरत ही नहीं है जॉन अब्राहम. अक्षय कुमार इज द ओनली पर्सन इन द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जो बाय चॉइस इन जगहों पर जाएंगे. आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट.
0: बॉलीवुड बोल्डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.
3: हेलो शार्प्स, आप प्रोडक्ट इज फिनोमिनल, वन ऑफ अ काइंड, बट स्टिल प्रॉफिट नहीं हो रहा है. मैंने बाबा जी से एडवाइस ली तो कहते हैं
4: ऑफिस के टॉयलेट में टॉयलेट पेपर व्हाइट नहीं येलो लगाओ, प्रॉफिट आएगा.
3: रिलेटिव से एडवाइस लो तो कहते हैं
5: काम को टाइम दो, 25 घंटे काम करो, डार्क सर्कल्स होंगे तो फ्यूचर ब्राइट होगा.
3: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए, जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो.
6: भाई क्या कर रहा है तू, जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है ना इधर उधर भटकना है. गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहां तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट.
7: Qatar's number one Hindi radio station, Mirchi. Take your partner with us now. Your business will go wow. Call now. 7070-7687.

0: नवराज हंस की खूबसूरत सी आवाज, हर्षदीप कौर का साथ, फिल्म का नाम एक लड़की को देखा। भाई ये गाना जो है ना, गुड़ नाल इश्क मिठाओ, मतलब ये गाना सोचिए, एंड वो स्टेप अगर आपको 90s वाला याद ना है ना, तो फिर लानत है अगर आप अपने आप को गानों का फैन कह दें।
1: मिर्ची अंशु
0: यार हमारी सबसे खास बात क्या है पता है, या तो फिर मैं ये कहूँ कि रेडियो या आरजेस की सबसे खास बात क्या है, हम ना अपने रूट्स एंड कल्चर को कभी नहीं भूलते, क्योंकि जो हमें घुट्टी पिलाई जाती है ना, वो सबसे पहले इसी बात की कि चाहे तुम दुनिया में किसी भी मुकाम में क्यों ना पहुंच जाओ, मॉडर्न टेक्नोलॉजी मॉडर्न लाइफ को कितना भी क्यों ना इम्प्लीमेंट कर लो, लेकिन जहां से तुम आते हो, जिन बातों ने, जिन गानों ने, जिन एक्सपीरियंसेस ने तुम्हें शेप किया है, तुम्हारे बचपन को सवार है, उसे कभी ना भूलना। यानी बात सिर्फ आरजेस के लिए लागू नहीं होती यार, ये दुनिया में हर एक शख्स के लिए लागू होती है। तो जैसे ही मैंने ये गाना सुना, वो हाथों को जोड़ के स्विंग करते हुए लेफ्ट एंड राइट में मूव करता हुआ स्टेप

याद ना आया तो फिर क्या ही आया। अब गाड़ी में बैठ के स्टेप करने की जरूरत नहीं, फटाफट से निकलो जहां भी निकल रहे हो। खाने का वक्त तो चला यार, तो 1 बजे, और इंसान जो है टाइम के हिसाब से अपनी भूख को आवाज ना दे तो कैसे दे। नहीं, मेरी जिंदगी का सिलसिला तो ऐसे ही है, मुझे ऑर्गेनिकली भूख नहीं लगती यार, मुझे ना टाइम देख के भूख लगती है। मतलब अगर 9 बज गए तो मेरा दिमाग कहता है नाश्ते का टाइम हो गया, एंड अगर कोई मुझे टाइम ना दिखाए ना तो मुझे भूख भी ना लगे। शायद यही रीजन है कि लोग मुझे कहते हैं ये तो हवा में उड़ जाएगी। नहीं, मेरे फिजिक की बात कर रही हूँ। तो चलिए जी, घड़ी का कांटा मुझे इशारा कर रहा है कि आज जो मैंने कोकोनट राइस घर पे बनाई, डब्बे पे भर के लाया, मैं उस पे धावा बोलने वाली हूँ। आपका आज का लंच का प्लान क्या है? घर से टिफिन का डब्बा लायो, मेस जाने वाले ऑफिस की, कि कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाओ? जल्दी बताओ 5000 1896। जाने से पहले आपकी बात जरूर सुन के जाऊंगी, लेकिन पंकज उदास की आवाज में एक खुशनुमा सा गाना आप तक पेश कर दूं। एंजॉय। बंदी का नाम अंशु। मसला महबीबी।

0: फ्रेश माल।
1: धमाल फोर में धमाल मचाने आ रहा है कहर।

इस गाने को आवाज दी है गुरु रंधावा ने। म्यूजिक एंड लिरिक्स बाय गुरु रंधावा, गिल मचरई एंड रॉनी अजनाली। धमाल फोर से सुनते रहिए कहर, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी।

0: Midday Mohabbat
1: presented by Absolute Barbecues. From savory to sweet, experience the ultimate flavors at Absolute Barbecues.
2: एक बारिश, बस एक बारिश बाबू मुशाए, इतना जादू होता है ना इस एक बारिश में कि सैड वाले इमोजी को हैप्पी कर देती है ये एक बारिश।
3: सारा जमाना सारा का दीवाना।
4: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tuned in with me on Mirji. ऐसे ही थोड़ी ना बारिश की बूंदों को हर लैंग्वेज की मूवी इंडस्ट्री में रोमांटिसाइज किया गया है। कोई बारिश के इंतजार में रोमांटिक हो रहा होता है तो कोई बारिश की बूंदे देख कर रोमांटिक हो रहा होता है, बट आई रियलाइज दिस थिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। क्या ये जो बारिश की बूंदे हमें चाय और पकौड़ों की याद दिलाती है ना, वही बारिश की बूंदे लेबर क्लास के लिए कैसे एक दिन की दिहाड़ी भी अपने साथ बहा ले जाती है। बारिश भी हर इंसान के लिए अपने अलग मायने लेकर आती है। आई रियलाइज कि एज एन अडल्ट बारिश को देखने का नजरिया भी कैसे बदल सा जाता है ना। चलो अब अडल्टिंग भूल कर चलते हैं नॉस्टैल्जिया में, और इसी के साथ मिडडे मोहब्बत की गाड़ी को 90s के गियर में डालते हुए आपसे कहती हूँ, यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. Na vid bala burga. Milci, burga.
1: Hello.
2: Hello sir, very good evening. सेल्यूलर से बोल रहा हूँ सर, हमारी एक स्कीम आई है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको समझाऊँ। ये वॉइस मेल के लिए है, अगर आप चाहते हैं और आपको इंग्लिश नहीं आती है सपोज माने आप, तो आप कोई भी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसको आगे भेज सकते हैं।
1: अच्छा,
2: आप हिंदी में अपना मैसेज छोड़ेंगे और हमारी मशीन उसको कन्वर्ट करके दूसरी लैंग्वेज में डब कर देगी सर, जिसका सर कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, मंथली कोई चार्ज नहीं लगेगा। सर आप चाहेंगे ये स्कीम आपको दे दी जाए?
1: पास है क्या ये सर्विस?
2: बिल्कुल सर, कोई एडिशनल चार्जेस नहीं है सर, जो आपका नॉर्मल प्लान चल रहा है उस प्लान के अकॉर्डिंग आपका बिल आएगा, सिर्फ आपकी एक फैसिलिटी बढ़ जाएगी।
1: जो क्या कॉस्टिंग पड़ेगा पर मैसेजेस का?
2: सर आप दिन में अगर 100 मैसेज भी भेजते हैं तो आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा, आपका नॉर्मल रेंट रहेगा जो आपका चल रहा है अभी।
1: ठीक है,
2: बीप सुनने के बाद अपना मैसेज छोड़िएगा।
1: ओके अगम सर, मुझे आपके अंडर में काम करना बहुत अच्छा लगता है, तो आप प्लीज मुझे अपनी टीम में रख लीजिए।
2: सर वेरी गुड, आपका मैसेज रिकॉर्ड हो गया सर, हमने इसको दूसरी लैंग्वेज में डब कर दिया, अब आपके बॉस ये सुनेंगे, सुनिए।
1: ये क्या है भैया?
2: सर ये आवाज तो आपकी लग रही है, मुझे लग रही है सेंटेंस इधर उधर हो गए।
1: तो मशीन चलाने आती भी है
2: सर? मैनेजर के अलावा किसी और को मैसेज देके देखिए।
1: हेलो वीना मैम, प्लीज अभी जो आ रहा है प्रोजेक्ट उसके लिए मुझे नॉमिनेट कर लीजिए अपनी टीम में।
2: सर थैंक यू सो मच, आपका रिकॉर्ड हो गया, वीना मैम को ये सुनाई देगा।
1: मजाक कर रहे तू मेरे से?
2: सर मेरी बात सुनिए, ये जो मेरी बात सुनिए सर, तो सॉरी, आई एम सो सॉरी सर, जितना आप मुझ पे चिल्लाए हैं मैंने रिकॉर्ड कर लिया। देखिए अब सही आएगा, देखिए ये दूसरी लैंग्वेज में आएगा, रुकिए सर आप। हेलो मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात तो सुनिए सर, मैं इतनी गाली नहीं सुन सकता सर, मैं इतनी।
3: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, मैंने तो रैंडमली आपका नंबर मिला दिया था सर, दिल्ली में सब आपको सुन रहे हैं, आप रेडियो मिर्ची में मुर्गा बन गया है आपका, प्लीज इतनी गाली मत दीजिए यार।
2: सर मैंने ये भी रिकॉर्ड कर लिया, देखिए सुनिए क्या आया है डब होके।
4: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: अर्ज किया है
6: इरशाद, इरशाद

0: आईबी पेमेंट्स का वाह तरीका. विद आईबी सेंड मनी स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट QAR 5 एंड यस विद द बेस्ट FX रेट्स. सिंपल, सीधा, नो टेंशन. चेक द आईबी ऐप टुडे फॉर आवर 5, 10, 15, 20 ऑफर वैलिड टिल जुलाई 31st. आईबी, स्मॉलर फीस, बिगर स्माइल्स. TNC अप्लाई.
1: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं, महापुरुष, महापुरुष.
0: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स. जबरदस्त ट्रैक्स. कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन. 89.6 FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: घातक मूवी ने ना हमें सनी देओल का ये एपिक डायलॉग दिया है।
2: ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघला कर उसका आकार बदल देता है।
0: मिर्ची VCR।
1: Hi, this is me, Sara. आपकी 90s की यादों का पिटारा एंड द फिल्म घातक, which was written and directed by राजकुमार संतोषी. ये मूवी उन्होंने एक्चुअली लिखी तो कमल हसन के लिए थी, लेकिन देन ही वाज सजेस्टेड टू टेक सनी बिकॉज उनकी घायल वॉज टू अ हिट. इस फिल्म को कंप्लीट करने में राजकुमार संतोषी को 5 साल लग गए थे, सिंस वो अंदाज अपना अपना और बरसात की शूट में बिजी थे. एंड सनी वाज ऑल सपोर्टिव ऑफ इट बिकॉज़ उनके भाई की मूवी बरसात वाज बीइंग डन बाय संतोषी. हालांकि सनी और महेश भट्ट के बीच 36 का आंकड़ा हो चुका था एट दैट टाइम, और सनी ने कसम खा ली थी कि वो अब भट्ट साहब के साथ काम नहीं करने वाले, जिस पर रूमर्स वर के भट्ट साहब ने घातक की ही स्टोरी को कॉपी करके अपनी फिल्म चाहत घातक से पहले कंप्लीट करके रिलीज कर दी सो दैट घातक को नुकसान पहुंचे. लेकिन जिस फिल्म का टाइटल ही घातक हो उसे कोई क्या ही नुकसान पहुंचाता, उल्टा चाहत हुई फ्लॉप और घातक हुई सुपरहिट. लेकिन इस फिल्म की फीमेल लीड पहले रवीना टंडन थी, जिन्हें रिप्लेस किया मीनाक्षी शेषाद्री ने. और अगर इन डॉट्स को कनेक्ट करें तो अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में रवीना ने कहा है कि एक फिल्म मेकर ने अपनी लव स्टोरी की गाड़ी आगे बढ़ाने के लिए रवीना को मूवी छोड़ने को कहा था. कहीं वो फिल्म घातक तो नहीं? खोलूंगी एक पोल, लेकिन अभी के लिए एक छोड़ो अगले गाने के लिए बोल. स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: में ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक दूल्हा ना ट्रैफिक से बचने के लिए साइकिल से मंडप तक पहुंच गया।
3: वैसे ना ये ग्रीन फ्लैग है, क्योंकि इसको पता है कि रिलेशनशिप की गाड़ी जो है दो पहिए पे चलती है। और मुझे पता है कि इसकी बारात में ना ढोल नगाड़े नहीं जबकि साइकिल की बजेगी।
4: मिर्ची, इट्स हॉट। अ रिंग फॉर द न्यूली मैरिड, क्यूट लिटिल बैंगल फॉर द न्यूबॉर्न।
5: अरे यार, हॉलिडे सीजन इज हियर और फिर वही गिफ्टिंग का टेंशन। तो फिर मालबार गोल्ड एंड डायमंड्स गोल्ड एंड समर के साथ पाइए फ्री कैश वाउचर्स ऑन डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेजेस। प्लस एक्सचेंज योर गोल्ड ज्वेलरी एंड अपग्रेड टू द लेटेस्ट डिजाइंस विदाउट एनी लॉस। और सुनो, देयर्स मोर। विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया, यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन द GCC। विजिट मालबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
6: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे।
7: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
8: बहुत कुछ होगा।
9: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat.
1: Presented by Absolute Barbecues. From savory to sweet, experience the ultimate flavors at Absolute Barbecues.
2: Sara zamana, sara ka deewana.
3: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
4: रवीना टंडन का रीसेंट इंटरव्यू देखा मैंने, जिसमें उन्होंने कहा कि एक फिल्म मेकर ने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि तुम मेरी बहन की तरह हो और तुम ही मेरी लव स्टोरी में मेरी मदद कर सकती हो, प्लीज ये फिल्म छोड़ दो ताकि मैं अपनी लव इंटरेस्ट को कास्ट कर लूं। लुक्स लाइक ये बात राजकुमार संतोषी ने घातक की कास्ट में मीनाक्षी के लिए कही थी।
3: मिर्ची चैट रूम।
4: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का फिटारा। और अगर डॉट्स को कनेक्ट किया जाए ना मेरे यारा, तो देयर वाज अ टाइम जब राजकुमार संतोषी और मीनाक्षी शेषाद्री का नाम जोड़ा जाता था। दोनों ने एक दूसरे से शादी नहीं किया एंड इवेंचुअली गॉट मैरिड टू डिफरेंट पीपल, लेकिन बैक देन राजकुमार संतोषी वॉज वेरी कीन ऑन मैरिंग मीनाक्षी। और घातक के लिए पहले रवीना टंडन को ही कास्ट किया गया था, लेकिन देन शी हरसेल्फ बैक्ड आउट ऑफ द फिल्म। और ये वही टाइम था जब मीनाक्षी शेषाद्री और राजकुमार संतोषी की बातें हवा में थी। दो लेटर ऑन मीनाक्षी और राजकुमार संतोषी के बीच रिश्ते ठीक नहीं थे और मीनाक्षी को इस फिल्म के लिए राजकुमार संतोषी ने किसी मॉडल से रिप्लेस भी कर दिया था, लेकिन वो इस रोल के लिए रोल मॉडल नहीं थी एंड मीनाक्षी वॉज द बेस्ट चॉइस फॉर द रोल एंड इवेंचुअली उन्होंने ये फिल्म करी। 90s की गप्पे और 90s का मसाला, ओनली ऑन मिडडे मोहब्बत विद मी सारा। आला रे आला, स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का फिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

मेरा सब कुछ तू अपना कर ले, बस मेरी चाहत से रिश्ता कर ले। तेरे लिए मैं कुछ भी हो सकता हूँ, मगर मेरे लिए तू वो है जिसके लिए मैं सांस

0: Hollywood, Bollywood, Boulder.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: अनिल कपूर सर, ये सवाल हम आपसे 365वीं बार पूछ रहे हैं कि आपकी फिटनेस का राज क्या है?
3: हेल्थ ऐसी बनाओ, काम ऐसा करो कि आप 40, 50 साल, 60 साल तक आराम से वैसे ही काम करते रहो। मीठा खाना तो थोड़ा थोड़ा, आपको मीठा अगर सूट नहीं करता तो हफ्ते में एक बार खाइए, और खाना तो थोड़ा सा खाइए। आपको नमकीन पसंद है उसका मतलब ये नहीं कि आप इतना ही नमकीन खाते रहें। आपको चावल पसंद है तो दबा के आप चावल ही खा रहे हैं आप, यू नो, तो हर चीज़ करनी चाहिए, मगर थोड़ा थोड़ा थोड़ा करके यू शुड वर्क इट आउट एंड बैलेंस एवरीथिंग इन लाइफ एंड डू एवरीथिंग इन लाइफ एंड दैट्स आई फील इज द मंत्रा फॉर योर फिटनेस। यू डू एवरीथिंग बट डू इट इन मॉडरेशन एंड डू इट व्हाट मेक्स यू हैप्पी।
2: हेल्थ टिप आपने दिया एकदम क्लास, क्योंकि अनिल कपूर आप आदमी एकदम झकास। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स ऑन
0: बॉलीवुड बोल्डर। Bollywood, Bollywood, Bollywood, Boulder.
1: Only on Mirchi. It's hot.
4: Our business is our business. None of your business.
5: पर दीदी, our entertainment is your entertainment. Entertainment.
6: Qatar का number one radio station.
7: 89.6
8: FM, Mirchi 1. It's hot.
9: जो हाँ।

0: जी बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन, बताइए क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए।
1: बूढ़ी बाबा, मेरे पति को मेरे हाथ की रोटी अच्छी नहीं लगती, क्या करूँ?
0: तो सिंपल है ना, तुम्हारे हाथ की रोटी मत खिलाओ, आंटी की खिला दो।
2: मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का हंस।

ममता कुलकर्णी का परफॉर्मेंस वॉज स्टनिंग इन द सॉन्ग। और इस गाने में उन्हें इसीलिए भी कास्ट किया गया था क्योंकि वो राजकुमार संतोषी, जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर थे, उनकी अगली मूवी चाइना गेट में एज अ फीमेल लीड थी। लेकिन बहुत कम लोगों को ये बात पता होगी कि ये गाना वॉज नॉट जस्ट परफॉर्म्ड बाय ममता कुलकर्णी बट ऑल्सो कोरियोग्राफ्ड बाय हर। घातक का म्यूजिक वॉज कम्पोज्ड बाय वनराज भाटिया, अनु मलिक एंड आरडी बर्मन साहब। लेकिन जब तक मूवी वॉज रिलीज्ड, आरडी बर्मन हैड पास्ड अवे। और उनके जाने के बाद घातक के अलावा 1942 लव स्टोरी वॉज अनदर फिल्म जिसका म्यूजिक तो उन्होंने दिया लेकिन फिल्म की रिलीज तक वो नहीं रहे। You tune in with me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Escabana, escabana, sacabana.
2: Rambala.
1: Murga, murga. La vieja la murga.
2: Mirchi, murga.
3: Hello.
4: Hello, Tejinder ji.
3: हाँ जी,
4: हाँ जी तेजेंद्र जी, मैं बोल रहा हूँ पासपोर्ट ऑफिस से। आपने अप्लाई कर रखा था पासपोर्ट?
3: जी, हाँ जी किया था।
4: हाँ, ये तेजेंद्र जी आपका थोड़ा लेट मिलेगा पासपोर्ट, आपको ये इन्फॉर्म करने के लिए फोन किया था मैंने।
3: कितना लेट मिलेगा
4: आपको इसमें? एक सेकंड रुकिए, मैं चेक कर लेता हूँ। अरे इनका तेजेंद्र का पासपोर्ट कब मिल रहा है? तत्काल में, आपने तत्काल में बनवाया ना इमरजेंसी में?
3: हाँ जी,
4: एक सेकंड। हाँ, इमरजेंसी का है सर, 3.5 महीने बाद मिलेगा आपको पासपोर्ट।
3: 3.5 महीने बाद?
4: हाँ जी
3: भाई साहब, तत्काल का क्या मतलब होता है? 5 दिन में मिलता है तत्काल का? तो
4: सर वो मुझे ही मालूम है, मेरे को क्यों समझा रहे हैं। असल में तेजेंद्र जी वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, आपके आसपास कोई है तो नहीं?
3: नहीं, कोई नहीं है।
4: मैं ये कह रहा था, हमारा एक बंदा है जिसकी शक्ल आपसे मिलती है, ठीक है?
3: अच्छा।
4: बिल्कुल वो डिक्टो कॉपी लगता है आपका, जीरोक्स लगता है। अच्छा, उसको निकलना है दुबई। वो वैसे तो निकल नहीं सकता अपने पासपोर्ट से क्योंकि पुलिस पकड़ लेगी। तो हम कुछ दिन के लिए आपके पासपोर्ट पे से आपका फोटो हटा के ना, आपकी दाढ़ी होती तो चल जाता, उसका फोटो चिपका के आपके नाम से वो दुबई जाएगा। वो 3-4 आदमियों को ठिकाने लगा के वापस आ जाएगा, तो उसमें 3-4 महीने लगेंगे।
3: क्या बोल रहा है भाई, कौन? हेलो।
4: तो मैं उसको बोल देता हूँ, वो वहाँ पे वो आपके घर पहुँचवा देगा, आप फिक्र मत करो। वो बंदा ही
3: हेलो।
4: हाँ बोलिए बोलिए।
3: क्या बोल रहा भाई?
4: आपके पासपोर्ट पे उसका फोटो लगा के आपके नाम से वो दुबई जाएगा, 2-3 को ठिकाने लगाना, वापस आ जाएगा, उसका जरूरी काम है।
3: मैं बोल रहा हूँ,
4: मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ।
3: क्या बोल रहा है? क्या
4: आप इतना भड़क क्यों रहे हो? काम आप थोड़ी करने जा रहे हो, काम तो वो लगाने जा रहे हैं ठिकाने।
3: नहीं, बात क्या कर रहा है? पासपोर्ट पे किसी और को भेज रहा है
4: यार। आप मेरी तेजेंद्र जी,
3: नहीं
4: सोचो वो कितना भड़क रहा होगा, 3 आदमियों को उसको टपका के आना है दुबई में, उसकी भी तो भड़कन सोचो ना।
3: मेरे नाम पे जाके
4: अरे तो यार, आपका पासपोर्ट आपको वापस मिल जाएगा, 1.5 महीने के लिए आपका नाम यूज कर रहा है। आपका नाम यूज करने में आपकी गाड़ी मांग रहा है क्या? गाड़ी यूज कर रहा है वो?
3: नाम बता पहले तू, कौन रहा है?
4: ये लकी ड्रॉ निकल रहे हैं, वरना किसी और तेजेंद्र को भेज देते। आपका मौका लगा, आप इसे भड़क रहे हो उल्टा। मेरी बात सुनिए तेजेंद्र। तेजेंद्र, मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, और तुम रेडियो मिर्ची पे हो। मुझे शालिनी ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने कहा था कि तुमने पासपोर्ट अप्लाई कर रखा है, तुम्हारा मुर्गा बनाया भाई। तुम बहुत गुस्से वाले हो, तो मैं सोच रहा हूँ तुम्हें दुबई भेज दूँ, उसे नहीं भेजूं।
2: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
5: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस, और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन GCC। विजिट मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
6: तारीख मिलती रही है लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट।
7: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा,
8: दोनों मिलेगा।
9: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
10: 89.6 FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: टाइम में अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाज में गाया गया आशिकी का ये गाना वी कैन डेडिकेट इट टू नए नॉट आर पार्टनर्स बट टू आर फोन्स, बिकॉज वही तो है नजर के सामने और जिगर के पास।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और अब इस चीज का वक्त आ रहा कि मैं बोल दूं यार कि मान ना मान करो गानों की पहचान। एंड इसी के साथ आज के वो दो गाने जो मैंने डिसाइड करे हैं कि मैं आपके लिए उनकी धुनों को मिक्स करके प्ले करने वाली हूँ आपको कंफ्यूज करने के लिए, वो है ये।

अब आपको अगर गाने समझ में आ गए हैं और आपने पहचान लिया है कि ये धुने जब भी आपने सुनी है मिक्स होकर ये कौन से दो गानों की है, तो फटाक से फोन उठाओ, उसे सिर्फ नजर के सामने और जिगर के पास ही मत रखो, उसको उठाओ, उसमें टाइप करते चले जाओ, डीएम करो ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा, अपना नाम लिखिए, ये दोनों गानों के नाम लिखिए और अपनी सिटी मेंशन करिए और भेज दीजिए टू मी, एज सिंपल एज दैट। अभी के लिए कमिंग अप द नेक्स्ट ट्रैक, यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक दूल्हा ना ट्रैफिक से बचने के लिए साइकिल से मंडप तक पहुंच गया।
3: वैसे ना ये ग्रीन फ्लैग है, क्योंकि इसको पता है कि रिलेशनशिप की गाड़ी जो है दो पहिए पे चलती है। और मुझे पता है कि इसकी बारात में ना ढोल नगाड़े नहीं जबकि साइकिल की बजेगी।
4: मिर्ची, इट्स हॉट। Midday Mohabbat presented by Absolute Barbecues. From savory to sweet, experience the ultimate flavors at Absolute Barbecues.
5: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
6: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है।
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.

0: Midday Mohabbat with Zara. Only on Mirchi. It's hot.
1: The film Raju Chacha, ये तो आपने देखी होगी। हर 90s किड ने इस फिल्म को देखा है और बड़े खुश हुए हैं इस पिक्चर को देखने के बाद। इस फिल्म के गाने अच्छे हैं कुछ, लेकिन एक गाना ऐसा है जो कि पकड़ में आ गया है।
2: Mirchi, Thugs of Filmistan.
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। And जतिन ललित का कंपोज किया गया ये गाना।
3: कभी जिंदगी में ना ये साथ छूटे।
1: Well, this गाने की धुन has been copied from Godspell का Day by Day। सुनिए जरा। पता नहीं क्यों कोई डे बाय डे बोलता है ना तो मेरे दिमाग में गाना चलने लग जाता है कि डे बाय डे बढ़ता है, दिल दिल से मिल जाता है, जादू है ऐसा फ्रेंडशिप का। रे भाई साहब, 90s किड्स और इनका दिमाग जूकबॉक्स होता है। स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
1: मिलिन सोमन, आपकी इतनी फिट बॉडी है, क्या आपने कभी इस बॉडी का फायदा उठाया? आ जा, दिखाता हूँ तुझे, झगड़ा करेगा मेरे साथ।
2: कभी झगड़ा नहीं किया, और टफ फिजिक का मतलब ये नहीं कि झगड़ा करके उसको जस्टिफाई करो। गुड फॉर शो व्हिच इज गुड फॉर माय प्रोफेशन एंड आई वर्क अ लॉट, I work very hard, so I need that fitness level.
1: And I need your motivation level, Milind Soman. Aap sun rahe hain Mirchi, it's hot. Bollywood Boldal.
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal. Only on Mirchi, it's hot.
3: बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना।
4: अरे, पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
5: कैसे रुक सकता है?
6: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
7: 89.6
6: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat
1: presented by Absolute Barbecues. From savory to sweet, experience the ultimate flavors at Absolute Barbecues.
2: This was not just a sound, it was a language jo humne is ad ko dekh kar seekhi thi.
3: Mirchi pe TV Darshan.
2: Chiclets yaad hai aapko? And Chiclets ka hi ye ad. Chiclets kind of brought a new language in our worlds, yaar. मुझे चिकलेट्स खानी भी इसीलिए होती थी सो दैट मैं ये एड इमिटेट कर पाऊँ, मतलब चिकलेट्स खाते खाते चिक चिक चिक चिकलेट्स बोल पाऊँ. बट प्रॉब्लम यही थी कि हम बच्चों को च्युइंगम्स खानी अलाउड ही नहीं थी, और मेरे पास खुद को डिफेंड करने के लिए सिर्फ एक ही डायलॉग था कि ये च्युइंगम थोड़ी है, ये तो चिकलेट्स है. हे, एंड वन इम्पोर्टेंट पॉइंट अबाउट दिस एड इज कि इस एड में फीचर किया है द एक्टर विजय आनंद ने, जिन्हें लेटर ऑन हमने प्यार तो होना ही था में काजोल के बॉयफ्रेंड का रोल प्ले करते हुए देखा था. एंड ऑफ लेटली ही इज वर्क्ड इन शोज लाइक दिल ही तो है एंड अनदर कमर्शियल विच बिकेम वेरी फेमस विच ही डिड विद आलिया भट्ट. चलो जी, लेट्स मूव ऑन मिडडे मोहब्बत विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Mirchi. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Murga, murga. La vieva la murga.
1: Mirchi, murga. Hello.
2: Hi. Ye call बैंक से है। आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है। हमारे कस्टमर केयर से आपको पासवर्ड मिलेगा। पासवर्ड बहुत कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए किसी को ना दे और इसका दुरुपयोग होने से बचाएं।
3: देखिए जी, आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है, आप पासवर्ड लिख लीजिए प्लीज।
1: एटीएम वाला पासवर्ड है ना?
3: एटीएम वाला पासवर्ड है सर, ये पासवर्ड लिख लीजिए, मैं आपको बता देता
1: हूँ। एक मिनट मैं लिख लेता हूँ कहीं।
3: हाँ जी,
1: हाँ बोलिए।
3: 33501।
1: अच्छा
3: सर, एक सेकंड रुकिए, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। शैलेंद्र जी, जरा विक्की का पासवर्ड बताइए, जरा इनको, ये फोन लाइन पे है एटीएम वाला।
1: हेलो,
3: मेरी वाइफ के पास भी है, एक सेकंड होल्ड करिएगा। हाँ मैं फोन मिलाता हूँ। हेलो डार्लिंग, हाय।
4: हाय।
3: अच्छा ये बताओ, ये विक्की का पासवर्ड क्या है?
4: विक्की का पासवर्ड 33501। एक काम करिए ना, धोबी से पूछ लीजिए, क्योंकि उसके पास भी है।
3: धोबी से
4: पूछ लीजिए।
3: अच्छा, ये जो हमारे कपड़े धोता है, एक सेकंड।
1: हेलो
3: सर, एक सेकंड होल्ड करना, वो धोबी से भी कंफर्म कर।
5: ये बेल जा रही है।
3: हेलो भैया, हेलो भैया, मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आप हमारे कपड़े धोते हो?
1: अरे भाई, तो एक बात सुन, ये
3: आपके पास पासवर्ड होगा 33501? हाँ सर, 33501 है।
1: हेलो
3: सर। हाँ जी सर, सर यही पासवर्ड है। मेरी बात सुनिए ना,
1: किस से पूछे जा रहे हैं?
3: किससे? मैं कंफर्म कर रहा हूँ ना सर, आपके पास।
1: भाई ये क्या कंफर्म, भाई मेरा एटीएम कार्ड है
3: ये। एटीएम तो आपका तो पासवर्ड नहीं मिलेगा, पैसे कैसे निकलेंगे यार?
1: सिर्फ मुझे बताना है, सबको थोड़ी ना, दुनिया में अल्लाह थोड़ी ना।
3: आपको तो जल्दी इतनी मच रही है, आपको जल्दी इतनी मच रही है। कल का टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लेते, उसमें भी आ रहा था, बेकार में एप्लीकेशन डाल दी। टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ लेते
6: विकी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। तुमने पासवर्ड के लिए अप्लाई कर रखा था, तुम्हारा पासवर्ड अभी तक नहीं आया है। 33501।
1: किसने दिया मेरा नंबर?
6: आपका नंबर आशा ने दिया है, उन्होंने कहा था।
1: अरे मैं कुकड़ू को।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
7: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी, जा बेटा जा।
8: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल, क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने। हिट गाने
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6
0: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: डियर विद्या,
1: यादों को चिट्ठी।
0: आज की जनरेशन विद्या बालन को जानती है, लेकिन बालन से पहले हमारा इंट्रोडक्शन विद्या से हो गया था, सिर्फ विद्या से। मासूम बचपन ने हमें विद्या के नाम पर चिड़ियों के फेदर्स की इज्जत करवाना सिखा दिया था। पिंक हो, येलो हो या हो ग्रीन, तुम हमारी किताब के पन्नों में जिस चैप्टर में मिल जाती, आंखें हो जाती रंगीन। और इस बात को हम बड़ा सीरियसली लिया करते थे कि अगर तुम्हें किताब में रखेंगे तो तुम एक से दो हो जाओगी। सोचती हूँ अगर ये बात सच होती तो आज मेरी किताबों के पन्नों में जगह जगह 500 या 2000 के नोट रखे होते मैंने। कमाल की बात तो ये थी कि मैंने तुम्हें कभी पैसे देकर नहीं खरीदा, तुम बस हमेशा यूं ही मिल जाया करती थी मुझे। तो ये भी नहीं पता कि तुम मिलती कहाँ थी और कितने की। आज का टाइम है जब किताबें खूब हैं, लेकिन तुम ऐसे ही अचानक किसी पन्ने को पलट कर नहीं मिल जाती हो। जस्ट लाइक स्कूल के वो दिन जो सिर्फ बातों के जिक्र में है पर है कहीं नहीं। मैं पढ़ाई को भले ही लाइटली लेती थी, लेकिन तुम्हें हमेशा सीरियसली लिया है मैंने। कहीं दिख जाती थी तो तुम्हें उठाकर चूमा जाता था, माथे पर लगाया जाता था और फिर वापस तुम्हारी जगह पर रख दिया जाता था। आज तो एक्स भी चलते फिरते मिल जाया करते हैं, तुम भी तो मिलो कभी किसी पन्ने में। आज भी तुम्हारा एक से दो होने का इंतजार करती तुम्हारी सारा। यू ट्यून इन विद मी सारा, जो कि यहाँ के अलावा आपको मिल जाएगी इंस्टाग्राम पर बाय द नेम मिर्ची सारा। स्टे ट्यून टू मिर्ची, कॉज इट्स हॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक दूल्हा ना ट्रैफिक से बचने के लिए साइकिल से मंडप तक पहुंच गया।
3: वैसे ना ये ग्रीन फ्लैग है, क्योंकि इसको पता है कि रिलेशनशिप की गाड़ी जो है दो पहिए पे चलती है। और मुझे पता है कि इसकी बारात में ना ढोल नगाड़े नहीं जबकि साइकिल की बजेगी।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: दोस्ती का एक उसूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू।
6: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू, हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए।
7: तो मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा।
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: कैसेट के साइड बी का ये तीसरा गाना
2: मिर्ची 90s कैसेट।
1: Hi, this is me, Sara. आपकी 90s की यादों का पिटारा and this track from the film दिल से।
3: तू ही तो सतरंगी रे, तू ही तो मन रंगी रे।
1: इसे भी गुलजार साहब ने लिखा है बड़े दिल से। और वाकई में जब आपको किसी से मोहब्बत हो जाती है, प्यार हो जाता है, तो होता यही है कि हर जगह वही इंसान या तो ख्यालों में होता है या नजर आने लग जाता है। तभी तो हम कहते हैं कि तू ही तू सतरंगी रे। मगर आई स्वेयर इस गाने की लिरिक्स इतने खूबसूरत है। दिल का साया हम साया, सतरंगी रे मन रंगी रे। कोई नूर है तू, क्यों दूर है तू, जब पास है तू एहसास है तू। कोई ख्वाब है या परछाई है, सतरंगी रे सतरंगी रे। और फिर ये लाइन आती है जब कहा जाता है और इस बात में कोई दो राय नहीं कि इश्क पर हमारा कोई काबू भी नहीं है। और ये वो आतिश है, वो आग है जो लगाए ना लगे और बुझाए ना बुझे। इसी गाने के साथ नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू से कि हम है राही प्यार के, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते। बाकी मैं आपको मिली जाऊंगी मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर, विच इज मिर्ची सारा। अपना ख्याल रखिए एंड स्टे ट्यून टू मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Midday Mohabbat
2: presented by Absolute Barbecues. From savory to sweet, experience the ultimate flavors at Absolute Barbecues.

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: गोविंदा, आपका अल्टीमेट फिटनेस टिप कौन सा है?
3: मुझे ऐसा लगता है योग और प्राणायाम जो है, इससे आपकी बॉडी जो है बहुत ही करेक्ट रहती है और आपको मतलब वो घबराहट नहीं होती है।
2: तो ये एडवाइस आप देंगे कंटेम्प्रेरी हीरोज को?
3: योग प्राणायाम तो करते ही होंगे वो लोग, मुझे ऐसा लगता है।
2: आपको क्या लगता है कौन कौन करता होगा? मैं आपको तीन नाम देती हूँ, इन तीनों में से बताइए। वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा, जॉन अब्राहम।
3: ये तीनों एक्टर्स ऐसे हैं, इन लोगों की मुझे ऐसा लगता है कि बॉडी ज्यादा अच्छी है और कि पता नहीं कितने पैक निकले हुए हैं। उस जमाने में तो पूरी शाम में सब लोग हीरो लोग पैक ही लगाया करते थे, अब वो पैक उनके पेट पे आ गए। टेढ़ा मेढ़ा क्या नजर आ रहा है, ये पेट है इनका? ओहो, अच्छा अच्छा, फाइन फाइन फाइन, वेरी गुड वेरी गुड।
2: फिटनेस का पता नहीं लेकिन सेंस ऑफ ह्यूमर पर 110 फॉर चीची। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल,
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
5: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
1: बार बार।
5: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
6: 89.6
5: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: अरे बोलना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: मैं जब भी पढ़ने बैठता हूँ ना तो नींद आ जाती है।
2: क्यों नहीं हो रही पढ़ाई?
0: क्या करूँ?
1: अरे घोचू, तो लेटे लेटे पढ़ना, अच्छे से सो भी पाएगा रे तू।
3: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं, इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: यूएई, कतर, ये भी हमारी माशुका है भाई। हम तो यहाँ रहते हैं, हमने सब कुछ जाना है। भैया कॉस्ट ऑफ लिविंग प्लस रेंट इंडेक्स में नॉम्बियो के में हमने और यूएई ने टॉप किया अरब कंट्रीज में। अब ये क्या है, कैसा है, डिटेल इन्फॉर्मेशन देंगे, लेकिन फिलहाल सिर्फ घड़ी का टाइम ले लो, 4:03।
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: हमें कई बार लगता है कि यार ऐसी रिपोर्ट्स का हमारी लाइफ से क्या लेना देना है। सर, ओवरऑल इन रिपोर्ट्स का ही हमारी लाइफ से लेना देना है, इसी के बल पर तो सारी चीजें डिसाइड होती हैं। और अगर हम बात करें तो यूएई इस वक्त फर्स्ट है अमंग अरब कंट्रीज एंड 28th ग्लोबली विद इंडेक्स स्कोर ऑफ 48.2। और ये कॉस्ट ऑफ लिविंग प्लस रेंट इंडेक्स पूरी दुनिया में निकाला जाता है, लेकिन अगर हम 5 अरब कंट्रीज की बात करें तो कॉस्ट ऑफ लिविंग सबसे ज्यादा यूएई में, एंड उसके बाद कतर में 34th वर्ल्ड वाइड, फिर बहरीन कम्स ऑन 56th, कुवैत एंड देन यमन। कुल मिलाकर भाई ये हमारे और आपकी लाइफ से जुड़ा है, जहां पर कंज्यूमर प्राइसेस से लेकर रेंट लेवल कैसा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग में कैसा है, तो कह सकते हैं सबसे टॉप पर यूएई है, उसके बाद हमें। और इतना ही कहूंगा कि देखिए भाई, जिंदगी में हम और आप बहुत कुछ बहुत करना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे और आपकी पॉकेट हमें रोकती है। कम से कम ये कॉस्ट ऑफ लिविंग में सेकंड नंबर पर आना ही बता रहा है कि अगर हम कहीं और दिमाग लगा रहे हैं तो भैया यहीं सब कुछ है। और हम तो कहते हैं हमारे कतर में सुकून है भैया, जो भी पैसा मिल रहा है उसमें हम घर भी बेच पा रहे हैं और खुद भी रह पा रहे हैं और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी हाई बनाए रखो। फिलहाल तो मस्मोला गौरव शुरुआत करता है शाम शानदार की, और कुछ शानदार बातें लेकर आए हैं जिनमें मिनिस्ट्री ऑफ म्युनिसिपैलिटी ने साल 2025 में कितने नए पार्क्स बनाए थे, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हायर एजुकेशन हमारे कतर में रजिस्ट्रेशन सेंटर स्टूडेंट एडमिशन के लिए कैसे खोल रही है, ट्रांसफर कैसे ले सकते हैं स्टूडेंट्स, ये सब कुछ बताएंगे। बस कान लगा के सुनते रहो शाम शानदार, मिर्ची पर इट्स हॉट।

0: Mirchi. Escabana, escabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La virtual la burga. Mirchi, burga.
1: Hello.
2: Sir, very good evening, man. बैंक से बोल रहा हूँ, मुझे एक रेफरेंस दिया था सर, मैं आपके सिर्फ दो मिनट लेना चाहूंगा, क्या आप मुझे दो मिनट दे सकते हैं?
1: हाँ जी बोलिए
2: सर। हमारी एक स्कीम आई है सर, हम आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जीरो ही नहीं बल्कि बैंक आपको हर महीने पैसे देगा सर, जितने आप चाहते हैं इतने पैसे आपको मिल जाएंगे।
1: आप मुझे पैसे दोगे? हाँ, हिडन चार्ज
3: सर, इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है, अगर होते तो मैं पहले ही बोल देती।
1: कौन बोल रही है?
2: सर रमेश ही बोल रहा हूँ। सर मैं ये बता रहा था बैंक के बारे में आपको, अगर आपको स्कीम चाहिए ना सर, ये सबसे अच्छी स्कीम है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको हो ही नहीं सकती।
1: मुझे क्यों मिल रही है, मतलब कोई इतनी मेहरबानी क्यों हो रही है?
4: सर मैं आपसे इतनी भी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका रेफरेंस बहुत तगड़ा है, वरना हम तो इस तरह की स्कीम किसी को देते भी नहीं।
1: हेलो कौन बोल रहा है?
2: सर रमेश ही बोल रहा हूँ मैं, इसमें ये कह रहा था सर, इसमें आपको कोई लेने देने वाली बात ही नहीं है, आप सिर्फ मेरी बात मानो, आप ले लो।
1: के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?
3: सर आपको एक पैन कार्ड की कॉपी और अपना पुराना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना है, दैट्स ऑल।
1: हेलो मैडम।
2: हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ। हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ।
1: कौन बोल रहा
2: है? रमेश बोल रहा हूँ सर।
1: अभी कोई और बोल रही थी।
2: सर ले लीजिए सर, आप बस आंखें बंद करके मेरी बात मानिए।
1: लेकिन कहीं कुछ उल्टी सीधी तो वो नहीं है, इसमें कुछ परेशानी तो नहीं होगी मुझे?
5: आप चिंता मत कीजिए, हर चीज के पेपर साइन होंगे बाकायदा, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
1: कौन बोल रहा है?
2: सर ले लीजिए यार, इसमें कोई चिंता ही नहीं है सर, इसमें
1: दो दिन बाद मुझे कॉल कर लेना।
6: सर 15 तारीख जो है वो लास्ट डेट है, ऐसा ऑफर आपको कहीं भी किसी भी और बैंक में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ हमारी एक्सक्लूसिव स्कीम है।
1: कौन बोल रहा है भैया?
2: सर रमेश बोल रहा हूँ। आप यार उस पे क्यों जा रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ आप ये ले रहे हैं कि नहीं ले रहे सर?
1: कभी किसी की आवाज़ आ रही है, कभी किसी की आवाज़ आ रही है। नहीं भैया नहीं, नहीं चाहिए मुझे।
7: सर आप मान क्यों नहीं रहे हो यार, आपको लोन बेचने के चक्कर में, स्कीम बेचने के चक्कर में
2: आज सबका दिमाग खराब हो गया, अपना खुद दिमाग खराब कर रहे हैं यार आप। सर आप ले लो यार, कमाल कर दिया आपने यार दिमाग। क्या क्या
1: कोई बोल रहा है?
2: कौन बोल रहा है यार? मैं बोल आपसे रमेश बोल रहा है। सर मेरी बात सुनिए सर, आपसे सर फोन मत काटिएगा।
8: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, ये सारी आवाजें मेरी हैं, अब मिर्ची पे सब आपको सुन रहे हैं, आप मुर्गा बन गए, आप कुकड़ों को बोल दें जरा हंस के।
9: थैंक यू
10: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
11: पहलवानी तो सिर्फ छोरे करें।
12: हमारी चोरियां चोरों से कम है के?
10: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के?
12: कम है के?
10: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
13: 89.6
10: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: एक कहावत है, तू जहाँ जहाँ चलेगा पार्क वहाँ मिलेगा।
1: मस्त मौला गौरव।
0: अरे पार्क्स की बात करें जो हमारे कतर में आपको हर गली हर नुक्कड़ पे मिल जाते हैं, और इसके अलावा 2025 में हमारे कतर में भाई जबरदस्त तरीके से पार्क की ग्रोथ हुई। 7 न्यू पब्लिक पार्क्स बनाए गए, और इसके अलावा बहुत सारे एनिमल्स को जू में लाया गया।
2: #974
0: भाई कतर का इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट तो अशगाल कर रहा है, लेकिन उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ म्युनिसिपैलिटी कतर के ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को, पब्लिक रिक्रिएशनल फैसिलिटीज को हर दिन के साथ बढ़ा रही है, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है न्यू पब्लिक पार्क्स का जो हमारे कतर में इंट्रोड्यूस हुए। और ऐसे 7 नए पार्क बनाए गए साल 2025 में, ऐसे 28 नए जानवर या चिड़ियों को लाया गया जू में जो कि आने वाले टाइम में आपको और हमें दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा 1.13 मिलियन प्लांट्स लगाए गए, यानी कि लगभग 13 लाख के लगभग ये प्लांट लगे, 12 लाख के लगभग। एंड कुल मिलाकर इतने कहना चाहता हूं, जू हो अलखोर का फैमिली पार्क जू, या फिर पार्क्स हो जिसमें अल मशाफ, अल नवाज, अल तुमामा, अल वक्रा सेंट्रल पार्क, अल हमाम पार्क, अल अताल, ये सारे पार्क्स बनाए गए और लोगों के लिए आसान हो गया। वरना मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि पार्कों में लोग शिफ्ट का इंतजार कर रहे हैं कि ये वाली टीम खा पी के उठे, इनके पॉटलक खत्म हो तो हम फिर अपनी चादर बिछा दें। वैसे सच बोले तो मुझे लगता है दुनिया में पार्क का अगर कोई कैपिटल बनाना हो आने वाले टाइम में ना, तो वो हमारा कतर ही होगा, क्योंकि यहाँ जितने मोहल्ले उससे भी ज्यादा पार्क है। भैया थैंक यू सो मच मिनिस्ट्री ऑफ म्युनिसिपैलिटी, आपकी वजह से हम इतनी तरोताजा फील करते हैं, हमें लगता ही नहीं कि हम डेजर्ट्स में। भैया हमें ऐसा लग रहा है इतनी हरियाली तो हरियाली वाले शहरों में नहीं, वहां पेड़ काट के रोड बन रहे हैं और यहाँ रोड के बगल में पार्क बनाए जा रहे हैं। थैंक यू सो मच 89.6 मिर्ची वन इट्स हॉट
3: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर। जनम

0: काश एक बार फिर से स्कूल जाते और अरबिक लैंग्वेज सीख पाते। ये साहब के साथ है मस्त मौला गौरव, शो चल रहा है मेरा
1: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
0: बट इमेजिन आपको कतर में फिर से स्कूल में एडमिशन मिल जाए, और वो भी ऐसे स्कूल में जहां पर आप बहुत सारे बच्चों के साथ अरबिक सीख पाओ, क्योंकि भाई ये एडमिशन शुरू हो गए। यस, बात करो, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हायर एजुकेशन ने अनाउंस कर दिया ओपनिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन सेंटर्स फॉर स्टूडेंट एडमिशन, और ये साल 2026-27 एकेडमिक ईयर के लिए है। सर्विसेज अवेलेबल हैं जुलाई 5 से और ये अगस्त 13 तक चलेंगी, एंड इस दौरान वही लोग रजिस्टर कर सकते हैं जो कुछ कैटेगरीज को यू नो एलिजिबल होते हैं जिस कैटेगरी के लिए। जैसे अगर हम बात करें, अगर आप यहाँ एज अ रेसिडेंट हैं और प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉय हैं, तो रिमेंबर वो प्राइवेट स्कूल उस रिक्वायर्ड ग्रेड लेवल को अगर ऑफर नहीं कर रहे हैं, तभी आप जाकर पढ़ा पाएंगे अपने बच्चों को इन अरबिक स्कूल में। यस, नॉन अरबिक स्पीकिंग स्टूडेंट अप्लाइंग अंडर एलिजिबल कैटेगरीज, उनका अरबिक लैंग्वेज असेसमेंट करने के बाद ही होगा। थोड़ी बहुत तो अभी भी अना कलाम शोई अरबी लुगा अरबी बस माफी ज्यादा मालूम, लेकिन अगर आपके बच्चे अरबिक जानते हैं, आपको लगता है कि उनका एडमिशन अरबिक स्कूल में होना है, तो दिस इज द राइट टाइम। ये एडमिशन प्रोसेस बिगिंस नाउ एंड टिल अगस्त 13th आप यहां पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर सब कुछ सही रहा तो आपका बच्चा इन स्कूल्स में पढ़ेगा और आने वाले दौर में अच्छी जॉब भी करेगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट, एंड मस्त मौला गौरव यही कहेगा, समर वेकेशन बहुत के चल रहे हैं, लेकिन अगर ट्रांसफर कराना है अरबिक स्कूल में ऑलरेडी आपका बच्चा है, तो उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन अभी से ही आपको करना है। 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट
1: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक दूल्हा ना ट्रैफिक से बचने के लिए साइकिल से मंडप तक पहुंच गया।
3: वैसे ना ये ग्रीन फ्लैग है, क्योंकि इसको पता है कि रिलेशनशिप की गाड़ी जो है दो पहिए पे चलती है। और मुझे पता है कि इसकी बारात में ना ढोल नगाड़े नहीं जबकि साइकिल की बजेगी।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: अर्ज किया है
6: इरशाद

0: आईबी पेमेंट्स का वाह तरीका. विद आईबी सेंड मनी स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट QAR 5 एंड यस विद द बेस्ट एफएक्स रेट्स. सिंपल सीधा नो टेंशन. चेक द आईबी ऐप टुडे फॉर आवर 5 10 15 20 ऑफर वैलिड टिल जुलाई 31st. आईबी स्मॉलर फीस बिगर स्माइल्स. टीएनसी अप्लाई.
1: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे.
2: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी.
3: आएंगे दीदी, आएंगे दीदी.
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6 FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

0: देखिए ये हवाएं वाला गाना बड़ा रोमांटिक टाइप का है, लेकिन कतर में जो लू वाली हवाएं चल रही है इसमें आपको हेल्थ इश्यूज हो जाएंगे। आप समझिए यार, दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर 43 डिग्री पहुंच रहा है। शाम शानदार नहीं, दोपहर शानदार लग रहा है हमको।
1: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
0: अब बताइए ऐसे टेम्परेचर में आप करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहां?
2: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
1: वेदर अपडेट।
0: दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर आज 44 डिग्री सेल्सियस था, मिनिमम अराउंड 33 आएगा। लेकिन उससे बड़ी बात, ये हवाओं के थपेड़े लू का एहसास करा रहे हैं। हालांकि हमारे वहां तो अप्रैल मई में चलती है, लेकिन यहाँ जुलाई अगस्त तक ये माहौल बना रहता है। 23 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है हवाएं, हमारी बॉडी को डिहाइड्रेट कर रही है। इसलिए पानी पीते रहिए और पी पी के सूरज चाचू को कोसते रहिए, जिन्होंने न जाने अपने ब्राइटनेस का रिमोट कहाँ गायब कर दिया है। जल्दी ढूंढो सूरज चाचू, थोड़ा कम कर दो मिर्ची, इट्स हॉट।
1: Weather check brought to you by RSL Group of Company. अब पाओ कतर में delivery riders और driver की job. For bright future call now 3100 0813.

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: जॉन अब्राहम, आपके हिसाब से द टॉप फिट बॉयज ऑफ द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री।
2: फर्स्ट रेफरेंस इज ऑलवेज गोइंग टू बी वरुण धवन एंड आई टेल यू व्हाई, क्योंकि वरुण का जो फिजिक है वो बहुत ही प्रोपोर्शनेट है, उसके लेग्स बहुत ही स्ट्रांग है। टाइगर श्रॉफ, फैंटास्टिक बॉडी। रणवीर सिंह, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली फिट। एंड ऑफ कोर्स ऋतिक रोशन, ऑनेस्टली अमंगस्ट ऑल दीस इंक्लूडिंग माई सेल्फ आई थिंक सबसे फिटेस्ट इंसान हमारे इंडस्ट्री में इज अक्षय कुमार। एंड आई मीन होलिस्टिकली फिट, ही कैन सर्वाइव एनीवेयर। अगर आप उसको माउंट एवरेस्ट पे छोड़ दो, अगर आप उसको रेगिस्तान में छोड़ दो, अक्षय कुमार विल बी द ओनली गाय हु विल सर्वाइव एंड कम आउट।
1: छोड़ने की जरूरत ही नहीं है जॉन अब्राहम। अक्षय कुमार इज द ओनली पर्सन इन द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जो बाय चॉइस इन जगहों पर जाएंगे। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड
3: Why go outside to see a doctor when healthcare can come to you?
4: With KIMS Health at Home, get doctor consultations, nursing care, physiotherapy, blood sample collection and more all at one place. Call 5572-7387 today.
5: Hello Sharps, our product is phenomenal. One of a kind but still profit nahi ho raha hai. Maine Baba ji se advice li to kehte hain.
6: Office ke toilet mein toilet paper white nahi, yellow lagao. प्रॉफिट आएगा।
5: रिलेटिव से एडवाइस लो तो कहते हैं
7: काम को टाइम दो, 25 घंटे काम करो, डार्क सर्कल्स होंगे तो फ्यूचर ब्राइट होगा।
5: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए, जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो।
8: भाई क्या कर रहा है तू, जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है ना इधर उधर भटकना है। गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहाँ तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट।
9: Qatar's number one Hindi radio station, Mirchi. Take your partner with us now. Your business will go wow. Call now. 7070-7687.

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन?
1: नहीं नहीं, हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है?
0: मेरे घर के पास बहुत कबूतर है, परेशानी होती है यार, क्या करूं?
1: तुम्हें जब पता है कि इतने सारे कबूतर हैं, तो घोंसले के बाजू में घर मत बना, समझा?

0: इस गाने को आवाज दी है गुरु रंधावा ने। म्यूजिक एंड लिरिक्स बाय गुरु रंधावा, गिल मचरई एंड रॉनी अजनाली। धमाल फोर से सुनते रहिए कहर, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: 89.6 मिर्ची 1 पर। वैसे जहर कुड़े गाना खत्म हुआ और ये मीठा इंसान आ गया। हाँ भाई, जिंदगी में 4 दिन के लिए आए हो, जहर क्यों घोलना, मीठापन घोलो लोगों में। 5:02 से ज्यादा।
2: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
1: वैसे करने को तो बहुत कुछ है हमारे कतर में, ऐसा नहीं है कि समर्स आ गए हैं तो कुछ नहीं है। हालांकि समर कैंपेन ही चल रहा है, लेकिन कल से जहां आपके पांव पड़ जाने चाहिए, इनफैक्ट आज से ही, वो जगह है ईस्टर्न स्क्वायर ऑफ सूख वाकिफ, जहां पर 18 जुलाई तक आम ही आम बनेगा खास, क्योंकि पाकिस्तानी 3rd हम्बा मैंगो फेस्टिवल इज बैक, जहां पर आपको मिलने वाला है सिंदरी चौसा, अजीम चौसा, ब्लैक चौसा, इसके अलावा अनवर रतोल, दशहरी, फजरी, ये सारे के सारे आमों की वैरायटी मिलने वाली है। कुछ और करना है तो भाई कुछ और भी खास है, कतर टॉय फेस्टिवल, जहां पर आपके बच्चों के लिए एक ऐसा एंटरटेनमेंट जोन तैयार है कि अगर आप नानी दादी के घर नहीं जा पाए हो तो यहां टॉय फेस्टिवल के घर चले जाओ, यहां भी वही फीलिंग आएगी जो दादी नानी के घर आती थी, क्योंकि बच्चों की फेवरेट जगह अपने खिलौने के ही साथ होती है। उनके बचपन को बनाए रखिए और खुद का बचपन भी जिए यहां जाकर। मस्त मौलो गौरव फिलहाल आपके साथ, तो मिर्ची सुनते रहे, क्योंकि एंटरटेनमेंट का असली एंटरटेनमेंट यही मिलता है। इट्स हॉट।

0: Mirchi. Buscabana, buscabana, sacabana. Rabana. Burka, burka. La
1: fiesta la burka. Mirchi, burka.
2: हेलो
3: हेलो सर, वेरी गुड इवनिंग, मैं सेल्यूलर से बोल रहा हूँ। सर हमारी एक स्कीम आई है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको समझाऊँ। ये वॉइस मेल के लिए है, अगर आप चाहते हैं और आपको इंग्लिश नहीं आती है सपोज माने आप, तो आप कोई भी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसको आगे भेज सकते हैं।
2: अच्छा,
3: आप हिंदी में अपना मैसेज छोड़ेंगे और हमारी मशीन उसको कन्वर्ट करके दूसरी लैंग्वेज में डब कर देगी सर, जिसका सर कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, मंथली कोई चार्ज नहीं लगेगा। सर आप चाहेंगे ये स्कीम आपको दे दी जाए?
2: के पास है क्या ये सर्विस?
3: बिल्कुल सर, कोई एडिशनल चार्जेस नहीं है सर, जो आपका नॉर्मल प्लान चल रहा है उस प्लान के अकॉर्डिंग आपका बिल आएगा, सिर्फ आपकी एक फैसिलिटी बढ़ जाएगी।
2: जो क्या कॉस्टिंग पड़ेगा पर मैसेजेस का?
3: सर आप दिन में अगर 100 मैसेज भी भेजते हैं तो आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा, आपका नॉर्मल रेंट रहेगा जो आपका चल रहा है अभी।
2: ठीक है,
3: बीप सुनने के बाद अपना मैसेज छोड़िएगा।
2: ओके अगम सर, मुझे आपके अंडर में काम करना बहुत अच्छा लगता है, तो आप प्लीज मुझे अपनी टीम में रख लीजिए।
3: सर वेरी गुड, आपका मैसेज रिकॉर्ड हो गया सर, हमने इसको दूसरी लैंग्वेज में डब कर दिया, अब आपके बॉस ये सुनेंगे, सुनिए।
2: ये क्या है भैया?
3: सर ये आवाज तो आपकी लग रही है, मुझे लग रही है सेंटेंस इधर उधर हो गए।
2: तो भी मशीन चलाने आती भी है।
3: सर मैनेजर के अलावा किसी और को मैसेज देखे देखिए।
2: हेलो वीना मैम, प्लीज अभी जो आ रहा है प्रोजेक्ट उसके लिए मुझे नॉमिनेट कर लीजिए अपनी टीम में।
3: सर थैंक यू सो मच, आपका रिकॉर्ड हो गया, वीना मैम को ये सुनाई देगा।
2: मजाक कर रहा है तू मेरे से?
3: सर मेरी बात सुनिए, ये जो मेरी बात सुनिए सर, सर सर सर सर सो सॉरी, आई एम सो सॉरी सर, जितना आप मुझ पे चिल्लाए हैं मैंने रिकॉर्ड कर लिया। देखिए अब सही आएगा, देखिए ये दूसरी लैंग्वेज में आएगा, रुकिए सर आप। हेलो मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात तो सुनिए सर, मैं इतनी गाली नहीं सुन सकता सर, मैं इतनी।
4: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, मैंने तो रैंडमली आपका नंबर मिला दिया था सर, दिल्ली में सब आपको सुन रहे हैं, आप रेडियो मिर्ची में मुर्गा बन गया है आपका, प्लीज इतनी गाली मत दीजिए यार।
3: सर मैंने ये भी रिकॉर्ड कर लिया, देखिए सुनिए क्या आया डब हो गए।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, only on मिर्ची, it's hot, it's hot।
6: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस, और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी। विजिट मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
7: ओ भाई जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक।
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

हाँ जी, आप भी मेरे बन जाइए दोस्त ताकि पैसा मुझे आप कुछ दे पाए एज ए उधार। मस्त मौला गौरव यहाँ आपको बताना चाहता है दोस्तों कि बारी आ गई है, आप अपने प्यारे दोस्तों से पैसे लें और घर भेजें, क्योंकि हमारा तो सिंपल है, पहले हफ्ते के बाद सैलरी हो जाती है छुमंतर और फिर हम ऐसे दोस्तों को ढूंढते हैं जो उधार दे के भूल जाएं। राइट नाउ की बात करें तो एक कतरी रियाल के बदले मिलने वाले इंडियन रुपीस दोस्तों एक नहीं दो नहीं पूरे 26 रुपए 17 पैसे, यस 26.17 INR। वही एक कतरी रियाल के बदले अगर हम श्रीलंकन रुपीस की बात करें 92.12, अगर जनाब पाकिस्तानी रुपीस की बात की जाए तो वाहिद कतरी रियाल के बदले 76.52 पाकिस्तान रुपीज। वही अगर हम बात करें तपाईको नेपाली रुपीज का रेट छो एक कतरी रियाल के बदले 41.77 का भल छत रेट दाई। हाँ जी, 41.77 का रेट छाई नहीं घर भेजने चाहे भाई राइट टाइम छ। अगर इसके बाद हम बंधु बांग्लादेशी टका का बात करेगा दादा एक्टा कतरी रियाल के बदले 33.93 तो 33.93 आइटम बांग्लादेशी टका का रेट अच्छे तो मस्त मोलो गौरव कह रहा है दोस्तों सुधार लो पैसे घर भेजो और लखपति बन जाओ। काश मेरा कोई दोस्त मुझे उधार दे देता मिर्ची।

0: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक दूल्हा ना ट्रैफिक से बचने के लिए साइकिल से मंडप तक पहुंच गया।
3: वैसे ना ये ग्रीन फ्लैग है, क्योंकि इसको पता है कि रिलेशनशिप की गाड़ी जो है दो पहिए पे चलती है। और मुझे पता है कि इसकी बारात में ना ढोल नगाड़े नहीं जबकि साइकिल की बजेगी।
4: मिर्ची, इट्स हॉट। कतर में है और ड्राइविंग लाइसेंस भी है। क्या आपको तलाश है एक अच्छी कंपनी की?
5: तो इंतजार खत्म। RSL ग्रुप ऑफ कंपनीज लेकर आया है एक सुनहरा मौका स्टेबल इनकम के साथ।
4: अभी कॉल करें 3100-0813।

0: बॉलीवुड का स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान। खान खान
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसलिए मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
6: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
7: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
8: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस संबोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कदर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
9: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन

0: हाँ जी, आशीष कौर देवनेगी की आवाज में दीदार दे, तो हम आपको कुछ खबर देंगे। कि अगर आप खाने पीने के शौकीन नहीं हैं और फिटनेस के शौकीन हैं तो ये वाली खबर आपके लिए है। यस, कतर की फर्स्ट इंडोर ट्रेडमिल रेस, ये एक सीरीज है जो हमारे कतर में शुरू हो चुकी है। यस, आपको बस अपने साथ एक टीममेट को जुटाना है, ट्रेडमिल पे जाना है एंड जो जितना ज्यादा डिस्टेंस कवर पाए 60 मिनट्स में वो उस हफ्ते जीत जाता है। यस, इसे हम कहते हैं अपने कतर में बीट द हीट रेस 2 और ये सीजन शुरू हो चुका है। वर्जन एक्टिव मशरब डाउनटाउन में आपको ये मिल जाएंगे, जहां पर फीमेल मेल और मिक्स कैटेगरीज दोनों में आपका इंतजार हो रहा है। और अगर आपको लगता है कि आप वो हैं जो 1 घंटे में 8 से 9 किलोमीटर दौड़ सकते हैं, लाइक मी, मैं सपनों में जब दौड़ता हूं तो कभी कभी 10-12 भी दौड़ जाता हूं, तो जरूर जाइए, इसका हिस्सा बनिए। क्योंकि मैं अलार्म क्लॉक सुबह लगाता हूं और स्नूज करते करते दोपहर कर देता हूं, क्योंकि सुबह उठकर दौड़ने का कोई फायदा नहीं जब मेरे पास कार है। दोस्तों 89.6 मिर्ची 1 इट्स हॉट, लेकिन आपको अगर फिटनेस की दरकार है तो ये आपकी खबर है।
1: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: बने लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ।
1: शाम शानदार brought to you by KIMS Health Medical Center।
0: हाँ जी, तो मस्त बोला गौरव, यही कह रहा था कि किसी की जान पे बन जाए ऐसा काम ही ना करो, पटोला बनने की जरूरत ही क्या है, नॉर्मल कपड़े पहन के निकल लो। हैं जी, फिलहाल तो वो टाइम है जब मस्त बोला गौरव आपसे ढेर सारी बातें कर करता है। टाटा बाय, प्रणाम एंड घर जाकर आराम, क्योंकि भाई अब वीकेंड आ गया, हम भी तो थोड़ी मस्ती कर ले। इन सब के बीच फुटबॉल वर्ल्ड कप का जोश जुनून अब बिल्कुल कम नहीं होगा, क्योंकि क्वार्टर फाइनल मुकाबले आज से शुरू होने जा रहे हैं दोस्तों। और ये यूं होंगे कि आज रात भिड़ेगा फ्रांस एंड मोरक्को, एंड क्या 2022 कतर वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल रिपीट होगा, यानी कि फ्रांस मोरक्को को हरा देगा, या फिर मोरक्को इस बार रिवेंज लेगा पिछले वर्ल्ड कप की हार का और खुद को आगे बढ़ाएगा। इंतजार कीजिए आज रात 11 बजे से, जब ये 22 खिलाड़ी मैदान में होंगे तो फुटबॉल का असली मजा हमें मिलेगा। इस उम्मीद के साथ कि जीत की खबर के साथ हम सैटरडे को लौटेंगे किसी एक टीम को आगे लेकर, मस्मोला गौरव ले रहा अलविदा मिर्ची पर। इट्स हॉट, टाटा बाय बाय, मा सलाम हबीबी।
1: शाम शानदार brought to you by KIMS Health Medical Center।

0: नहीं नहीं, हेल्पलाइन मिर्ची। अपना सवाल क्या है वो बता बच्चू।
1: अरे भाई क्या बोलूं आपको, इधर घर ढूंढना इतना टफ है, कब से ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रहा, क्या करूँ।
0: अबे सबसे पहले तो ये बता कि तू किसका घर ढूंढ रहा है, तभी तो हेल्प कर पाऊंगा ना।
2: मैं दिल में आता हूँ, समझ में नहीं।

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: मिर्ची घड़ी में बज गए शाम के 6 एंड यू एंजॉयिंग क्लब मिर्ची.
2: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर.
3: लेडीज एंड जेंटलमैन, फैसन योर सीट बेल्ट्स एंड वेट फॉर द नो स्मोकिंग साइन. वी आर गोना गो, वी आर गोना गो.

0: मिर्ची।
1: हेलो पीपल, वी कैन फाइनली नॉक कर रहा है और क्लब मिर्च ऑफिशियली ऑन हो चुका है। बाहर बारिश की बूंदे, अंदर बेस की धूम, तो वॉल्यूम फुल करो, मूड कूल करो और डांस फ्लोर हो या बोर्डम, गाड़ी हो या बालकनी, आज रात सिर्फ एक ही रूल है, नो रूल्स ओनली गुड वाइब्स। मैं हूँ मिर्ची ऑयोंटिक एंड विद मी इज डीजे रिचर्ड। अगले कुछ घंटों तक पार्टी नॉनस्टॉप, हिट्स बैक टू बैक और वर्ल्ड कप फीवर के साथ बारिश वाली मस्ती भी। वेलकम टू क्लब मिर्ची, लेट्स गो।

वीकेंड का सीन सिंपल है, फोन साइलेंट, वरीज ऑफलाइन और म्यूजिक फुल वॉल्यूम, बारिश को बैकग्राउंड डांसर बना दो और खुद बन जाओ टुनाइट्स मेन कैरेक्टर। क्लब मिर्ची इज जस्ट गेटिंग स्टार्टेड विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका। लेट्स गो।

0: आईपी पेमेंट्स का वाह तरीका. With iPay, send money starting from just QAR 5, and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the iPay app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. iPay, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं, महापुरुष, महापुरुष.
0: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स. जबरदस्त ट्रैक्स. कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन.
2: 89.6 FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.
3: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो.
4: On a ride.

0: वेलकम बैक पार्टी पीपल। अगर चाय के साथ पकोड़ा चल रहा है तो उसके साथ हमारा बीट्स भी जरूरी है, और अगर आप रोड पे हो तो रेन को एंजॉय करो, स्पीड को नहीं। क्लब मिर्ची में अभी पार्टी बस गर्म ही हो रही है। डीजे रिचर्डन मिर्ची और योम टिका विद यू टुनाइट, लेट्स गो अगेन।
1: तो चाके रखना जिन्हें भंगड़ा पाना, पंजाबी आ गया कुचेला।

फुटबॉल वर्ल्ड कप चल रहा है, तो अगर आज रात किसी गोल के बाद पड़ोस से जोर का चीयर सुनाई दे, डोंट पैनिक। फुटबॉल लवर्स आर सिंपली लिविंग द बेस्ट लाइफ, और हम भी ऑन क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका।

0: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक दूल्हा ना ट्रैफिक से बचने के लिए साइकिल से मंडप तक पहुंच गया।
3: वैसे ना ये ग्रीन फ्लैग है, क्योंकि इसको पता है कि रिलेशनशिप की गाड़ी जो है दो पहिए पे चलती है। और मुझे पता है

की रात नियॉन लाइट्स और फेवरेट गाने, इससे बेटर वीकेंड कॉम्बो हो ही नहीं सकता. सो वेयरएवर यू आर वाइबिंग, बालकनी, टेरेस या लॉन्ग ड्राइव, क्लब मिर्ची इज योर परफेक्ट पार्टी पार्टनर. डीजे रिचर्ड, मिर्ची और योंतिका विद यू. लेट्स गो.

Rainy nights are made for hot coffee, good company and even better music. अगर कंपनी नहीं है टेंशन किस बात की, क्लब मिर्ची है ना। डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका आपके पक्के दोस्त। लेट्स गो बेबी।

बारिश खिड़की पे बजती है, कभी बेस स्पीकर पे, और जब दोनों एक साथ बजते हैं वीकेंड ऑटोमेटिकली लेजेंडरी बन जाता है। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची, ऑन द काउंट, लव मिर्ची टुनाइट।

लाइफ को कभी कभी शफल पे छोड़ देना चाहिए, पता नहीं अगला सरप्राइज एक फेवरेट गाना हो या एक अनफॉरगेटेबल मेमोरी। एंजॉय एवरी बीट विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन क्लब मिर्ची।

0: iPay payments ka wah tarika. With iPay, send money starting from just QAR 5, and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the iPay app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. iPay, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना।
2: अरे, पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
3: कैसे रुक सकता है?
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6 FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट।
5: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर

का फीवर भी फुल ऑन है। हर पास पे टेंशन, हर गोल पे सेलिब्रेशन, और हर सेलिब्रेशन के लिए एक ब्लॉकबस्टर गाना तो बनता है। तो सीट बेल्ट बांधो, वॉल्यूम बढ़ाओ, क्लब मिर्ची कंटिन्यूज विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंटिका।

वैसे पार्टी सिर्फ रेडियो तक ही क्यों? बिहाइंड द सीन्स क्रेजी रील्स और मस्त कंटेंट के लिए फॉलो करना मत भूलना डीजे रिचर्ड ऑफिशियल को। पार्टी कंटिन्यूज ऑन एयर भी और ऑनलाइन भी। क्लब मिर्ची इट इज विद मी मिर्ची और योंतिका।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: जी बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन, बताइए क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए।
2: बूढ़ी बाबा, मेरे पति को मेरे हाथ की रोटी अच्छी नहीं लगती, क्या करूँ?
1: तो सिंपल है ना, तुम्हारे हाथ की रोटी मत खिलाओ, आंटी की खिला दो।
3: मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस।
4: मिर्ची घड़ी में बज गए 7 एंड यू एंजॉयिंग क्लब मिर्ची।
5: Time check in association with Naseem Medical Center, Qatar's largest private medical

0: 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot.
1: Ladies and gentlemen.

का मतलब सिर्फ रेस्ट नहीं, बेस्ट भी। डांस करो, गाओ या बस बारिश देखते हुए चिल करो। हम लेकर आए हैं नॉन स्टॉप हिट मशीन, डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका विद क्लब मिर्ची।

बारिश की स्मेल, फ्रेश प्लेलिस्ट और वीकेंड का थ्रिल, बस इसी कॉम्बो के लिए तो पूरा हफ्ता वेट करते हैं। अब डांस करना कंपलसरी है विद क्लब मिर्ची एंड डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयोंतिका।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi. Iskabana, puskabana, sakabana. Gabana. Murga, murga. Navirpa, murga. Mirchi, murga.
2: Hello.
3: Hi. Ye call... बैंक से है। आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है। हमारे कस्टमर केयर से आपको पासवर्ड मिलेगा। पासवर्ड बहुत कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए किसी को ना दे और इसका दुरुपयोग होने से बचाएं।
4: देखिए जी, आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है, आप पासवर्ड लिख लीजिए प्लीज।
2: एटीएम वाला पासवर्ड है ना?
4: एटीएम वाला पासवर्ड है सर, ये पासवर्ड लिख लीजिए, मैं आपको बता देता
2: हूँ। एक मिनट मैं लिख लेता हूँ कहीं।
4: हाँ जी,
2: हाँ बोलिए।
4: 33501।
2: अच्छा
4: सर, एक सेकंड रुकिए, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। शैलेंद्र जी, जरा विक्की का पासवर्ड बताइए, जरा इनको, ये फोन लाइन पे है, एटीएम वाला।
2: हेलो,
4: मेरी वाइफ के पास भी है, एक सेकंड होल्ड करिएगा। मैं फोन मिलाता हूँ। हेलो डार्लिंग, हाय।
5: हाय।
4: अच्छा ये बताओ, ये विक्की का पासवर्ड क्या है?
5: विक्की का पासवर्ड 33501। एक काम करिए ना,
4: हाँ?
5: धोबी से पूछ लीजिए, क्योंकि उसके पास भी है।
4: धोबी से
5: पूछ लीजिए।
4: अच्छा ये जो हमारे कपड़े धोता है, एक सेकंड।
2: हेलो
4: सर, एक सेकंड होल्ड करना, वो धोबी से भी कंफर्म कर।
6: ये बेल जा रही है।
4: हेलो भैया। हेलो भैया, मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आप हमारे कपड़े धोते हो?
2: अरे भाई तू एक बात सुन, ये
4: आपके
2: हो
4: पास
2: है?
4: आपके पास पासवर्ड होगा?
2: 33501।
4: हाँ सर, 33501 है सर।
2: हेलो।
4: हाँ जी सर, सर यही पासवर्ड है। मेरी बात सुनिए ना,
2: किससे पूछे जा रहा है तू?
4: किससे? मैं कंफर्म कर रहा हूँ ना सर, आपके पास।
2: भाई ये क्या कंफर्म, भाई मेरा एटीएम कार्ड है
4: ये। एटीएम तो आपका तो पासवर्ड नहीं मिलेगा, पैसे कैसे निकलेंगे यार?
2: सिर्फ मुझे बताना है, सबको थोड़ी ना दुनिया में अल्लाह थोड़ी ना आता है।
4: आपको तो जल्दी इतनी मच रही है, आपको जल्दी इतनी मच रही है। कल का टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लेते, उसमें भी आ रहा था, बेकार में एप्लीकेशन डाल दी। टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ लेते
6: विकी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। तुमने पासवर्ड के लिए अप्लाई कर रखा था, तुम्हारा पासवर्ड अभी तक नहीं आया है। 33501।
2: किसने दिया मेरा नंबर?
6: आपका नंबर आशा ने दिया है, उन्होंने कहा था।
2: अरे मैं कुकड़ू को।
7: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
8: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस। और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया, यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी। विजिट मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
9: तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट।
10: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा।
11: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
12: 89.6 FM, Mirchi 1.
13: It's hot. Ladies and gentlemen, we are gonna go.
14: On a ride.

बारिश का मौसम है, कभी रोमांटिक कभी ड्रामेटिक, लेकिन प्लेलिस्ट हमारी सिर्फ फैंटास्टिक, सो डोंट टच दैट डायल, क्योंकि अभी पार्टी का लेवल और भी हाई होने वाला है। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका विथ यू, एंड दिस इज द

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी
3: यार. तूने सुना, एक दूल्हा ना ट्रैफिक से बचने के लिए साइकिल से मंडप तक पहुंच गया.
4: वैसे ना ये ग्रीन फ्लैग है, क्योंकि इसको पता है कि रिलेशनशिप की गाड़ी जो है दो पहिए पे चलती है. और मुझे पता है कि इसकी बारात में ना ढोल नगाड़े नहीं जबकि साइकिल की बजेगी.
5: मिर्ची, इट्स हॉट.
6: अरे करण अर्जुन आमिर शाहरुख ऋतिक अक्षय इमरान सबके गाने आएंगे दीदी.
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6 FM Mirchi 1. It's hot.
9: Ladies and gentlemen, we are gonna go.

फेरी लाइट्स चल रही है या कार की विंडशील्ड पे बारिश नाच रही है तो साउंड ट्रैक भी प्रीमियम होना चाहिए। वेलकम बैक टू क्लब मिर्ची, लेट्स कीप द वीकेंड अलाइव विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन योंदिका बेबी।

छोटा सा रिमाइंडर, अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो प्लीज स्पीड से ज्यादा सेफ्टी को इम्पोर्टेंस दीजिए। वेट रोड्स पे ब्रेक्स को टाइम लगता है लेकिन एक्सीडेंट्स को नहीं। सीट बेल्ट ऑन रखिए, फोन साइड में रखिए और सेफली घर पहुंचिए। पार्टी बाद में भी होती रहेगी। डीजे रिचर्ड मिर्ची और योम तक आते हैं ना क्लब मिर्ची लेके हर हफ्ते।

म्यूजिक का वॉल्यूम हाई हो सकता है लेकिन स्माइल उससे भी हाई होनी चाहिए। वीकेंड है बॉस, डांस करो, गाओ, बारिश एंजॉय करो और क्लब मिर्ची के साथ गुड वाइब्स स्प्रेड करते रहो। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका विद यू टुनाइट।

Dile nari nari, tú la una varie, dile tira, yo no tu gata.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: मिलिंद सोमन, आपकी इतनी फिट बॉडी है, क्या आपने कभी इस बॉडी का फायदा उठाया है? आ जा, दिखाता हूँ तुझे, झगड़ा करेगा मेरे साथ।
4: कभी झगड़ा नहीं किया, और टफ फिजिक का मतलब ये नहीं कि झगड़ा करके उसको जस्टिफाई करो। गुड फॉर शो व्हिच इज गुड फॉर माय प्रोफेशन एंड आई वर्क अ लॉट, I work very hard, so I need that fitness level.
3: And I need your motivation level, Milind Soman. Aap sun rahe hain Mirchi, it's hot.
1: Bollywood Boldal.
2: Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
0: Only on Mirchi, it's hot.
5: Aur mushai, zindagi badi honi chahiye, lambi nahi.
6: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
7: बार बार
6: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6
9: FM मिर्ची वन इट्स हॉट
10: लेडीज एंड जेंटलमैन वी आर गोना गो वी आर गोना गो वी आर गोना गो
9: ऑन अ राइड
0: क्लब मिर्ची विद ऑयोंदिका एंड डीजे रिचर्ड ओनली

वेलकम बैक पार्टी पीपल। अगर चाय के साथ पकोड़ा चल रहा है तो उसके साथ हमारा बीट्स भी जरूरी है, और अगर आप रोड पे हो तो रेन को एंजॉय करो, स्पीड को नहीं। क्लब मिर्ची में अभी पार्टी बस गर्म ही हो रही है। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योम टिका विद यू टुनाइट, लेट्स गो।

वीकेंड के प्लान सक्सेसफुल हो या कैंसिल, प्लेलिस्ट कभी डिसअपॉइंट नहीं करती। दिस इज क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योन टिकल। सो वेदर यू आर एट अ हाउस पार्टी, कैफे या अपने रूम में सोलो कॉन्सर्ट कर रहे हो, क्लब मिर्ची इज राइट देयर विद यू। लेट्स गो।

0: मिर्ची घड़ी में रात के 8 की पारिंग विद क्लब मिर्ची।
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।

0: 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot.
1: Ladies and gentlemen.

रात नियॉन लाइट्स और फेवरेट गाने, इससे बेटर वीकेंड कॉम्बो हो ही नहीं सकता। सो वेयरएवर यू आर वाइबिंग, बालकनी, टेरेस या लॉन्ग ड्राइव, क्लब मिर्ची इज योर परफेक्ट पार्टी पार्टनर। डीजे रिचर्ड मिर्ची ऑयो दे गो विद यू, लेट्स गो।

बारिश का अपना स्वैग होता है भाई, कभी रोमांटिक कभी फुल फिल्मी, और हम लेकर आए हैं इसी वाइब के ब्लॉकबस्टर ट्रैक्स। कीप स्माइलिंग कीप ग्रूविंग विद डीजे मिर्ची और योंतिका क्लब मिर्ची।

आपका सीजन है, हर मैच एक इमोशन और हर गोल एक सेलिब्रेशन। टीम कोई भी हो, म्यूजिक सबका कॉमन लैंग्वेज है। लेट्स कीप द एनर्जी रोलिंग विद क्लब मिर्ची एंड डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंटिका।

कभी डांस फ्लोर पे स्टेप परफेक्ट नहीं होता, लेकिन एटीट्यूड होना चाहिए 100%. सो फॉरगेट द मूव्स, जस्ट फील द म्यूजिक. दैट्स द क्लब मिर्ची वे विद डीजे रिचर्ड मिर्ची और योम टिका.

0: Ritchie, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi. Iskabana, puskabana, sakabana. Rambana. Murga, murga. Navid wala murga. Mirchi, murga.
2: Hello.
3: Sir, very good evening, man. बैंक से बोल रहा हूँ, मुझे एक रेफरेंस दिया था सर, मैं आपके सिर्फ दो मिनट लेना चाहूंगा, क्या आप मुझे दो मिनट दे सकते हैं?
2: हाँ जी बोलिए।
3: सर हमारी एक स्कीम आई है सर, हम आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जीरो ही नहीं बल्कि बैंक आपको हर महीने पैसे देगा सर, जितने आप चाहते हैं इतने पैसे आपको मिल जाएंगे।
2: आप मुझे पैसे दोगे? हाँ, हिडन चार्जेस?
4: सर इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है, अगर होते तो मैं पहले ही बोल देती।
2: कौन बोल रही है?
3: सर रमेश ही बोल रहा हूँ। सर मैं ये बता रहा था बैंक के बारे में आपको, अगर आपको स्कीम चाहिए ना सर, ये सबसे अच्छी स्कीम है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको हो ही नहीं सकती।
2: मुझे क्यों मिल रही है, मतलब कोई इतनी मेहरबानी क्यों हो रही?
5: सर मैं आपसे इतनी भी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका रेफरेंस बहुत तगड़ा है, वरना हम तो इस तरह की स्कीम किसी को देते भी नहीं।
2: हेलो कौन बोल रहा है?
3: सर रमेश ही बोल रहा हूँ, मैं इसमें ये कह रहा था सर, इसमें आपको कोई लेने देने वाली बात ही नहीं है, आप सिर्फ मेरी बात मानो, आप ले लो।
2: के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?
4: सर आपको एक पैन कार्ड की कॉपी और अपना पुराना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना है, दैट्स ऑल।
2: हेलो मैडम।
3: हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ। हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ।
2: कौन बोल रहा
3: है? रमेश बोल रहा हूँ सर।
2: अभी कोई और बोल रही थी।
3: सर ले लीजिए सर, आप बस आंखें बंद करके मेरी बात मानिए।
2: लेकिन कहीं कुछ उल्टी सीधी तो वो नहीं है, इसमें कुछ परेशानी तो नहीं होगी मुझे?
6: आप चिंता मत कीजिए, हर चीज के पेपर साइन होंगे बाकायदा, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
2: कौन बोल रहा है?
3: सर ले लीजिए यार, इसमें कोई चिंता ही नहीं है सर, इसमें
2: दो दिन बाद मुझे कॉल कर लेना।
7: सर 15 तारीख जो है वो लास्ट डेट है, ऐसा ऑफर आपको कहीं भी किसी भी और बैंक में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ हमारी एक्सक्लूसिव स्कीम है।
2: कौन बोल रहा है भैया?
3: सर रमेश बोल रहा हूँ। आप यार उस पे क्यों जा रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ आप ये ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? सर
2: कभी किसी की आवाज़ आ रही है, कभी किसी की आवाज़ आ रही है। नहीं भैया नहीं, नहीं चाहिए मुझे।
8: सर आप मान क्यों नहीं रहे हो यार, आपको लोन बेचने के चक्कर में, स्कीम बेचने के चक्कर में
3: हम सबका दिमाग खराब हो गया, अपना खुद दिमाग खराब कर रहे हैं यार आप। सर आप ले लो यार, कमाल कर दिया आपने यार दिमाग। क्या क्या
2: कोई बोल रहा
3: है? कौन बोल रहा है यार? मैं बोल आपसे रमेश बोल रहा है। सर मेरी बात सुनिए सर, आपसे सर फोन मत काटिएगा।
9: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, ये सारी आवाजें मेरी हैं, अब मिर्ची पे सब आपको सुन रहे हैं, आप मुर्गा बन गए, आप कुकड़ों को बोल दें जरा हंस के।
10: थैंक यू
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट। A ring for the newly married, cute little bangle for the newborn. अरे यार, holiday season is here और फिर वही gifting का tension. तो फिर मालबार gold and diamonds, gold and summer के साथ buy a free cash vouchers on diamond and precious gem jewelry purchases. Plus, exchange your gold jewelry and upgrade to the latest designs without any loss. और सुनो, there's more. With the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in the GCC. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
11: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी, जा बेटा जा।
12: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल, क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने। हिट गाने
13: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
14: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट
15: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो ऑन अ राइड।
16: Club Mirchi.

का फीवर भी फुल ऑन है। हर पास पे टेंशन, हर गोल पे सेलिब्रेशन, और हर सेलिब्रेशन के लिए एक ब्लॉकबस्टर गाना तो बनता है। तो सीट बेल्ट बांधो, वॉल्यूम बढ़ाओ, क्लब मिर्ची कंटिन्यूज विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंटिका।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी
3: यार। तूने सुना एक दूल्हा ना ट्रैफिक से बचने के लिए साइकिल से मंडप तक पहुंच गया।
4: वैसे ना ये ग्रीन फ्लैग है क्योंकि इसको पता है कि रिलेशनशिप की गाड़ी जो है दो पहिए पे चलती है। और मुझे पता है कि इसकी बारात में ना ढोल नगाड़े नहीं जबकि साइकिल की बजेगी।
5: मिर्ची, इट्स हॉट।
6: दोस्ती का गुस्सा है मैडम। नो सॉरी नो थैंक यू।
7: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू। हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए।
8: तो मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा।
9: खूब मिलेगा, खूब मिलेगा।
10: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
11: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट
12: लेडीज एंड जेंटलमैन।

वीकेंड का मतलब सिर्फ रेस्ट नहीं, बेस्ट भी। डांस करो, गाओ या बस बारिश देखते हुए चिल करो। हम लेकर आए हैं नॉन स्टॉप हिट मशीन, डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंटिका विद क्लब मिर्ची।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Hello, Sharps. Our product is phenomenal. One of a kind, but still profit नहीं हो रहा है. मैंने बाबा जी से advice ली तो कहते हैं
2: ऑफिस के टॉयलेट में टॉयलेट पेपर व्हाइट नहीं येलो लगाओ प्रॉफिट आएगा.
1: रिलेटिव से एडवाइस लो तो कहते हैं
3: काम को टाइम दो 25 घंटे काम करो डार्क सर्कल्स होंगे तो फ्यूचर ब्राइट होगा.
1: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो.
4: भाई क्या कर रहा है तू, जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी. ना इक्विटी देना है ना इधर उधर भटकना है. गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर जहाँ तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट.
5: Qatar's number one Hindi radio station, Mirchi. Take your partner with us now. Your business will go wow. Call now. 7070-7687.
6: Ladies and gentlemen, we are going to go.

बारिश का मौसम है, कभी रोमांटिक कभी ड्रामेटिक, लेकिन प्लेलिस्ट हमारी सिर्फ फैंटास्टिक, सो डोंट टच दैट डायल, क्योंकि अभी पार्टी का लेवल और भी हाई होने वाला है। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयोंतिका विद यू एंड दिस इज द साउंड ऑफ द फ्यूचर।

रेन प्लस फ्रेंड्स प्लस म्यूजिक इक्वल्स टू वीकेंड गोल्स. और अगर फ्रेंड्स बिजी है तो स्पीकर को बेस्ट फ्रेंड बना लो, साथ डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयो का तो है ही कंपनी देने के लिए. लेट्स गो अगेन.

बाद भी मिलते रहना यार फन रील्स बिहाइंड द माइक मोमेंट्स और एवरीडे मैडनेस के लिए फॉलो मी ऑन योंतिका ऑन सोशल मीडिया AYANTIKA. वीकेंड वाइब्स कंटिन्यू ऑन योर फीड टू. लेट्स गो. दिस इज क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन योंतिका.

अभी खिड़की खोलो और बारिश की हवा को फील करो, फिर वॉल्यूम थोड़ा और बढ़ा दो। कुछ मोमेंट्स को सिर्फ एंजॉय किया जाता है, एक्सप्लेन नहीं। DJ Richard Mirchi, Oyo Antika with you on Club Mirchi.

सैटरडे नाइट हो या संडे चिल, एक बात फिक्स है, अच्छा म्यूजिक कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होता, और जब क्लब मिर्ची हो साथ तो मूड ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो ही जाता है। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयो ऑन द काउंट विद यू टुनाइट।

0: Ritchie, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
2: अरे बोलना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
1: मैं जब भी पढ़ने बैठता हूँ ना तो नींद आ जाती है।
3: क्यों नहीं हो रही पढ़ाई?
1: क्या करूँ?
2: अरे घोचू, तो लेटे लेटे पढ़ना, अच्छे से सो भी पाएगा रे तू।
4: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं, इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

अगर रोड्स पे वाटर लॉगिंग दिखे तो अननेसेसरी रिस्क मत लीजिए, स्लो ड्राइव करिए, सेफ डिस्टेंस मेंटेन कीजिए और फ्लडेड रोड्स को अवॉइड कीजिए। बारिश का मजा तभी है जब आप सेफली घर पहुंच जाए। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका विद क्लब मिर्ची टुनाइट।

वीकेंड खत्म हो जाएगा लेकिन आज की मेमोरीज और ये गाने प्लेलिस्ट में हमेशा रहेंगे. सो लाफ अ लिटिल लाउडर, डांस अ लिटिल लॉन्गर और हर बीट को दिल से फील करो. डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका विथ यू टुनाइट.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi.
2: हेलो
3: सर, वेरी गुड इवनिंग, मैं सेल्यूलर से बोल रहा हूँ। सर, हमारी एक स्कीम आई है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको समझाऊँ। ये वॉइस मेल के लिए है, अगर आप चाहते हैं और आपको इंग्लिश नहीं आती है सपोज माने आप, तो आप कोई भी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसको आगे भेज सकते हैं।
2: अच्छा,
3: आप हिंदी में अपना मैसेज छोड़ेंगे और हमारी मशीन उसको कन्वर्ट करके दूसरी लैंग्वेज में डब कर देगी सर, जिसका सर कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, मंथली कोई चार्ज नहीं लगेगा। सर, आप चाहेंगे ये स्कीम आपको दे दी जाए?
2: सर्विस
3: बिल्कुल सर, कोई एडिशनल चार्जेस नहीं है सर। जो आपका नॉर्मल प्लान चल रहा है उस प्लान के अकॉर्डिंग आपका बिल आएगा, सिर्फ आपकी एक फैसिलिटी बढ़ जाएगी।
2: जो क्या कॉस्टिंग पड़ेगा पर मैसेजेस का?
3: सर, आप दिन में अगर 100 मैसेज भी भेजते हैं तो आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा, आपका नॉर्मल रेंट रहेगा जो आपका चल रहा है अभी।
2: ठीक है,
3: बीप सुनने के बाद अपना मैसेज छोड़िएगा।
2: ओके अगम सर, मुझे आपके अंडर में काम करना बहुत अच्छा लगता है, तो आप प्लीज मुझे अपनी टीम में रख लीजिए।
3: सर वेरी गुड, आपका मैसेज रिकॉर्ड हो गया सर, हमने इसको दूसरी लैंग्वेज में डब कर दिया। अब आपके बॉस ये सुनेंगे, सुनिए।
2: ये क्या है भैया?
3: सर ये आवाज तो आपकी लग रही है, मुझे लग रही है सेंटेंस इधर उधर हो गए।
2: तो मशीन चलाने आती भी है
3: सर? मैनेजर के अलावा किसी और को मैसेज देखे? देखिए,
2: हेलो वीना मैम, प्लीज अभी जो आ रहा है प्रोजेक्ट उसके लिए मुझे नॉमिनेट कर लीजिए अपनी टीम में।
3: सर थैंक यू सो मच, आपका रिकॉर्ड हो गया, वीना मैम को ये सुनाई देगा।
2: मजाक कर रहे तू मेरे से?
3: सर मेरी बात सुनिए, ये जो मेरी बात सुनिए सर, सो सॉरी, आई एम सो सॉरी सर, जितना आप मुझ पे चिल्लाए हैं मैंने रिकॉर्ड कर लिया। देखिए अब सही आएगा, देखिए ये दूसरी लैंग्वेज में आएगा, रुकिए सर आप। हेलो, मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात तो सुनिए सर, मैं इतनी गाली नहीं सुन सकता सर, मैं इतनी।
4: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, मैंने तो रैंडमली आपका नंबर मिला दिया था सर, दिल्ली में सब आपको सुन रहे हैं, आप रेडियो मिर्ची में मुर्गा बन गया है आपका, प्लीज इतनी गाली मत दीजिए यार।
3: सर मैंने ये भी रिकॉर्ड कर लिया, देखिए सुनिए क्या आया है डब। ओके
5: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
6: पहलवानी तो सिर्फ छोरे करें।
7: हमारी चोरियां छोरों से कम है के?
8: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के?
9: कम है के?
10: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
11: 89.6 FM Mirchi 1.
12: It's hot.
13: Ladies and gentlemen, we are gonna go.

वेलकम बैक पार्टी पीपल। अगर चाय के साथ पकोड़ा चल रहा है तो उसके साथ हमारा बीट्स भी जरूरी है, और अगर आप रोड पे हो तो रेन को एंजॉय करो, स्पीड को नहीं। क्लब मिर्ची में अभी पार्टी बस गर्म ही हो रही है। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन योंटिका विद यू टुनाइट, लेट्स गो अगेन।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi stories. Stories.
2: Bas 24 ghante hi rahengi.
3: यार तूने सुना, एक दूल्हा ना ट्रैफिक से बचने के लिए साइकिल से मंडप तक पहुंच गया।
4: वैसे ना ये ग्रीन फ्लैग है, क्योंकि इसको पता है कि रिलेशनशिप की गाड़ी जो है दो पहिए पे चलती है। और मुझे पता है कि इसकी बारात में ना ढोल नगाड़े नहीं, जबकि साइकिल की बजेगी।
5: मिर्ची, इट्स हॉट। लेडीज एंड जेंटलमैन,

फुटबॉल वर्ल्ड कप चल रहा है, तो अगर आज रात किसी गोल के बाद पड़ोस से जोर का चीयर सुनाई दे, डोंट पैनिक। फुटबॉल लवर्स आर सिंपली लिविंग द बेस्ट लाइफ, और हम भी ऑन क्लब मिर्ची विद डीजे विचर मिर्ची और योंतिका।

Rainy nights are made for hot coffee, good company and even better music. अगर कंपनी नहीं है टेंशन किस बात की, क्लब मिर्ची है ना, डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंटिका आपके पक्के दोस्त. Let's go baby.

वैसे पार्टी सिर्फ रेडियो तक ही क्यों? बिहाइंड द सीन्स क्रेजी रील्स और मस्त कंटेंट के लिए फॉलो करना मत भूलना डीजे रिचर्ड ऑफिशियल को। पार्टी कंटिन्यूज ऑन एयर भी और ऑनलाइन भी। क्लब मिर्ची दिस विद मी मिर्ची और योंतिका।

और इसी के साथ आज की क्लब मिर्ची पार्टी यही रैप करते हैं। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका आपके साथ। बारिश को एंजॉय करिए, फुटबॉल वर्ल्ड कप का एक्साइटमेंट सेलिब्रेट करिए अपनों के साथ, वक्त बिताइए और सबसे जरूरी सेफ रहिए। अगले वीकेंड फिर से मिलेंगे और लेकर आएंगे और भी ज्यादा म्यूजिक, मस्ती और मैडनेस। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप डांसिंग एंड कीप लिसनिंग टू क्लब मिर्ची। टाटा, इट्स हॉट।

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन?
1: नहीं, हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है?
0: मेरे घर के पास बहुत कबूतर है, परेशानी होती है यार, क्या करूं?
1: तुम्हें जो पता है कि इतने सारे कबूतर हैं, तो घोंसले के बाजू में घर मत बना, समझा?

मिर्ची हेलो पीपल, वीकेंड फाइनली नॉक कर रहा है और क्लब मिर्च ऑफिशियली ऑन हो चुका है। बाहर बारिश की बूंदे, अंदर बेस की धूम, तो वॉल्यूम फुल करो, मूड कूल करो और डांस फ्लोर हो या बोर्डम, गाड़ी हो या बालकनी, आज रात सिर्फ एक ही रूल है, नो रूल्स ओनली गुड वाइब्स। मैं हूँ मिर्ची ऑयोंटिक एंड विद मी इज डीजे रिचर्ड। अगले कुछ घंटों तक पार्टी नॉन स्टॉप, हिट्स बैक टू बैक और वर्ल्ड कप फीवर के साथ बारिश वाली मस्ती भी। वेलकम टू क्लब मिर्ची।

वीकेंड का सीन सिंपल है, फोन साइलेंट, वरीज ऑफलाइन और म्यूजिक फुल वॉल्यूम, बारिश को बैकग्राउंड डांसर बना दो और खुद बन जाओ टुनाइट्स मेन कैरेक्टर। क्लब मिर्ची इज जस्ट गेटिंग स्टार्टेड विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi.
2: हेलो तेजिंदर जी।
3: हाँ जी।
2: हाँ जी तेजिंदर जी, मैं बोल रहा हूँ पासपोर्ट ऑफिस से। आपने अप्लाई कर रखा था पासपोर्ट?
3: जी, हाँ जी किया था।
2: हाँ, ये तेजिंदर जी आपका थोड़ा लेट मिलेगा पासपोर्ट, आपको ये इन्फॉर्म करने के लिए फोन किया था मैंने।
3: कितना लेट मिलेगा
2: आपको इसमें? एक सेकंड रुकिए, मैं चेक कर लेता हूँ। अरे इनका तेजेंद्र का पासपोर्ट कब मिल रहा है? तत्काल में, आपने तत्काल में बनवाया ना इमरजेंसी में?
3: हाँ जी।
2: एक सेकंड। हाँ इमरजेंसी का है सर, 3.5 महीने बाद मिलेगा आपको पासपोर्ट।
3: 3.5 महीने बाद?
2: हाँ जी।
3: भाई साहब तत्काल का क्या मतलब होता है? 5 दिन में मिलता है तत्काल का? तो
2: सर वो मुझे ही मालूम है, मेरे को क्यों समझा रहे हैं। असल में तेजेंद्र जी वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। आपके आसपास कोई है तो नहीं?
3: नहीं कोई नहीं है।
2: ये कह रहा था हमारा एक बंदा है जिसकी शक्ल आपसे मिलती है, ठीक है?
3: अच्छा।
2: बिल्कुल वो डिक्टो कॉपी लगता है आपका, जीरोक्स लगता है। अच्छा, उसको निकलना है दुबई। वो वैसे तो निकल नहीं सकता अपने पासपोर्ट से क्योंकि पुलिस पकड़ लेगी। तो हम कुछ दिन के लिए आपके पासपोर्ट पे से आपका फोटो हटा के, ना आपकी दाढ़ी होती तो चल जाता, उसका फोटो चिपका के आपके नाम से वो दुबई जाएगा। वो 3-4 आदमियों को ठिकाने लगा के वापस आ जाएगा, तो उसमें 3-4 महीने लगेंगे।
3: क्या बोल रहा है भाई? कौन? हेलो।
2: तो मैं उसको बोल देता हूँ, वो वहाँ पे वो आपके घर पहुँचवा देगा। आप फिक्र, बल्कि वो बंदा ही।
3: हेलो।
2: हाँ बोलिए बोलिए।
3: क्या बोल रहा है भाई?
2: आपके पासपोर्ट पे उसका फोटो लगा के आपके नाम से वो दुबई जाएगा, 2-3 को ठिकाने लगाना वापस आ जाएगा, उसका जरूरी काम है।
3: मैं बोल रहा हूँ,
2: मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ।
3: क्या बोल रहा है? क्या
2: आप इतना भड़क क्यों रहे हो? काम आप थोड़ी करने जा रहे हो, काम तो वो लगाने जा रहे हैं ठिकाने।
3: नहीं, बात क्या कर रहा है? पासपोर्ट पे किसी और को भेज रहा है
2: यार। आप मेरी तो तेजेंद्र जी
3: कह रहा है, मैं भड़कू नहीं?
2: सोचो वो कितना भड़क रहा होगा, 3 आदमियों को उसको टपका के आना है दुबई में, उसकी भी तो भड़कन सोचो ना। अरे तो यार आपका पासपोर्ट आपको वापस मिल जाएगा 1.5 महीने के लिए। आपका नाम यूज कर रहा है, आपका नाम यूज करने में क्या आपकी गाड़ी मांग रहा है क्या? गाड़ी यूज कर रहा है वो?
3: नाम बता पहले।
2: ये लकी डॉ निकल रहे हैं, वरना किसी और तेजेंद्र को भेज देते। आपका मौका लगा, आप ऐसे भड़क रहे हैं उल्टा। मेरी बात सुनिए तेजेंद्र। तेजेंद्र मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, और तुम रेडियो मिर्ची पे हो। मुझे शालिनी ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने कहा था कि तुमने पासपोर्ट अप्लाई कर रखा है, तुम्हारा मुर्गा बनाया भाई। तुम बहुत गुस्से वाले हो, तो मैं सोच रहा हूँ तुम्हें दुबई भेज दूँ, उसे नहीं भेजूं।
4: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
5: Ladies and gentlemen, we are gonna go on a ride.

वेलकम बैक पार्टी पीपल। अगर चाय के साथ पकोड़ा चल रहा है तो उसके साथ हमारा बीट्स भी जरूरी है, और अगर आप रोड पे हो तो रेन को एंजॉय करो, स्पीड को नहीं। क्लब मिर्ची में अभी पार्टी बस गर्म ही हो रही है। डीजे और चटन मिर्ची और ओम दिखा विद यू टुनाइट, लेट्स गो अगेन।

फुटबॉल वर्ल्ड कप चल रहा है, तो अगर आज रात किसी गोल के बाद पड़ोस से जोर का चीयर सुनाई दे, डोंट पैनिक। फुटबॉल लवर्स आर सिंपली लिविंग द बेस्ट लाइफ, और हम भी ऑन क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका।

0: Ritchie, only on Ritchie. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Ritchie stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी
3: यार। तूने सुना, एक दूल्हा ना ट्रैफिक से बचने के लिए साइकिल से मंडप तक पहुंच गया।
4: वैसे ना ये ग्रीन फ्लैग है, क्योंकि इसको पता है कि रिलेशनशिप की गाड़ी जो है दो पहिए पे चलती है। और मुझे पता है कि इसकी बारात में ना ढोल नगाड़े नहीं जबकि साइकिल की बजेगी।
5: मिर्ची, इट्स हॉट।
6: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे।
7: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
8: बहुत कुछ होगा।
9: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6 FM Mirchi 1.
11: It's hot.
12: Ladies and gentlemen.

मानसून की रात नियॉन लाइट्स और फेवरेट गाने, इससे बेटर वीकेंड कॉम्बो हो ही नहीं सकता। सो वेयर एवर यू आर वाइबिंग, बालकनी, टेरेस या लॉन्ग ड्राइव, क्लब मिर्ची इज योर परफेक्ट पार्टी पार्टनर। डीजे रिचर्ड, मिर्ची और योंतिका विद यू, लेट्स गो।

Rainy nights are made for hot coffee, good company and even better music. अगर कंपनी नहीं है टेंशन किस बात की, क्लब मिर्ची है ना। डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका आपके पक्के दोस्त। लेट्स गो बेबी।

लाइफ को कभी कभी शफल पे छोड़ देना चाहिए, पता नहीं अगला सरप्राइज एक फेवरेट गाना हो या एक अनफॉरगेटेबल मेमोरी। एंजॉय एवरी बीट विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन क्लब मिर्ची।

फीवर भी फुल ऑन है। हर पास पे टेंशन, हर गोल पे सेलिब्रेशन, और हर सेलिब्रेशन के लिए एक ब्लॉकबस्टर गाना तो बनता है। तो सीट बेल्ट बांधो, वॉल्यूम बढ़ाओ, क्लब मिर्ची कंटिन्यूज विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंटिका।

वैसे पार्टी सिर्फ रेडियो तक ही क्यों? बिहाइंड द सीन्स क्रेजी रील्स और मस्त कंटेंट के लिए फॉलो करना मत भूलना डीजे रिचर्ड ऑफिशियल को। पार्टी कंटिन्यूज ऑन एयर भी और ऑनलाइन भी। क्लब में चाहिए विद मी मिर्ची और योंतिका।

Alla New York,

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi, fresh maal.
2: जब हर बीट में हो तड़का तब बनती है चटनी।

गाने को आवाज दी है नीलकमल सिंह और ममता शर्मा ने। म्यूजिक दिया है आदित्य देव और नीलकमल सिंह ने और लिरिक्स लिखे हैं धीरज बबुआन ने। धमाल फोर से सुनते रहिए चटनी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी।

0: नहीं नहीं, हेल्पलाइन मिर्ची। अपना सवाल क्या है वो बता बच्चू।
1: अरे भाई क्या बोलूं आपको, इधर घर ढूंढना इतना टफ है, इतना टफ है, कब से ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रहा, क्या करूँ।
0: अबे सबसे पहले तो ये बता कि तू किसका घर ढूंढ रहा है, तभी तो हेल्प कर पाऊंगा ना।
2: मैं दिल में आता हूँ, समझ में नहीं।

का मतलब सिर्फ रेस्ट नहीं, बेस्ट भी। डांस करो, गाओ या बस बारिश देखते हुए चिल करो। हम लेकर आए हैं नॉन स्टॉप हिट मशीन डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका विद क्लब मिर्ची।

बारिश की स्मेल, फ्रेश प्लेलिस्ट और वीकेंड का थ्रिल, बस इसी कॉम्बो के लिए तो पूरा हफ्ता वेट करते हैं। अब डांस करना कंपलसरी है विद क्लब मिर्ची एंड डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका।

0: Ritchie, only on Ritchie. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: हेलो
2: हाय, ये कॉल बैंक से है। आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है, हमारे कस्टमर केयर से आपको पासवर्ड मिलेगा। पासवर्ड बहुत कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए किसी को ना दे और इसका दुरुपयोग होने से बचाएं।
3: देखिए जी, आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है, आप पासवर्ड लिख लीजिए प्लीज।
1: एटीएम वाला पासवर्ड है ना?
3: एटीएम वाला पासवर्ड है सर, ये पासवर्ड लिख लीजिए, मैं आपको बता देता
1: हूँ। एक मिनट मैं लिख लेता हूँ कहीं।
3: हाँ जी,
1: हाँ बोलिए।
3: 33501।
1: अच्छा
3: सर, एक सेकंड रुकिए, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। शैलेंद्र जी, जरा विक्की का पासवर्ड बताइए जरा इनको, ये फोन लाइन पे है एटीएम वाला।
1: हेलो,
3: मेरी वाइफ के पास भी है, एक सेकंड होल्ड करिएगा। मैं फोन मिलाता हूँ। हेलो डार्लिंग, हाय।
4: हाय।
3: अच्छा ये बताओ, ये विक्की का पासवर्ड क्या है?
4: विक्की का पासवर्ड 33501। एक काम करिए ना, धोबी से पूछ लीजिए क्योंकि उसके पास भी है।
3: धोबी से
4: पूछ लीजिए।
3: अच्छा ये जो हमारे कपड़े धोता है, एक सेकंड।
1: हेलो
3: सर, एक सेकंड होल्ड करना, वो धोबी से भी कंफर्म कर।
5: ये बेल जा रही है।
3: हेलो भैया, हेलो भैया, मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आप हमारे कपड़े धोते हो?
1: अरे भाई तो एक बात सुन, ये
3: आपके पास
1: है?
3: आपके पास पासवर्ड होगा 33501? हाँ सर, 33501 है सर। हाँ जी सर, सर यही पासवर्ड है। मेरी बात सुनिए ना,
1: किससे पूछे जा रहा है तू?
3: किससे? मैं कंफर्म कर रहा हूँ ना सर, आपके पास।
1: भाई ये क्या कंफर्म, भाई मेरा एटीएम कार्ड है
3: ये। एटीएम तो आपका तो पासवर्ड नहीं मिलेगा, पैसे कैसे निकलेंगे यार?
1: सिर्फ मुझे बताना है, सबको थोड़ी ना दुनिया में अल्लाह थोड़ी ना।
3: आपको तो जल्दी इतनी मच रही है, आपको जल्दी इतनी मच रही है। कल का टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लेते, उसमें भी आ रहा था, बेकार में एप्लीकेशन डाल दी। टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ लेते
6: विकी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। तुमने पासवर्ड के लिए अप्लाई कर रखा था, तुम्हारा पासवर्ड अभी तक नहीं आया है। 33501।
1: किसने दिया मेरा नंबर?
6: आपका नंबर आशा ने दिया है, उन्होंने कहा था।
1: अरे मैं कुकड़ू को।
7: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट। ये पकड़।
8: ओ भाई, जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट
9: लेडीज एंड जेंटलमैन।

बारिश का मौसम है, कभी रोमांटिक कभी ड्रामेटिक, लेकिन प्लेलिस्ट हमारी सिर्फ फैंटास्टिक, सो डोंट टच दैट डायल, क्योंकि अभी पार्टी का लेवल और भी हाई होने वाला है। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयोंतिका विद यू, एंड दिस इज द साउंड ऑफ द फ्यूचर, क्लब मिर्ची।

0: Ritchie, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी
3: यार। तूने सुना, एक दूल्हा ना ट्रैफिक से बचने के लिए साइकिल से मंडप तक पहुंच गया।
4: वैसे ना ये ग्रीन फ्लैग है, क्योंकि इसको पता है कि रिलेशनशिप की गाड़ी जो है दो पहिए पे चलती है। और मुझे पता है कि इसकी बारात में ना ढोल नगाड़े नहीं, जबकि साइकिल की बजेगी।
5: मिर्ची, इट्स हॉट।

0: बॉलीवुड का स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान। खान खान
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
6: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
7: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
8: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस संबोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
9: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सबका फेवरेट।

वेव्स चल रही है या कार की विंडशील्ड पे बारिश नाच रही है तो साउंड ट्रैक भी प्रीमियम होना चाहिए। वेलकम बैक टू क्लब मिर्ची, लेट्स कीप द वीकेंड अलाइव विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयो दिखा बेबी।

छोटा सा रिमाइंडर, अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो प्लीज स्पीड से ज्यादा सेफ्टी को इम्पोर्टेंस दीजिए। वेट रोड्स पे ब्रेक्स को टाइम लगता है लेकिन एक्सीडेंट्स को नहीं। सीट बेल्ट ऑन रखिए, फोन साइड में रखिए और सेफली घर पहुंचिए। पार्टी बाद में भी होती रहेगी। डीजे रिचर्ड मिर्ची ऑयोम तक आते हैं ना क्लब मिर्ची लेके हर हफ्ते।

म्यूजिक का वॉल्यूम हाई हो सकता है लेकिन स्माइल उससे भी हाई होनी चाहिए। वीकेंड है बॉस, डांस करो, गाओ, बारिश एंजॉय करो और क्लब मिर्ची के साथ गुड वाइब्स स्प्रेड करते रहो। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका विद यू टुनाइट।

0: Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: अनिल कपूर सर, ये सवाल हम आपसे 365वीं बार पूछ रहे हैं कि आपकी फिटनेस का राज क्या है?
3: हेल्थ ऐसी बनाओ, काम ऐसा करो कि आप 40, 50 साल, 60 साल तक आराम से वैसे ही काम करते रहो। मीठा खाना तो थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा, आपको मीठा अगर सूट नहीं करता है तो हफ्ते में एक बार खाइए, और खाना तो थोड़ा सा खाइए। आपको नमकीन पसंद है, उसका मतलब ये नहीं कि आप इतना ही नमकीन खाते रहें। आपको चावल पसंद है तो दबा के आप चावल ही खा रहे हैं आप, यू नो, तो हर चीज़ करनी चाहिए, मगर थोड़ा थोड़ा थोड़ा करके यू शुड वर्क इट आउट एंड बैलेंस एवरीथिंग इन लाइफ एंड डू एवरीथिंग इन लाइफ एंड दैट्स आई फील इज द मंत्रा फॉर योर फिटनेस। यू डू एवरीथिंग बट डू इट इन मॉडरेशन एंड डू इट व्हाट मेक्स यू हैप्पी।
2: हेल्थ टिप आपने दिया एकदम क्लास, क्योंकि अनिल कपूर आप आदमी एकदम झकास। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स ऑन
0: बॉलीवुड बोल डाल। Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi, it's hot.
4: Ladies and gentlemen, we are gonna go.

वेलकम बैक पार्टी पीपल। अगर चाय के साथ पकोड़ा चल रहा है तो उसके साथ हमारा बीट्स भी जरूरी है, और अगर आप रोड पे हो तो रेन को एंजॉय करो, स्पीड को नहीं। क्लब मिर्ची में अभी पार्टी बस गर्म ही हो रही है। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योन टेक आउट विद यू टुनाइट, लेट्स गो अगेन।

गान सक्सेसफुल हो या कैंसल, प्लेलिस्ट कभी डिसअपॉइंट नहीं करती। दिस इज क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योर टिकट। सो वेदर यू आर एट अ हाउस पार्टी, कैफे या अपने रूम में सोलो कॉन्सर्ट कर रहे हो, क्लब मिर्ची इज राइट देयर विद यू। लेट्स गो।

0: Ritchie, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
2: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
3: बार बार
2: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6
5: FM मिर्ची वन इट्स हॉट
6: लेडीज एंड जेंटलमैन वी आर गोना गो

वेलकम बैक, क्लब मिर्ची जारी है। डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका आपके साथ। इफ ड्रामा हैड अ साउंडट्रैक, दिस इज इट। से तौबा बट स्टिल रिपीट, क्लब मिर्ची।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi, fresh maal.
2: धमाल फोर में धमाल मचाने आ रहा है कहर।

इस गाने को आवाज दी है गुरु रंधावा ने। म्यूजिक एंड लिरिक्स बाय गुरु रंधावा, गिल मचरई एंड रॉनी अजनाली। धमाल फोर से सुनते रहिए कहर, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।

0: 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot.
1: Ladies and gentlemen.

रात नियॉन लाइट्स और फेवरेट गाने, इससे बेटर वीकेंड कॉम्बो हो ही नहीं सकता। सो वेयरएवर यू आर वाइबिंग, बालकनी, टेरेस या लॉन्ग ड्राइव, क्लब मिर्ची इज योर परफेक्ट पार्टी पार्टनर। डीजे रिचर्ड, मिर्ची और योंतिका विद यू, लेट्स गो।

बारिश का अपना स्वैग होता है भाई, कभी रोमांटिक कभी फुल फिल्मी, और हम लेकर आए हैं इसी वाइब के ब्लॉकबस्टर ट्रैक्स। कीप स्माइलिंग कीप ग्रूविंग विद डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिकांत क्लब मिर्ची।

वर्ल्ड कप का सीजन है, हर मैच एक इमोशन और हर गोल एक सेलिब्रेशन। टीम कोई भी हो, म्यूजिक सबका कॉमन लैंग्वेज है। लेट्स कीप द एनर्जी रोलिंग विद क्लब मिर्ची एंड डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंटिका।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi. Iska bana, uska bana, saka bana. Murga, murga. Navid wala murga. Mirchi, murga.
2: Hello.
3: Sir, very good evening, man. बैंक से बोल रहा हूँ, मुझे एक रेफरेंस दिया था सर, मैं आपके सिर्फ दो मिनट लेना चाहूंगा, क्या आप मुझे दो मिनट दे सकते हैं?
2: हाँ जी बोलिए।
3: सर हमारी एक स्कीम आई है सर, हम आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जीरो ही नहीं बल्कि बैंक आपको हर महीने पैसे देगा सर, जितने आप चाहते हैं इतने पैसे आपको मिल जाएंगे।
2: आप मुझे पैसे दोगे? हाँ, हिडन चार्जेस?
4: सर इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है, अगर होते तो मैं पहले ही बोल देती।
2: कौन बोल रही है?
3: सर रमेश ही बोल रहा हूँ। सर मैं ये बता रहा था बैंक के बारे में आपको, अगर आपको स्कीम चाहिए ना सर, ये सबसे अच्छी स्कीम है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको हो ही नहीं सकती।
2: मुझे क्यों मिल रही है, मतलब कोई इतनी मेहरबानी क्यों हो रही?
5: सर मैं आपसे इतनी भी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका रेफरेंस बहुत तगड़ा है, वरना हम तो इस तरह की स्कीम किसी को देते भी नहीं।
2: हेलो कौन बोल रहा है?
3: सर रमेश ही बोल रहा हूँ, मैं इसमें ये कह रहा था सर, इसमें आपको कोई लेने देने वाली बात ही नहीं है, आप सिर्फ मेरी बात मानो, आप ले लो।
2: के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?
4: सर आपको एक पैन कार्ड की कॉपी और अपना पुराना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना है, दैट्स ऑल।
2: हेलो मैडम।
3: हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ। हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ।
2: कौन बोल रहा
3: है? रमेश बोल रहा हूँ सर।
2: अभी कोई और बोल रही थी।
3: सर ले लीजिए सर, आप बस आंखें बंद करके मेरी बात मानिए।
2: लेकिन कहीं कुछ उल्टी सीधी तो वो नहीं है इसमें, कुछ परेशानी तो नहीं होगी मुझे?
6: आप चिंता मत कीजिए, हर चीज के पेपर साइन होंगे बाकायदा, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
2: कौन बोल रहा है?
3: सर ले लीजिए यार, इसमें कोई चिंता ही नहीं है सर इसमें।
2: दो दिन बाद मुझे कॉल कर लेना।
7: सर 15 तारीख जो है वो लास्ट डेट है, ऐसा ऑफर आपको कहीं भी किसी भी और बैंक में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ हमारी एक्सक्लूसिव स्कीम है।
2: कौन बोल रहा है भैया?
3: सर रमेश बोल रहा हूँ। आप यार उस पे क्यों जा रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ आप ये ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? सर
2: कभी किसी की आवाज़ आ रही है, कभी किसी की आवाज़ आ रही है। नहीं भैया नहीं, नहीं चाहिए मुझे।
8: सर आप मान क्यों नहीं रहे हो यार, आपको लोन बेचने के चक्कर में, स्कीम बेचने के चक्कर में
3: हम सबका दिमाग खराब हो गया, अपना खुद दिमाग खराब कर रहे हैं यार आप। सर आप ले लो यार, कमाल कर दिया आपने यार दिमाग। क्या क्या कौन बोल रहा है यार? मैं बोल रहा हूँ आपसे, रमेश बोल रहा है। सर मेरी बात सुनिए सर, सर आप सर फोन मत काटिएगा।
9: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, ये सारी आवाजें मेरी हैं, अब मिर्ची पे सब आपको सुन रहे हैं, अब मुर्गा बन गए, आप कुकड़ों को बोल दें जरा हंस के।
10: थैंक यू
11: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
12: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं महापुरुष, महापुरुष।
11: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स, जबरदस्त ट्रैक्स, कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, स्टेशन 89.6 FM Mirchi 1. It's hot.
13: Ladies and gentlemen, we are gonna go, we are gonna go, we are gonna go
14: on a ride.

फीवर भी फुल ऑन है। हर पास पे टेंशन, हर गोल पे सेलिब्रेशन, और हर सेलिब्रेशन के लिए एक ब्लॉकबस्टर गाना तो बनता है। तो सीट बेल्ट बांधो, वॉल्यूम बढ़ाओ, क्लब मिर्ची कंटिन्यूज विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका।

0: Ritchie, only on Ritchie. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Ritchie stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी
3: यार। तूने सुना, एक दूल्हा ना ट्रैफिक से बचने के लिए साइकिल से मंडप तक पहुंच गया।
4: वैसे ना ये ग्रीन फ्लैग है, क्योंकि इसको पता है कि रिलेशनशिप की गाड़ी जो है दो पहिए पे चलती है। और मुझे पता है कि इसकी बारात में ना ढोल नगाड़े नहीं जबकि साइकिल की बजेगी।
5: मिर्ची, इट्स हॉट।
6: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
7: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।
8: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो ऑन अ राइड।
0: क्लब मिर्ची।

वीकेंड का मतलब सिर्फ रेस्ट नहीं, बेस्ट भी। डांस करो, गाओ या बस बारिश देखते हुए चिल करो। हम लेकर आए हैं नॉन स्टॉप हिट मशीन डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका विद क्लब मिर्ची।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: मिलिंद सोमन, आपकी इतनी फिट बॉडी है, क्या आपने कभी इस बॉडी का फायदा उठाया है? आ जा, दिखाता हूँ तुझे, झगड़ा करेगा मेरे साथ।
4: कभी झगड़ा नहीं किया, और टफ फिजिक का मतलब ये नहीं कि झगड़ा करके उसको जस्टिफाई करो। गुड फॉर शो व्हिच इज गुड फॉर माय प्रोफेशन एंड आई वर्क अ लॉट, I work very hard, so I need that fitness level.
3: And I need your motivation level, Milind Soman. Aap sun rahe hain Mirchi, it's hot.
1: Bollywood Boldal.
2: Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal. Only on Mirchi, it's hot.
5: Ladies and gentlemen, we are gonna go.
4: का मतलब ये नहीं कि झगड़ा करके उसको जस्टिफाई करो। गुड फॉर शो व्हिच इज गुड फॉर माय प्रोफेशन एंड आई वर्क अ लॉट, आई वर्क वेरी हार्ड, सो आई नीड दैट फिटनेस लेवल।
3: एंड आई नीड योर मोटिवेशन लेवल, मिलिंद सोमन। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल्डाल।
2: बॉलीवुड, बॉलीवुड, बॉलीवुड बोल्डाल। ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: लेडीज एंड जेंटलमैन।

बारिश का मौसम है, कभी रोमांटिक कभी ड्रामेटिक, लेकिन प्लेलिस्ट हमारी सिर्फ फैंटास्टिक, सो डोंट टच दैट डायल, क्योंकि अभी पार्टी का लेवल और भी हाई होने वाला है। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयल विद यू, एंड दिस इज द साउंड ऑफ द फ्यूचर, क्लब मिर्ची।

बिकॉज फ्रेंड्स प्लस म्यूजिक इक्वल्स टू वीकेंड गोल्स. और अगर फ्रेंड्स बिजी हैं तो स्पीकर को बेस्ट फ्रेंड बना लो, साथ डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयो का तो है ही कंपनी देने के लिए. लेट्स गो अगेन.

गानों के बाद भी मिलते रहना यार फन रील्स बिहाइंड द माइक मोमेंट्स और एवरीडे मैडनेस के लिए फॉलो मी ऑन योंतिका ऑन सोशल मीडिया AYANTIKA. वीकेंड वाइब्स कंटिन्यू ऑन योर फीड टू. लेट्स गो. दिस इज क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन योंतिका.

अभी खिड़की खोलो और बारिश की हवा को फील करो, फिर वॉल्यूम थोड़ा और बढ़ा दो। कुछ मोमेंट्स को सिर्फ एंजॉय किया जाता है, एक्सप्लेन नहीं। डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका विद यू ऑन क्लब मिर्ची।

नाइट हो या संडे चिल, एक बात फिक्स है, अच्छा म्यूजिक कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होता, और जब क्लब मिर्ची हो साथ तो मूड ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो ही जाता है। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयोन टिका विद यू टुनाइट।

0: जी बिल्कुल, मिर्ची हेल्पलाइन, बताइए क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए।
1: बूढ़ी बाबा, मेरे पति को मेरे हाथ की रोटी अच्छी नहीं लगती, क्या करूँ?
0: तो सिंपल है ना, तुम्हारे हाथ की रोटी मत खिलाओ, आंटी की खिला दो।
2: मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का हंस।

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: Ladies and gentlemen, we are gonna go.

रिमाइंडर, अगर रोड्स पे वाटर लॉगिंग दिखे तो अननेसेसरी रिस्क मत लीजिए, स्लो ड्राइव करिए, सेफ डिस्टेंस मेंटेन कीजिए और फ्लडेड रोड्स को अवॉइड कीजिए। बारिश का मजा तभी है जब आप सेफली घर पहुंच जाए। डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका विद क्लब मिर्ची टुनाइट।

वीकेंड खत्म हो जाएगा लेकिन आज की मेमोरीज और ये गाने प्लेलिस्ट में हमेशा रहेंगे. सो लाफ अ लिटिल लाउडर, डांस अ लिटिल लॉन्गर और हर बीट को दिल से फील करो. डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका विथ यू टुनाइट.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi.
2: Iskabana, puskabana, sakabana. Gabana. Burka, burka. Navid bala burka. Mirchi burka.
3: हेलो
4: हेलो सर, वेरी गुड इवनिंग। मैं सेल्यूलर से बोल रहा हूँ। सर हमारी एक स्कीम आई है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको समझाऊँ। ये वॉइस मेल के लिए है, अगर आप चाहते हैं और आपको इंग्लिश नहीं आती है सपोज माने आप, तो आप कोई भी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसको आगे भेज सकते हैं।
3: अच्छा,
4: आप हिंदी में अपना मैसेज छोड़ेंगे और हमारी मशीन उसको कन्वर्ट करके दूसरी लैंग्वेज में डब कर देगी सर, जिसका सर कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, मंथली कोई चार्ज नहीं लगेगा। सर आप चाहेंगे ये स्कीम आपको दे दी जाए?
3: के पास है क्या ये सर्विस?
4: बिल्कुल सर, कोई एडिशनल चार्जेस नहीं है सर। जो आपका नॉर्मल प्लान चल रहा है उस प्लान के अकॉर्डिंग आपका बिल आएगा, सिर्फ आपकी एक फैसिलिटी बढ़ जाएगी।
3: जो क्या कॉस्टिंग पड़ेगा पर मैसेजेस
4: का? सर आप दिन में अगर 100 मैसेज भी भेजते हैं तो आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा, आपका नॉर्मल रेंट रहेगा जो आपका चल रहा है अभी।
3: ठीक है,
4: बीप सुनने के बाद अपना मैसेज छोड़िएगा।
3: ओके अगम सर, मुझे आपके अंडर में काम करना बहुत अच्छा लगता है, तो आप प्लीज मुझे अपनी टीम में रख लीजिए।
4: सर वेरी गुड, आपका मैसेज रिकॉर्ड हो गया सर, हमने इसको दूसरी लैंग्वेज में डब कर दिया। अब आपके बॉस ये सुनेंगे, सुनिए।
3: ये क्या है भैया?
4: सर ये आवाज तो आपकी लग रही है, मुझे लग रही है सेंटेंस इधर उधर हो गए।
3: तुम्हें मशीन चलाने आती भी?
4: सर मैनेजर के अलावा किसी और को मैसेज देखे देखिए।
3: हेलो वीना मैम, प्लीज अभी जो आ रहा है प्रोजेक्ट उसके लिए मुझे नॉमिनेट कर लीजिए अपनी टीम में।
4: सर थैंक यू सो मच, आपका रिकॉर्ड हो गया, वीना मैम को ये सुनाई देगा।
3: मजाक कर रहे तू मेरे से?
4: सर मेरी बात सुनिए, ये जो मेरी बात सुनिए सर, सर सर सर सर सो सॉरी, आई एम सो सॉरी सर, जितना आप मुझ पे चिल्लाए हैं मैंने रिकॉर्ड कर लिया। देखिए अब सही आएगा, देखिए ये दूसरी लैंग्वेज में आएगा, रुकिए सर आप। हेलो मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात तो सुनिए सर, मैं इतनी गाली नहीं सुन सकता सर, मैं इतनी।
5: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, मैंने तो रैंडमली आपका नंबर मिला दिया था सर, दिल्ली में सब आपको सुन रहे हैं, आप रेडियो मिर्ची में मुर्गा बन गया है आपका, प्लीज इतनी गाली मत दीजिए यार।
4: सर मैंने ये भी रिकॉर्ड कर लिया, देखिए सुनिए क्या आया डब हो गए।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, only on Mirchi. It's hot.
7: Yeah, baja.
8: 89.6
6: Mirchi.
9: Ladies and gentlemen, we are gonna go. We are

वेलकम बैक पार्टी पीपल। अगर चाय के साथ पकोड़ा चल रहा है तो उसके साथ हमारा बीट्स भी जरूरी है, और अगर आप रोड पे हो तो रेन को एंजॉय करो, स्पीड को नहीं। क्लब मिर्ची में अभी पार्टी बस गर्म ही हो रही है। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योनिका विद यू टुनाइट, लेट्स गो अगेन।

0: Ritchie, only on Ritchie. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Ritchie stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी
3: यार। तूने सुना, एक दूल्हा ना ट्रैफिक से बचने के लिए साइकिल से मंडप तक पहुंच गया।
4: वैसे ना ये ग्रीन फ्लैग है, क्योंकि इसको पता है कि रिलेशनशिप की गाड़ी जो है दो पहिए पे चलती है। और मुझे पता है कि इसकी बारात में ना ढोल नगाड़े नहीं जबकि साइकिल की बजेगी।
5: मिर्ची, इट्स हॉट।
6: दोस्ती का गुस्सूल है मैडम। नो सॉरी, नो थैंक यू।
7: भाई साहब, सॉरी एंड थैंक यू। हमें दोस्ती नहीं, एंटरटेनमेंट चाहिए।
8: तो मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा।
9: खूब मिलेगा, खूब मिलेगा।
10: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
11: 89.6 FM, मिर्ची वन। इट्स हॉट।
12: लेडीज एंड जेंटलमैन,

फुटबॉल वर्ल्ड कप चल रहा है, तो अगर आज रात किसी गोल के बाद पड़ोस से जोर का चीयर सुनाई दे, डोंट पैनिक। फुटबॉल लवर्स आर सिंपली लिविंग द बेस्ट लाइफ, और हम भी ऑन क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंटिका।

0: Ritchie, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal. Only on Mirchi. It's hot.
2: गोविंदा, आपका अल्टीमेट फिटनेस टिप कौन सा है?
3: मुझे ऐसा लगता है योग और प्राणायाम जो है, इससे आपकी बॉडी जो है बहुत ही करेक्ट रहती है और आपको मतलब वो घबराहट नहीं होती है।
2: तो ये एडवाइस आप देंगे कंटेम्प्रेरी हीरोज को?
3: योग प्राणायाम तो करते ही होंगे वो लोग, मुझे ऐसा लगता है।
2: आपको क्या लगता है कौन कौन करता होगा? मैं आपको तीन नाम देती हूँ, इन तीनों में से बताइए, वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा, जॉन अब्राहम।
3: ये तीनों एक्टर्स ऐसे हैं, इन लोगों की मुझे ऐसा लगता है कि बॉडी ज्यादा अच्छी है और पता नहीं कितने पैक निकले हुए हैं। उस जमाने में तो पूरी शाम में सब लोग हीरो लोग पैक ही लगाया करते थे, अब वो पैक उनके पेट पे आ गए। टेढ़ा मेढ़ा क्या नजर आ रहा है, ये पेट है इनका? ओहो, अच्छा अच्छा, फाइन फाइन फाइन, वेरी गुड वेरी गुड।
2: फिटनेस का पता नहीं लेकिन सेंस ऑफ ह्यूमर पर 110 फॉर चीची। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल्डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना।
5: अरे, पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
6: कैसे रुक सकता है?
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6
7: 89.6 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.
9: Ladies and gentlemen, we are gonna go, we are gonna go, we are gonna go.

Rainy nights are made for hot coffee, good company and even better music. अगर कंपनी नहीं है टेंशन किस बात की, क्लब मिर्ची है ना, डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका आपके पक्के दोस्त. Let's go baby.

वैसे पार्टी सिर्फ रेडियो तक ही क्यों? बिहाइंड द सीन्स क्रेजी रील्स और मस्त कंटेंट के लिए फॉलो करना मत भूलना डीजे रिचर्ड ऑफिशियल को। पार्टी कंटिन्यूज ऑन एयर भी और ऑनलाइन भी। क्लब में चाहिए दिस विद मी मिर्ची और योंतिका।

और इसी के साथ आज की क्लब मिर्ची पार्टी यही रैप करते हैं। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका आपके साथ। बारिश को एंजॉय करिए, फुटबॉल वर्ल्ड कप का एक्साइटमेंट सेलिब्रेट करिए, अपनों के साथ वक्त बिताइए और सबसे जरूरी सेफ रहिए। अगले वीकेंड फिर से मिलेंगे और लेकर आएंगे और भी ज्यादा म्यूजिक, मस्ती और मैडनेस। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप डांसिंग एंड कीप लिसनिंग टू क्लब मिर्ची। टाटा, इट्स हॉट।

0: बच्चे लोग, तुमने कभी काला ताजमहल देखा है?
1: क्या, क्या, क्या?
0: कभी बिना पानी का समंदर देखा है? रसगुल्ले से रसगुल हो जाए तो पता है कैसे दिखता है?
1: कैसा, कैसा, कैसा?
0: वो देखो, जीता जागता नमूना मिस शिवानी।
2: ए, क्या लगा रखा है ये सब? हाँ, क्या लगा रखा है?
0: अरे बोर हो रहे हैं यार, कुछ तो मस्ती करने दो, कुछ तो करो, कुछ तो करो, अरे कुछ तो करो यार।